मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 23वीं तिथि तथानुसार दिनांक 15 अक्टूबर 2026। इस समय प्रातः के 5:57 और 10 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका रेडियो मित्र आजाधाकर। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: मीडियम में 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को है। अब हिंदी में समाचार कुछ
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDB

0: आई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹1,370 की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 और 10 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में यह मातृवंदना।

अभी आपने सुनी संगसौर में ये मातृवंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोत जाति कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए नंदिनी चरण के स्वर में ये भजन।

ओम व्यास और साथियों के सुर में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता कार्यक्रम आगे लीजिए, सुनिए अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौर और साथियों के सुर में ये भक्ति रचना।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए, अब सुनिए शंकर शंभू के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्रोत सदी इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में ही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख और वाचन है सुमित गौतम के।

0: गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन अपना आदर्श किसे मानते थे? हम जल्दबाजी में महात्मा गांधी का नाम न ले लें, क्योंकि शुरुआती दौर में एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने दो महान वैज्ञानिकों को ही अपना आदर्श माना था। उनके कमरे में इन्हीं दो वैज्ञानिकों की पोर्ट्रेट लगी रहती थी, लेकिन अपने सामने दुनिया में तरह तरह की भयानक हिंसक त्रासदी देखने के बाद आइंस्टीन ने अपने घर में लगे इन दोनों पोर्ट्रेट के स्थान पर दो नई तस्वीरें टांग दी। इनमें एक तस्वीर थी महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइटजर की और दूसरी थी महात्मा गांधी की। आइंस्टीन को जब लगा कि विज्ञान और एक तरफा तर्कवाद मानव जाति के लिए संकट बन सकता है, तब उनके सामने गांधी का जीवन एक आदर्श के रूप में सामने आता रहा। इसे स्पष्ट करते हुए आइंस्टीन ने उस समय कहा था, समय आ गया है कि हम सफलता की तस्वीर की जगह सेवा की तस्वीर लगा दें। लेकिन महात्मा गांधी के साथ साथ अल्बर्ट श्वाइटजर की ही तस्वीर क्यों? इस पर आइंस्टीन

इन ने कहा था, पश्चिम में अकेले अल्बर्ट स्वाइट्जर ही ऐसे हैं जिनका इस पीढ़ी पर उस तरह का नैतिक प्रभाव पड़ा है जिसकी तुलना गांधी से की जा सकती हो। जैसा कि गांधी की ही तरह स्वाइट्जर का भी इस हद तक इतना ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से इसका उदाहरण पेश किया। स्वाइट्जर ने भारत पर केंद्रित अपनी पुस्तक इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट में लिखा, गांधी का जीवन दर्शन अपने आप में एक संसार है। उन्होंने आगे लिखा, गांधी ने बुद्ध की शुरू की हुई यात्रा को ही जारी रखा है। बुद्ध के संदेश में प्रेम की भावना दुनिया में अलग तरह की आध्यात्मिक परिस्थितियां पैदा करने का लक्ष्य अपने सामने रखती है, लेकिन गांधी तक आते आते यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि समस्त सांसारिक परिस्थितियों को बदल डालने का कार्य अपने हाथ में ले लेता है। आइंस्टीन महात्मा गांधी से उम्र में केवल 10 साल छोटे थे। वे दोनों व्यक्तिगत रूप से कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन एक बार आत्मीयतापूर्ण पत्राचार अवश्य हुआ। एक चिट्ठी आइंस्टीन ने 27 सितंबर 1931 को वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम के हाथों गांधी जी को भेजी थी। इस चिट्ठी में आइंस्टीन ने लिखा था, अपने कारनामों से आपने बता दिया है कि हम अपने आदर्शों को हिंसा का सहारा लिए बिना भी हासिल कर सकते हैं। हम हिंसावाद के समर्थकों को भी अहिंसक उपायों से जीत सकते हैं। आपकी मिसाल से मानव समाज को प्रेरणा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहकार और सहायता से हिंसा पर आधारित झगड़ों का अंत करने और विश्व शांति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। भक्ति और आदर के इस उल्लेख के साथ मैं आशा करता हूँ मैं एक दिन आपसे आमने सामने मिल सकूंगा। तब महात्मा गांधी के असहयोग, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे अहिंसक तरीकों के बारे में यूरोप और अमेरिका के अखबारों में लगातार लिखा जा रहा था और आइंस्टीन तक भी ये विचार पहुंचे होंगे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए गांधी जी ने 18 अक्टूबर 1931 को लंदन से ही इस पत्र का जवाब आइंस्टीन को लिखा। अपने संक्षिप्त जवाब में उन्होंने लिखा, प्रिय मित्र, इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका आप समर्थन करते हैं। सचमुच मेरी भी बड़ी इच्छा है कि हम दोनों की मुलाकात होती और वह भी भारत स्थित मेरे आश्रम में। 2 अक्टूबर 1944 को महात्मा गांधी के 75वें जन्मदिवस पर आइंस्टीन ने अपने संदेश में लिखा था, आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मास से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। गांधी जी की मृत्यु पर लिखे संदेश में आइंस्टीन ने कहा था, लोगों की निष्ठा राजनीतिक धोखेबाजी के धूर्ततापूर्ण खेल से नहीं जीती जा सकती, बल्कि वह नैतिक रूप से उत्कृष्ट जीवन का जीवंत उदाहरण बनकर भी हासिल की जा सकती है। गांधी जी के बारे में आइंस्टीन का कहना था, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की उस उच्च स्तरीय संकल्पना का प्रतिनिधित्व किया जिसे हासिल करने की कामना हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर अवश्य ही करनी चाहिए।

महात्मा गांधी एक यात्रा, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का ये चिंतन। आलेख और वाचन था सुमित गौतम का। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्री राम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख

का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामूहिक चर्चा का आज का हमारा विषय है आलू की अगेती खेती से अधिक लाभ कैसे, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिव प्रताप सिंह तोमर।
1: किसान भाइयों, आज के समय में खेती को लाभकारी धंधा बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। इसमें से उद्यानिकी फसलें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई हैं। यदि हम अपने फसल चक्र में उद्यानिकी फसलों को समाहित करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा लाभ बढ़ जाता है। तो हमारे क्षेत्र में आलू एक प्रमुख फसल के रूप में कई फसलों के बीच में समाहित होती है, और आलू सब्जियों का राजा भी माना जाता है। तो इस ये एक नकदी फसल होने के कारण यदि किसान भाई जल्दी लेते हैं तो इससे उनके लाभ में वृद्धि होती है। किसान भाइयों को लाभ में वृद्धि करने के लिए तीन प्रमुख बातों पर ध्यान देना पड़ता है। वो पहला है कि उत्पादन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, तो उन्नत तकनीक अपना के हम उत्पादन बढ़ाएँ। दूसरा तरीका होता है कि हम कैसे उत्पादन लागत में कमी कर लें। यदि हम उत्पादन लागत में कमी करते हैं तो भी हमारे लाभ में वृद्धि हो जाती है। और तीसरा, हम अपना जो उत्पाद है उसको कैसे अधिक से अधिक मूल्य पर किस समय बेचें कि हमें मूल्य अधिक मिल जाए। ये तीनों बातों को ध्यान में रखने से हमें लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए हमें जो प्रमुख रूप से ध्यान देने वाली बात है कि आलू में दो तीन चीज़ों का जो अगेती फसल है उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला है खेत का चुनाव।

0: खेत और मिट्टी दोनों आलू के लिए एक अलग तरीके से ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं आलू जमीन के अंदर कंद बनता है, उसका आलू बनता है, तो उसके लिए थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है, तो इसके लिए बलुई दोमट बलुई मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। आलू की जो बुआई का समय है वैसे तो 30 डिग्री टेम्परेचर जब आ जाता है वातावरण का तापक्रम तब उचित होता है, लेकिन चूंकि किसान भाइयों को कई बार फसल चक्र में आगे गेहूं या अन्य फसलें लेना होता है तो वो थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। किसान भाइयों आलू के उत्पादन में ये मान के चलिए कि जो बीज की लागत है वो लगभग कुल लागत की आधी होती है, और आलू में बीज का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि बाकी फसलों में बीज की मात्रा बहुत कम लगती है। आलू में 30 से 35 कुंटल एक हेक्टेयर में मतलब 4.5 बीघे में 45 ग्राम का आलू बो रहे हैं, क्योंकि वो साइज से कम ज़्यादा होता है, तो 40 से 45 ग्राम का आलू बो रहे हैं तो करीब करीब आपका 35 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा आलू में जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम आलू बो रहे हैं अगेती फसल में कभी भी काट के न बोएं। इस क्षेत्र के लिए जो अगेती फसल है इसके लिए कुल 3-4 प्रजातियां बहुत प्रमुख रूप से हैं, जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी अशोका है, पुरानी में कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी बाहर भी लोग लगा लेते हैं, तो इस तरह से 4-5 प्रजातियां हैं। लेकिन अभी जो सबसे अच्छी प्रजाति इस समय चल रही है वो कुफरी पुखराज है। कुफरी पुखराज का उत्पादन अगेती फसल में बाकी प्रजातियों की तुलना में काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए किसान भाई यदि आपको पुखराज मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर पुखराज नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे आप कुफरी ख्याति को लगा सकते हैं, कुफरी ख्याति का भी उत्पादन बहुत अच्छा है। ये दो प्रजातियां अगेती फसल के लिए बहुत अच्छी है, ये 150 से 250 कुंतल पैदावार अगेती में दे देती हैं। इन्हीं को मेन सीजन में लगाएंगे तो इनकी पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन एक चीज़ का उपचार मैं आप सबको सलाह दूंगा जरूर करें जो अगेती फसल लगाते हैं, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में काली डंडी नाम का रोग जिसको स्टेम नेक्रोसिस बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा आता है, तो वो उसका कारण होता है ये थ्रिप्स, एक छोटा कीड़ा होता है जो हाई टेम्परेचर पे ही होता है, जैसे ही तापक्रम नीचे गिरता है तो वो कीड़ा मर जाता है, तो बाद में समस्या नहीं होती लेकिन शुरू में इसकी समस्या बहुत होती है। तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह यही है कि इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई आती है जिसकी 3 मिलीलीटर दवाई 10 लीटर पानी में घोल बना लें और उस घोल में आलू को डुबो दें। ये सिस्टमिक दवाई है, पूरे आलू पे चिपक जाएगी, फिर इसको बाहर निकाल के आलू को तुरंत न बोएं, थोड़ा सा छायादार जगह पे फैला दें और जब पानी उसका सूख जाता है तो आप उसको बुआई में उपयोग करें। एक तो बीजोपचार करना है इमिडाक्लोप्रिड से, इसी दवाई से 21 दिन पे और 35 दिन पे वही 3 मिलीलीटर दवाई 10 लीटर पानी में घोल के छिड़काव भी करना है। किसान भाइयों बुआई में जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, वो दो तरह से करते हैं, एक तो मशीन से और कुछ किसान भाई फावड़े और खुरपी से करते हैं। तो जो किसान भाई मशीन से करते हैं उसमें ध्यान ये रखना है कि अगेती फसल में कंद से कंद की दूरी थोड़ी सी पास पास रखते हैं। जब आप समय से बुआई करते हैं तो 20 सेंटीमीटर पर रखते हैं, जब जल्दी करते हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पौधे लंबे बढ़ते हैं, वो नीचे फैलते कम हैं, तो उससे क्या आपको उचित संख्या प्राप्त हो जाएगी और आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था आलू की अगेती खेती से अधिक लाभ कैसे, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शिव प्रताप सिंह तोमर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे।

0: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
2: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह की 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लद्दाख राज्ये प्रायः 50-300-3000 कोटि रूप्यकाणां 5 प्रमुख विकास परियोजनानां उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानां उद्देश्यं संपर्क व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, ऊर्जा संबद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणं, सांस्कृतिक वैभवस्य संरक्षणं तथा क्षेत्रे जल सुरक्षायाः संवर्धनं चास्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री एकां जनसभां अपि संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडक दलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूहम् अपि संबोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां 4th स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
4: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। पीबी शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी।

0: प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री कोविंद लखनऊ में आयोजित एक समारोह में अपनी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष के हिंदी संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 16.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05:10 में हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का, तो लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहली सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही दिन सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे काफी घाट। कवित्री हैं रेशमा हाशमी। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन ग्रह का आप सुनेंगे 8:30 पर, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकते हैं 9:00। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित रामनारायण का सारंगी वादन राग होगा गुर्जरी थोड़ी। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 10:00, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकते हैं 10:05 पर।

बात आपकी की तुम्हारी। इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 11 बजे। दोपहर में पुनः फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे, और चित्रपट संगीत का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर। संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय

दोपहर 12:30 पर महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:00। लोक संगीत का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर और सुगम संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:45 पर। महिला कार्यक्रम, लोक संगीत और सुगम संगीत, ये तीनों ही कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 3:00। श्रोता साथियों, ये सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सायंकालीन समय में शाम 4 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी का समय रहेगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति है। सायंकालीन समय में फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:33 पर। और रात्रि 9:30 पर NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा शाम 6:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। सुर्खियों में इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 10:00। और राग रजनी इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं रात्रि 10:30 पर। श्रोता साथी, यह सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। यह कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसके साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में 3,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एशियन गेम्स के भारतीय खिलाड़ियों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिन के अशोकनगर दौरे पर, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। दिव्यांग पेंशन के नियमों में किया गया बदलाव, अब 40% दिव्यांगता वाले भी होंगे पात्र, न्यूनतम उम्र की सीमा भी खत्म। और प्रदेश के 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ, 45 साल या उससे अधिक उम्र वालों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से छूट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में करीब 3,350 करोड़ रुपये की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें लेह एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पुदुम दारचा सड़क जल विद्युत परियोजना और ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। वहीं दोपहर शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी यहां खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया

में हुए एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के लिए आभार जताया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2000

0: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मंदिरों में दर्शन, जनसंपर्क, विभिन्न बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री सिंधिया कल मुंगावली में दिशा समिति की बैठक और हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ वितरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 17 अक्टूबर को अशोकनगर में नए डाकघर का उद्घाटन करने के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा वे शासकीय विधि महाविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की नींव भी रखेंगे। रीवा के लक्ष्मणबाग परिसर में कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुल से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस पुल से लक्ष्मणबाग की नदी के दोनों ओर की जमीनें और रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर आपस में जुड़ सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल बनने से संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लक्ष्मणबाग पहुंचकर मंत्रोच्चार और गौसेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत के विकास के लिए यहां पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का कैंपस शुरू किया गया है और पुराने संस्कृत विद्यालय को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उमरिया जिले के गुरवाही गांव में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की, जिसके तहत प्रदेश की करीब 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपये प्रति महिला के हिसाब से राशि अंतरित की गई। इसके साथ ही पात्र लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस रिफिल के लिए अनुदान राशि भी दी गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर यादव ने आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही।
3: वो सिनावाड़ टनल जो हमारे पूरे इस विंध्य के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, हमारी सरकार ने आगे बढ़ करके उस टनल का लाभ भी यहाँ मिलेगा। पर्यटन का क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए आप होम स्टे भी करो, आप अपने मकान में एक दो कमरे बनाना चाहो तो आपको होम स्टे में पंजीयन कराओगे तो 3 लाख रुपया ट्राइबल क्षेत्र में सरकार के माध्यम से देंगे।
1: भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को नया कुलगुरु मिल गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध संस्थान के प्रोफेसर दीनदयाल बेड़िया को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कल आदेश जारी किया गया। प्रदेश में करीब 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए निर्देश जारी कर 45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी है। वहीं अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद कंप्यूटर से जुड़ी जरूरी योग्यताएं हासिल करने के लिए अधिकतम 5 साल का समय मिलेगा। ये छूट केवल विभागीय पदोन्नति पर लागू होगी। वहीं सीधी भर्ती में कंप्यूटर योग्यता की शर्त पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। प्रदेश में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 2800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नगरी विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी। इनमें इंदौर की जल प्रदाय और सीवरेज व्यवस्था, उज्जैन में मंदिर क्षेत्र का विकास और रीवा की जल प्रदाय योजना शामिल है। इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों के साथ अनुबंध किए जाएंगे और निवेशकों, स्टार्टअप्स तथा युवाओं को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। छिंदवाड़ा में आज दोपहर 2 बजे भाजपा की संभागीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और पांडुना जिलों में संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सेवा संकल्प अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कमजोर मंडलों और बूथों की पहचान कर संगठन के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी विचार किया जाएगा। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में कल 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सांसद लता वानखेड़े ने सेमरा, गोपालमन, चादौनी, करैया और जयसी नगर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने और मातृ मृत्यु रोकने के लिए कल राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफपीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में सुमन रोडमैप 2030 के तहत

सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अगले चार दिनों तक आंधी और बारिश का दौर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और चंबल संभाग में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जबकि उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना है। वहीं आज ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में बारिश हो सकती है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। वेस्टइंडीज ने हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 24 रन से हराकर श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 247 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 223 रन ही बना सकी। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 56 और तिलक वर्मा ने 43 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज के कीमो पॉल ने 5 विकेट झटके। अब निर्णायक मुकाबला 17 तारीख को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मद्य निषेध सप्ताह के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और प्रेरक गीतों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। मंदसौर के गांधी सागर जलाशय के बैक क्वार्टर्स पर आज से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 5वें संस्करण की शुरुआत हो रही है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में माँ बगलामुखी मंदिर क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जाँच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। सतना जिले के रैगांव में सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने शासकीय सांदीपनी विद्यालय के विद्यार्थियों को पुस्तकें और अध्ययन सामग्री वितरित की। भोपाल के ISBT बस टर्मिनल पर DRI की टीम ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए। कटनी जिले में फसलों की नरवाई को जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ने पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। शाहजहांपुर जिले में किसानों की फसलों को वन्यजीवों से नुकसान से बचाने के लिए काले हिरणों का रेस्क्यू कर उन्हें स्थानांतरित करने का अभियान जारी है। बैतूल जिले के आमला और मुलताई में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 16 अक्टूबर को जनसंवाद शिविर आयोजित किया जाएगा। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण, पेयजल प्रबंधन और नहरों के रखरखाव की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एशियन गेम्स के भारतीय खिलाड़ियों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिन के अशोकनगर दौरे पर, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमिपूजन। दिव्यांग पेंशन के नियमों में किया गया बदलाव, अब 40% दिव्यांगता वाले भी होंगे पात्र, न्यूनतम उम्र की सीमा भी खत्म। और प्रदेश के 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ, 45 साल या उससे अधिक उम्र वालों को CPCT स्कोर कार्ड से मिली छूट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है काव्य पाठ, कवित्री हैं रेशमा हाशमी।
1: गौर फरमाइएगा, कुछ मुक्तक के साथ, जिंदगी का सफर चरमराने लगे, जिंदगी का सफर चरमराने लगे, जब कभी तुम मेरा दिल दुखाने लगे, जब कभी तुम मेरा दिल दुखाने लगे, रात भर तुम मुझे यूं सताने लगे, रात भर तुम मुझे यूं सताने लगे, पास आकर मुझे गुदगुदाने लगे, पास आकर मुझे गुदगुदाने लगे, याद आई तुम्हारी हमें जब कभी, याद आई तुम्हारी हमें जब कभी, हम मोहब्बत भरे ख़त सजाने लगे, हम मोहब्बत भरे ख़त सजाने लगे, ये मोहब्बत दिखावा नहीं है सनम, ये मोहब्बत दिखावा नहीं है सनम, इस मोहब्बत में कितने ज़माने लगे, इस मोहब्बत में कितने ज़माने लगे, अजनबी साथ में हौसला होश में, अजनबी साथ में हौसला होश में, बेवफा संग भी मुस्कुराने लगे, बेवफा संग भी मुस्कुराने लगे, रोशनी से तुम्हें इतनी नफ़रत है क्यों,

रोशनी से तुम्हें इतनी नफरत है क्यों? एक जलते दिए को बुझाने लगे, एक जलते दिए को बुझाने लगे। ए खुदा ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? ए खुदा ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? पास आकर बहुत दूर जाने लगे, पास आकर बहुत दूर जाने लगे। एक और गज़ल पेश कर रही हूँ मैं। तू मेरा सनम है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा सनम है, तू मेरा खुदा है, सभी

करके लगा क्या हमारा, तुम्हें कत्ल करके लगा क्या हमारा, तुम्हारा ही खंजर तुम्हारा गला है, तुम्हारा ही खंजर तुम्हारा गला है। मुझे वक्त ने भी सलीके सिखाए, मुझे वक्त ने भी सलीके सिखाए, मेरे सर पर हाथ।

जिंदगी का यही फलसफा है, मेरी जिंदगी का यही फलसफा है। न जाने हुआ कैसा मौसम यहाँ का, न जाने हुआ कैसा मौसम।

खुशी से गुजर जाए ये वक्त मेरा, खुशी से गुजर जाए ये वक्त मेरा, कहेंगे सभी यह तो जश्ने वफा है, कहेंगे सभी यह तो जश्ने वफा है। इसके आगे मैं आपको अपनी एक छोटी बहर की गज़ल पेश कर रही हूँ, माज फरमाइएगा। जो शहंशाह सुल्तान हैं, जो शहंशाह सुल्तान हैं, वह भी दुनिया में मेहमान हैं, वह भी दुनिया में मेहमान हैं, मेरा उस पर भरोसा नहीं, मेरा उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि अब भी वह नादान हैं, क्योंकि अब भी वह नादान हैं। साथ भी उनका चलता रहे, साथ भी उनका चलता रहे, पर ना समझी ही पहचान है, पर ना समझी ही पहचान है। जीने में मुश्किलें आई थीं, जीने में मुश्किलें आई थीं, तो खुदा भी मेहरबान है, तो खुदा भी मेहरबान है। ये दुनिया फितरती लोगों की, ये दुनिया फितरती लोगों की, उन्हें समझना भी आसान है, उन्हें समझना भी आसान है। इंतज़ार अब भी बदलाव का, इंतज़ार अब भी बदलाव का, दिल में ऐसा अरमान है, दिल में भी ऐसा अरमान है। वक्त जब माफिक भी नहीं, वक्त जब माफिक भी नहीं, रहता वह भी परेशान है, रहता वह भी परेशान है। घर बनाकर वहाँ क्यों रहें, घर बनाकर वहाँ क्यों रहें, जो इलाका बियाबान है, जो इलाका बियाबान है। अगली गज़ल में पेश कर रही हूँ अपनी तरन्नुम के साथ, समाज फरमाइएगा।

बातों को भी सच बता कर तुम सुनाते हो, फरेबी बातों को भी सच बता कर तुम सुनाते हो।

बनाते हो फसाना है, कई जन्मों का तुमसे ताल्लुक मेरा फसाना है, कई जन्मों का तुमसे ताल्लुक मेरा कई जन्मों का अफसाना है। यह कहकर तुम जताते हो कई जन्मों का अफसाना है, ये कहकर तुम जताते हो।

बुलाते हो किसी से इश्क करके क्यों मुसीबत को बुलाते हो, बुलाया था जिसे उसे मुलाकातें करा तुम भी।

0: आखिर क्यों जगाते हो मेरे सोए हुए जख्मों को, आखिर क्यों जगाते हो हवाओं की तरह तुम रुख बदलता सा दिखाते हो, हवाओं की तरह तुम रुख बदलता सा दिखाते हो।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ, कवयित्री थी रेशमा हाशमी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ का यह गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म नया दौर का ये गीत। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था ओ पी नैयर ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। गीत लिखा था मजूर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
5: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
6: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
7: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए

0: 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: याद रखो हमारी बात,
2: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
1: जंगल है धरती का गहना,
2: सदा इसकी रक्षा करना,
1: होगी जो धरती पर हरियाली,
2: चहुओं ओर फैलेगी खुशहाली।

0: महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म हमराज का ये गीत। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था रवि ने। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
3: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
5: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
7: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
5: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
8: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
10: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक 28 वर्षों के

0: अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन

0: And finally, in some football news, in the UEFA Champions League, Arsenal-Barcelona cruise, Atletico stumps United, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today. Union Cabinet approves productivity-linked bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the fourth T20 match to level series 2-2. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर रुखमाबाई राउत। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से राजेश कुमार और नांदेड़ महाराष्ट्र से सुनैना संतोष भाकरे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे चरित्र की, जिन्होंने समय की देहरी पर खड़े होकर अपने युग को देखा और आने वाले समय के लिए भाषा, राष्ट्र चेतना और संस्कारों के ऐसे दीप जलाए जिसके उजाले में भारत की आत्मा आलोकित है। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का ताप सहा, जेल यात्राएं की, दूसरी ओर साहित्य की शीतल छाओं में समाज को विचार दिए। उनकी कलम में भारतीयता का स्पंदन है और मातृभाषा उनके लिए केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, अपनी मिट्टी से जुड़ी पहचान थी। भारत के वो महान सपूत थे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का जन्म 16 अक्टूबर सन 1896 को जबलपुर में हुआ था। ये एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार था। उनके दादाजी राजा गोकुलदास महाकौशल और मध्य प्रांत के सबसे धनाढ्य मालगुजार और समाजसेवी थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके परिवार के जनहितैषी कार्यों और उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें राजा की वंशानुगत उपाधि प्रदान की थी। सेठ गोविंद दास के पिता का नाम सेठ जीवन दास था, जिन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। ऐसे राजसी वातावरण में पलने बढ़ने के बावजूद गोविंद दास जी का रुझान सादगी, अध्यात्म और ज्ञानार्जन की ओर रहा। उनकी आरंभिक शिक्षा किसी औपचारिक विद्यालय में नहीं, बल्कि उनके घर पर ही बड़े विद्वान आचार्यों के सानिध्य में हुई। घर पर ही शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया था। स्वाध्याय की अद्भुत ललक के कारण उन्होंने किशोरावस्था में ही वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन दर्शन का

विशद अध्ययन कर लिया था। साथ ही उन्होंने शेक्सपियर, इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी साहित्यकारों को भी पढ़ा। जब सेठ गोविंद दास युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब संपूर्ण भारतवर्ष स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला से सुलग रहा था। सन 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, तब उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता विरासत से प्राप्त सुख सुविधाओं के भोग का था और दूसरा गांधी जी के आह्वान पर स्वाधीनता आंदोलन में कांटों भरी राह पर चलने का। सेठ गोविंद दास ने दूसरा मार्ग चुना।

इस तरह सेठ गोविंद दास भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके परिवार को मिली राजा की उपाधि और सरकार द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं का बहिष्कार किया। सेठ गोविंद दास ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और खादी को जीवन भर के लिए अपना लिया। सन 1921 में जब गांधी जी जबलपुर आए तो सेठ गोविंद दास के इस त्याग और स्वाधीनता के प्रति उनके समर्पण को देखकर वो भाव विभोर हो गए। सन 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को लेकर आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 18 मार्च सन 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल से हुई। सेठ गोविंद दास ने इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी धन शक्ति और संगठन क्षमता से इसे राष्ट्रव्यापी बनाने में विशेष योगदान दिया। झंडा सत्याग्रह में उनकी भूमिका ऐसी थी कि वो तभी से महाकौशल की जनता के प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर उभरे। सभी ने उन्हें प्रेम से काका साहेब कहकर पुकारना शुरू किया। सन 1929 में सेठ गोविंद दास ने द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ लोकमत नामक राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में वो सघन रूप से सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने महाकौशल और मध्य प्रांत का कुशल नेतृत्व किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वो बार बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 8 साल से अधिक का समय जेल के भीतर काटा। जेल की कठोर यातनाएं, पारिवारिक संपत्ति की कुर्की और बिगड़ते स्वास्थ्य ने भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास और सरदार पटेल जैसे नेताओं के निकट संपर्क में

हैं। इतना ही नहीं, देश की संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी उनका विशेष योगदान था। मात्र 27 वर्ष की आयु में ही वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए, जहां वो लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेताओं के साथ ब्रिटिश हुकूमत की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करते रहे। वो भारत की आज़ादी से पहले केंद्रीय असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के निरंतर सदस्य रहे। भारत की आज़ादी के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो सेठ गोविंद दास को मध्य प्रांत से इसका सदस्य चुना गया। संविधान सभा के भीतर उन्होंने एक अत्यंत प्रखर और दूरदर्शी नीतिकार की भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, पंचायती राज व्यवस्था, कृषि संरक्षण और भाषाई अस्मिता को शामिल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता थी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र से वो लगातार सांसद निर्वाचित होते रहे। सन 1957, 1962 और 1967 में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसद के भीतर वो केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि देश की व्यवस्था को सुचारू बनाने वाले नीतिकार थे। उन्होंने सदैव भारत और भारतीयता के जय विजय की कामना की।

गोविंद दास राजभाषा हिंदी के संरक्षक और भारतीय संस्कृति के अमर संवाहक थे। यदि स्वाधीनता संग्राम उनके जीवन का मुख्य अध्याय था, तो हिंदी को उसका राष्ट्रव्यापी गौरव दिलाना उनके जीवन की परम उपलब्धि थी। संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न सबसे अधिक संवेदनशील और बहस का विषय था। सेठ गोविंद दास ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत आदि के साथ मिलकर हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए ऐतिहासिक मोर्चा संभाला। संविधान सभा के भीतर उन्होंने अंग्रेजी के वर्चस्व का अकाट्य तर्कों से खंडन किया। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि भारत को एक सूत्र में पिरोना है और लोकतंत्र को भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो शासन प्रशासन की भाषा हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाएं ही होनी चाहिए। सेठ गोविंद दास का मानना था कि जब तक भारत अपनी शासन व्यवस्था और संसद का कार्य अपनी राष्ट्रभाषा में नहीं करेगा, तब तक भारत के आम नागरिक को इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि देश वास्तव में आजाद हो गया है। सेठ गोविंद दास, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गज नेताओं के प्रयास से ही अंततः 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। सेठ गोविंद दास का व्यक्तित्व अद्भुत था। वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, संसदीय व्यवस्था के अग्रणी नेता थे, तो दूसरी ओर वो हिंदी साहित्य के सबसे उर्वर और महान नाटककारों में से एक थे। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने साहित्य सृजन के लिए समय निकाला और हिंदी साहित्य को अपनी अनमोल कृतियों से समृद्ध किया। सेठ गोविंद दास ने 100 से अधिक नाटकों और एकांकियों की रचना की। उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे गए थे, बल्कि उसमें भारतीय इतिहास, पौराणिक

मूल्यों, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और युगबोध की गूंज थी। उनके प्रमुख ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों में कर्तव्य, हर्ष, शशिगुप्त, अशोक, कुलीनता और शेरशाह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल चरित्रों को पुनर्जीवित कर राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। उनके सामाजिक नाटकों में प्रकाश, विकास, बड़ा पापी कौन और गरीबी या अमीरी प्रमुख हैं, जिनमें उन्होंने सामाजिक विसंगतियों और वर्ग संघर्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत जैसे एकांकी संग्रहों की भी रचना की। इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। उनकी आत्मकथा एक कालजयी रचना है जो आत्मनिरीक्षण शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। ये कृति 20वीं सदी के पूर्वार्ध के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन का अत्यंत प्रमाणिक, निष्पक्ष और ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने छुआछूत और जाति भेद के निवारण के लिए अभियान चलाए। वो भारतीय कृषि का आधार गौवंश को मानते थे, इसलिए उन्होंने सदा ही गौ संरक्षण के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही वो स्त्री शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे। सेठ गोविंद दास को सन 1961 में पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आजीवन भारत और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करते हुए उन्होंने 18 जून सन 1974 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। लीजिए पेश है इस घंटे की खास

मीडियम ही 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता और साथियों को आपकी मित्राजय का नमस्कार। दोस्तों, आज भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती है। या दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। उन्हें मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे वर्ष 2002 से 2007 तक। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से वर्ष 1997 में उन्हें सम्मानित किया गया। विज्ञान और रक्षा में उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में रहकर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1998 के पोखरण या परमाणु परीक्षण में उनका अहम योगदान था। वे बच्चों और युवाओं से बेहद प्यार करते थे और उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। श्रोताओ, उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। कलाम साहब द्वारा कुछ प्रसिद्ध और प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान यह उनकी सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिसे उन्होंने प्रोफेसर अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था और इसका प्रकाशन वर्ष 1999 में हुआ। इस पुस्तक में उनके शुरुआती जीवन, इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिक रूप में उनके सफर का वर्णन है। एक दृष्टिकोण, भारत 2020 नए सहस्त्रवादी के लिए एक दृष्टिकोण, यह पुस्तक डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी गई और इसका प्रकाशन वर्ष 1998 में हुआ। इसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। उनकी पुस्तकों में प्रज्वलित मन, टर्निंग पॉइंट्स, जर्नी थ्रू चैलेंजर्स जैसी पुस्तकें शामिल हैं। इग्नाइटेड माइंड्स और मिशन इंडिया भारत के विकास और विज्ञान से जुड़ी उनकी अन्य रचनाएं हैं। श्रोता, कलाम साहब ने चुनौतियों और समस्याओं के बारे में अपने भाषणों और किताबों से जो वास्तविक विचार कहे, उन्होंने कहा था कि चुनौतियों से सीखना। उनका मानना था कि जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं इसीलिए आती हैं ताकि हम उनसे सीखकर और मजबूत बने। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम साहब हमेशा युवाओं से कहते थे कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।

शुदा कलाम साहब के आदर्श और उनके विचार हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। आज कलाम साहब की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
4: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
5: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
6: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
7: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र अजय। श्रोतो, आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है। अब गांव में हर तीसरी महिला कामकाजी समूह बनाकर दूसरों को हुनरमंद करने में जुटी हैं। घूंघट से ड्रोन तक अब गांव की महिलाएं बना रही हैं बिजनेस मॉडल। श्रोताओं, गांव की अधिकतर महिलाएं पहले लंबे घूंघट में रहती थीं। इनके घर की दहलीज बार बार पार करने पर पाबंदी थी। अब समाज परिवार से कुछ छूट मिली तो ये काम धंधा और मान सम्मान में शहर की महिलाओं से आगे निकलने जैसी स्थिति में आ गई हैं। श्रोताओं, मौजूदा स्थिति यह है कि गांव में हर तीसरे घर से एक महिलाएं कुछ ना कुछ काम पुरुषों की तरह कर रही हैं। जिला कार्यक्रम प्रबंधक विनीत गुप्ता ने बताया कि सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के अनुसार गांव में लगभग 1,40,000 महिलाएं निवास करती हैं और इनमें से 56,706 किसी न किसी काम में वर्तमान समय में कार्यरत हैं। इन्हीं में से 15,200 महिलाएं ऐसी हैं जो 1,00,000 से अधिक सालाना कमा रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण महिला और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर ऐसी ही कुछ सफल महिलाओं की कहानी हम आपको बता रहे हैं। निकोड़ी की उषा रावत नर्सरी और पशुपालन से हर महीने 60,000 रुपये से ज़्यादा कमा रही हैं और उन्होंने कहा है कि पहले कचरे घर में रहते थे, अब उनके पास सब कुछ है। पहले कच्चे घर में रहते थे, अब उनके पास सब कुछ है। 4 बीघा जमीन पर जो पौधे वे तैयार करती हैं उन्हें नगर निगम और 82 पंचायतों में सप्लाई करती हैं। उन्होंने बताया कि अकेले नर्सरी को पौध बेचकर ही वे 6-7 लाख रुपए महीने 6-7 लाख रुपए साल कमा लेती हैं। उन्होंने बताया कि आज गुरुवार को फिर भोपाल में उन्नत किसान के रूप में उनका सम्मान होना है। श्रोताओ, उनकी इस उपलब्धि पर हम उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओ, सोचना कि बिंदु गोस्वामी भी उन 4 महिलाओं में से एक हैं जो खेत में दवाई छिड़कने ड्रोन उड़ाती हैं। और बिंदु ने बताया है कि 15 दिन की ट्रेनिंग गुरुग्राम में ली और इसके बाद वे एक साल में 2,500 बीघा एरिया में दवा का छिड़काव कर चुकी हैं। इसके बदले में उन्हें 150 रुपये बीघा मिलता है। काम नियमित मिलने से उन्हें रवि और खरीफ सीजन में 20,000 रुपये महीने तक मिल जाते हैं और इनकी देखरेख में अन्य महिलाएं भी इस काम से जुड़ गई हैं।

श्रोताओ, विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाने का जो सुझाव है वो वर्ष 1995 में बीजिंग में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में दिया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस प्रस्ताव

संशोधन करने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। आज के समय में महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नौकरी, व्यवसाय और कृषि के माध्यम से घरेलू आय में भी सक्रिय रूप से हाथ बटा रही हैं। भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री जैसे सर्वोच्च पदों को भी संभाला है और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग, आईटी और स्टार्टअप में महिलाएं बड़ी कंपनियों की कमान संभाल रही हैं। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस बलों में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। इसरो के मंगलयान और चंद्रयान जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में महिलाएं वैज्ञानिकों ने देश का वैश्विक स्तर पर नाम रोशन किया है। वहीं खेल जगत में भी महिलाओं ने अपना योगदान दिया है।

श्रोताओ, जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, पौष्टिक भोजन करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है दोस्तों नींद। यहाँ दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में और भरपूर नींद लेना भी बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पर्याप्त नींद ही नहीं बल्कि समय पर नींद लेना और सही समय पर उठना भी बेहद ही ज़रूरी है, और ऐसा ना करना कई रोगों को दावत देना है। दोस्तों, नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी सोने की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए और शरीर के दूसरे अंगों को आराम देने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। श्रोता, पर्याप्त नींद शरीर ही नहीं मन के लिए भी ज़रूरी है। कम नींद से वयस्कों में बीमारियाँ होती हैं और याददाश्त भी जो है वो कम होने लगती है। वहीं कम नींद से बच्चों का जो शारीरिक विकास है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। श्रोता, कुछ लोग रात भर काम या यात्रा के दौरान जो है वो जागते रहते हैं, और अधिकतर उन्हें लगता है कि अगर रात में नहीं सोते हैं तो दिन में सोकर नींद पूरी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सोते समय शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और इनमें अधिकांश हार्मोन्स केवल रात को ही स्रावित होते हैं। दिन में सोने से थकान थोड़ी बहुत दूर हो सकती है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन्स की जो भरपाई है वो नहीं होती है। और दोस्तों, यही वजह है कि जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हार्मोन का असंतुलन होने लगता है, उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे ब्लड शुगर, थायराइड जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। श्रोताओ, मानसिक तनाव, अत्यधिक थकावट, पेट खराब होना, दिनचर्या संतुलित ना होना, सोने उठने और खाने पीने का कोई निश्चित समय ना होना नींद ना आने के कारण है। कम सोने के जो खतरे हैं उनसे उनमें जुकाम और फ्लू का खतरा रहता है, दिल की बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मधुमेह हो सकता है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है, और समय से पहले आप काल के ग्रास बन सकते हैं। दोस्तों, आजकल अक्सर यह देखा गया है कि नींद न आने का बहाना बनाकर अधिकतर जो युवा हैं वह मोबाइल देखते रहते हैं। दोस्तों, असली समस्या यहीं से शुरू होती है। इससे न केवल आंखों की नमी कम होती है बल्कि आंखों में जलन होने से नींद नहीं आती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप दूरी बना लें, और यदि संभव हो तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने से न केवल अच्छी नींद आती है बल्कि कम समय में पर्याप्त नींद का भी अनुभव होता है। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि देर तक सोने और लेट उठने के क्या क्या नुकसान हैं। कैलोरी बर्न नहीं होने के कारण शरीर मोटापा ग्रस्त हो सकता है, वजन अनियमित रूप से बढ़ने लगता है, हार्मोन का असंतुलन होने लगता है, और आपका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। धीरे धीरे डिप्रेशन आपको घेर लेता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और ज़्यादा आराम करने की स्थिति में भी मांसपेशी

पेशियों पर जो है वो बुरा असर पड़ता है। श्रोता, अधिकतर देर तक सोने से भी दिमाग पर भी असर पड़ता है और याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। श्रोता, अच्छी नींद के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताते हैं। अच्छी नींद के लिए कुछ बेहतर उपाय हैं, जैसे कि सोने से पहले पैरों को गर्म पानी से धोएं और सोने के कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें, और कोशिश ये करें कि रात का खाना शाम 7 से 8 बजे के बीच ही खा लें और बाहर का खाना खाने से बचें। रात को हल्का खाना ही खाएं। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर टहलें, इससे नींद अच्छी आती है। और कोशिश ये करें श्रोताओं कि दिन में आपकी जो सोने की आदत है उससे बचें। हमेशा रोज़ एक ही समय पर सोना चाहिए, इससे यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अच्छी नींद के क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छी और भरपूर नींद लेने से पाचन तंत्र जो है वो सुचारू रहता है, शरीर का वजन संतुलित रहता है, तन और मन शांत और खुशमिजाज रहते हैं, आपकी जो एकाग्रता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सिर दर्द और अन्य रोगों के दर्द से जो है वो राहत मिलती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। श्रोता, उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति के सोने का जो समय है वो कुछ अलग अलग है, लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक औसतन न्यूनतम कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोता, बच्चों की हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। दोस्तों, हमेशा से ही बच्चों की इमोशनल हेल्थ को मजबूत करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे भावनात्मक तौर पर मजबूत होंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यह तो अक्सर हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि परीक्षा में कम अंक आने या असफल होने के डर से बच्चे घातक कदम उठा लेते हैं। यह उदाहरण है कि वे इमोशनल तौर पर कितने कमज़ोर हैं। ऐसे में एक अभिभावक, शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की इमोशनल हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। श्रोता, बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, इसका उनके विकास पर असर पड़ता है। बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी जो हैं वो जिम्मेदारियाँ उन्हें दें, इससे वे जिम्मेदार बनेंगे। और अगर बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें, और दिन भर में फैमिली टाइम निश्चित करें जिसमें बच्चों से बातें करें, उनकी बातें सुनें, जिससे वे खुद को इग्नोर फील ना करें। योग और मेडिटेशन बच्चों को नियमित तौर पर कराएं। साथ ही बच्चों में नई हॉबी डेवलप करें जिससे उनमें सामाजिक जुड़ाव जो है वो विकसित करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग है गुर्जरी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग था गुर्जरी तोड़ी। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। अब जिले की छठी कुछ क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जिले की चिट्ठी थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हरदा जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम को हरदा का नया कलेक्टर बनाया गया है। वे 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके स्थान पर अब तक हरदा कलेक्टर रहे सिद्धार्थ जैन का तबादला किया गया है। वहीं जिले में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। शहर में करीब 50 स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि पूरे जिले में सैकड़ों पंडाल सजाए गए हैं। गढ़ीपुरा क्षेत्र की कुएं वाली माता की प्रतिमा खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदिरों और पंडालों में पूजा पाठ, आरती और भजन कीर्तन के साथ भक्तिमय माहौल है। नवरात्रि के उत्साह के बीच सोडलपुर के कान्हा बाबा मैदान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन भी किया गया, जिसमें निमाड़ी और देव भीलट गायन के साथ गदली, कोरकू, जनजाति डंडा, काठी और गड़गौर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम के जरिए स्थानीय लोक कला और जनजाति परंपराओं को एक मंच मिला। वहीं दूसरी तरफ हरदा में दिगंबर जैन समाज की ओर से 16 दिवसीय श्री 1008 शांतिनाथ महामंडल विधान शुरू किया गया है, जिसमें भगवान शांतिनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक, शांतिधारा और मंत्र जाप किए जा रहे हैं। विश्व शांति और सभी जीवों के कल्याण की कामना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का समापन 26 अक्टूबर को महायज्ञ और हवन के साथ होगा। इसी बीच जिले में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की गई। टिमरनी और हरदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से निकली यात्रा शासकीय पॉलिटेक्निक पहुंची, जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी हरदा दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और वृद्धाश्रम का दौरा किया और ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री दस्तावेज सौंपे। मुख्यमंत्री ने जिले में फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा भी की। इससे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर जनजाति कार्य विभाग के प्रभारी जिला संयोजक प्रमोद कुमार माथुर को निलंबित कर दिया गया है। उन पर शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं करने का आरोप है। जिले में सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी किया गया। सामाजिक न्याय विभाग, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जन अभियान परिषद से जुड़े प्रतिनिधियों ने लोगों को योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। इसी तरह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने स्वच्छता, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के बेहतर विकास के बारे में जागरूक किया गया। अब बात करते हैं खेलों की। हरदा में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में बीते दिनों 178 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ओपन वर्ग में वैभव तोमर विजेता बने। वहीं प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ियों को अपनी रणनीतिक क्षमता और एकाग्रता दिखाने का अवसर मिला। किसानों के लिए भी जिले में खास आयोजन किए गए। बलराम जयंती के अवसर पर किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने जैविक और प्राकृतिक खेती के उत्पादों का हाट बाजार लगाया। इसमें प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वहीं हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित 14 वर्ष आयु वर्ग की संभाग स्तरीय शालेय खो खो प्रतियोगिता में मेजबान जिले की बालक और बालिका दोनों टीमों ने खिताब जीते। बालक वर्ग के मुकाबले में हरदा ने नर्मदापुरम को 15-13 से हराकर जीत दर्ज की, जबकि नर्मदापुरम ने बैतूल को 15-10 से मात दी। सामाजिक आयोजनों की बात करें तो अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज ने शहर में 10 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की। इनमें प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। पंचायत उपचुनाव में जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में कांग्रेस समर्थित सरला उइके ने जीत दर्ज की। इस वार्ड के 50 मतदान केंद्रों पर 52.95% मतदान हुआ था। ये मुकाबला भाजपा समर्थित उमा काजले और सरला उइके के बीच था, जिसमें मतगणना के बाद सरला उइके को विजयी घोषित किया गया। और अंत में बात करते हैं नर्मदी ब्राह्मण समाज की धर्मशाला स्थापना की।

0: इसके 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें देशभर की 55 से अधिक इकाइयों से आए 3000 से अधिक समाजजनों ने हिस्सा लिया। समारोह के जरिए समाज की परंपराओं और 100 साल के सफर को याद किया गया। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: मीडियम 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। गीत लिखा है नरेंद्र शर्मा ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ग्राम संदलपुर आंतरी से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा है कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम इटमा से मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी देवी रावत ने। तो आइए सुनते हैं सभी फरमाइश पर फिल्म प्रेम रोग का ये गीत।

शायद साथ कार्यक्रम है आगे लीजिए, जब सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म 20 साल बाद का यह गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ग्वालियर से

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म बेताब का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने।

0: सौदागर संतरपुरा से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने, और इस गीत को सुनी फरमाइश की थी चौरसिया कॉलोनी ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, लखन चौरसिया और रेखा चौरसिया ने, और इसी गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव और अपर्णा नामदेव ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी ऑल आउट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म जीत का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शवन ने। खगड़िया बिहार से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था अंशु कुमार, संजू कुमार और मनोज कुमार ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी जैन रेडियो श्रोता संघ बीरम गांव से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावनेश सन्नी और हेतल भावसार ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी राजकोट एयरपोर्ट कॉलोनी से जगदीश जोशी, मंजुला जोशी, हितेश, हेमा, रिद्धि, पुलकित और पर्व जोशी ने।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
0: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
1: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
0: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
1: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
0: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें,
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
1: आओ मिलकर करें प्रयास,
0: शुद्ध पानी हो सबके पास।

अलका याग्निक, मनोहरदास और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म जानवर का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। ग्राम रजौदा, तहसील जौरा, जिला मुरैना से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था शैलेंद्र कुशवाहा, सोनू राजपूत, नितिन शर्मा और संजय शर्मा ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी यमुनानगर दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर जिला ग्वालियर से अनीता जैन, शिवानी जैन, नीलम जैन, सुभाष जैन, चित्रलेखा और ममता ने। शो साथियों, कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय स्वागत है, 8:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के रूप में याद किए जाने वाले डॉक्टर कलाम की दूरदर्शी सोच और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता युवाओं को आज भी प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा कर सहमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्रालय में विभिन्न विभागों की बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से चार दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाऊ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा करीब 560 पदों के लिए पात्र प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है और पर्यटकों के लिए मंदसौर के गांधी सागर जलाशय के सुरम्य बैकवाटर्स पर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया जा रहा है। ये आयोजन साहसिक और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति प्रियंका की।

0: नमस्कार, फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। श्रोताओं, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विश्व डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। एक समय था जब डाक सेवा हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक थी, जिसके जरिए हमारे संदेश, हमारी भावनाएं और कई बार हमारी जरूरतें भी इस सेवा के माध्यम से पहुंचती थी। तो चलिए एक बार पुनः लौटा जाए उस दौर में और अपने अनुभवों के माध्यम से थोड़ी सी खुशी एक दूसरे तक पहुंचाई जाए और बीते समय और बीते दौर की चौपाल पर बैठकर गपशप की जाए और जो बीत गया उसे पुनर्जीवित किया जाए। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। नमस्कार
1: जी। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार। नमस्कार
0: जी।
1: आपको और कौन सा विषय वस्तु पर आज बात करना?
0: आज विषय है हमारा विश्व डाक सप्ताह चल रहा है, तो
1: उससे सप्ताह
0: जी हाँ, और 15 अक्टूबर यानी आज उसका आखिरी दिन है, तो हम ये जानना चाहते है की आपके लिए डाक सेवा में से कौन सी डाक सेवा ऐसी थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी, आपके जीवन का अभिन्न अंग थी और आपने उसका कितना उपयोग किया उस सेवा का?
1: जी जी जी, पहले मैं अपना परिचय दे दूं दीदी जी।
0: जी बिल्कुल, हमने सोचा आपने विषय पूछ लिया तो हम पहले विषय बता देते हैं, नाम हम बाद में पूछ लेंगे कि कौन और कहां से बोल रहे हैं।
1: जी मैं जो है ये जिला बांदा, ये बुंदेलखंड में पड़ता है, जिला बांदा चित्रकूट धाम है
0: जी,
1: वहाँ के 35 किलोमीटर दूर बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और दीदी जी को सब सब राम राम भेज रहा हूँ।
0: जी दिनकर जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ठीक है, विषय आपने
1: जी, आपने जो है ये जो चैप्टर रखा है इसमें जो है मैं थोड़ा एक दो शब्द कहूँगा, आपने जो ये विषय वस्तु रखा है बहुत अच्छी जो है
0: जी,
1: तो इसमें दो शब्द कहता हूँ कि अगर मेरा बस चलता तो मैं दुनिया के दामन में खुशियाँ भर देता। और दीदी जी, प्रियंका दीदी जी, जो आपने प्रस्तुति दी है और जो चैप्टर रखा है, इस चैप्टर और इस प्रस्तुति में आपको 100 में 110 नंबर दे देता अगर मैं आपका एग्जामिनर होता।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात ये है कि जो चीजें खो जाती है ना वो अक्सर याद आती है ना, तो बस यही सोचकर हमने आज ये विषय रखा है कि पत्र सेवा, डाक सेवा हमारे लिए जो कभी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग हुआ करती थी और जो अब लगभग विलुप्त सी होती जा रही है, अब कहीं ना वो लाल डब्बे दिखाई देते हैं और न किसी के खत का इंतजार होता है, तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो समय के साथ खैर बदलाव है, लेकिन फिर भी क्या आप आज भी उन सेवाओं का उपयोग करते हैं या इनमें से किसी सेवा का उपयोग करते हैं, बताइए दिनकर जी।
1: जी मैं तो अब बिल्कुल इस सेवा का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन एक जमाना था कि हम लोग जो है डाक सेवा का जो है भरपूर प्रयोग किया है
0: जी।
1: और वो जमाना हुआ करता था जब हम लोग, मेरी उम्र 55 साल है और जब हम यंग हुए तो हम लोग जो है कोई भी मित्र हो या मित्र मंडली हो, जब किसी का पत्र आता था जब दूर से
0: जी,
1: तो बड़ी बेचैनी से और एक एक शब्द उसको पढ़ा करते थे
0: जी जी जी।
1: और इसमें कुछ ये होता था कि हम जो है बीच में जब यंग हुए तो लव लेटर भी लिखते थे, तो उसमें हमारा एक मैथ से पढ़ता था, मैथ से लव लेटर लिखते थे, दूसरा कोई पढ़ नहीं पाता था।
0: क्या बात है, वो कैसे?
1: वो हम लोग जो है एक कामन लिप बनाए थे, कई लोग जो है कामन लिप, जैसे का को हमको का लिखना है तो का को ए लिखेंगे।
0: अच्छा।
1: और पूरी काखा गाघा अंगा को A1 A2 1 3 इस तरह लिखते थे और मात्राओं को जो है उसमें जो है घात के जैसे घातांक लगाया जाता है।
0: हाँ जी हाँ।
1: अगर वो 5 नंबर की मात्रा है तो घात 5 लगा देंगे हम।
0: क्या बात है, ये बिल्कुल एक नया तरीका बताया आपने, एक रहस्यमय पत्र लिखने का।
1: जी जी जी, इसको कम से कम 40 से 50 लोग हम लोग जो है अपन में लिखते थे जो है।
0: क्या बात है,
1: उसमें से कभी काफी बहने भी होती थी और काफी भैया लोग भी होते थे।
0: बहुत बड़ा मजा आता होगा तो फिर उस समय में किसी का पत्र आता है, हमारा पत्र
1: ये पत्र के माध्यम से जाता था।
0: जी जी जी जी जी, और बड़ी खुशी होती होगी कि आहा हमारा पत्र तो कोई नहीं पढ़ सकता है हमारे सिवा, या हमारे वो दोस्त मंडली जिन्हें इसके बारे में मालूम है उनके सिवा कोई नहीं पढ़ सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके सिवा कोई पढ़ ही नहीं सकता था, वो टूटा ऐसा लगता था कोई ये मैथ का सवाल लिख के आ गया है।

0: और वो सॉल्व करने में लग जाता था, बस ये समझ ही नहीं पाता था कि ये पत्र है।
1: जी जी और आपको मैंने उसको थोड़ा वो भी बता दिया कि जैसे एक काका गागा अंगा तो ए से शुरू होगा पूरा काका गागा अंगा ए, खा लिखना तो टू ए लिख देंगे तो मान वो जान जाएगा कि खा लिखा है।
0: जी जी यानी आपने अंग्रेजी
1: बड़ा खा बना है तो उसमें घातांक की संख्या ऊपर दो लग जाएगी।
0: क्या बात है, तो ये
1: मतलब हो जाएगा बड़ा खा हो गया।
0: जी तो ये मतलब एक मिला जुला पत्र हो जाता था अंग्रेजी और हिंदी का।
1: जी जी जी
0: और उससे मैथ्स बन जाता था।
1: जी और ये जो है अब वो लगभग अब लोग जो है इसको जो है आपका मैसेज के द्वारा ये सब जाने लगा, जो क्योंकि मोबाइल का और डिजिटल जमाना चल गया।
0: बिल्कुल,
1: तो वे मैसेज के द्वारा जाता है सब कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब आपने ये एक अनोखी बात हम आपकी इस बात का एक निष्कर्ष हम निकालते हैं ये कि ये बड़ी अनोखी बात है कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होता था लेकिन पत्र मैथ्स में होता था, यानी तीन विषय एक साथ पढ़ लिया करते थे आप।
1: जी जी जी जी और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये कभी इतिहास बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और ये डाक सेवा जो है हमारी इतनी अच्छी सेवा थी कि बहुत से अच्छी सूचनाएं आपको डाक सेवा के माध्यम से मिलती थी।
0: जी जी जी जी जी
1: और हम लोगों के पैसा भी डाक सेवा से भी आते थे, हम जब बाहर रहते थे हम अपने पिताजी को पत्र लिखते थे और पैसे जो है डाक सेवा से ही हमें प्राप्त होते थे।
0: बिल्कुल जी हाँ, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे तो डाक सेवा के द्वारा ही भिजवाए जाते थे, टेलीग्राम के माध्यम से भिजवाए जाते थे।
1: जी जी जब हाँ। और इसमें कम से एक हफ्ते का समय लगता था, एक हफ्ते पहले हम अपना
0: सूचना देते थे,
1: अगर हमारा खर्चा लिमिट में रह गया तो एक हफ्ते पहले हमें प्रक्रिया शुरू करते थे।
0: बिल्कुल, प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक सप्ताह से 10 दिन लग जाता था।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो क्या है एक बटन क्लिक करो कि बिल्कुल आपका पैसा आपके खाते में पहुंच गया।
0: जी हाँ, और वो जो 10 दिन की जो इंतजार रहती थी, बेकरारी रहती थी कि अब पैसे आएंगे, वो इंतजार भी एक अपने आप में अलग ही होता था।
1: बिल्कुल, क्योंकि बीच में कोई स्रोत ही नहीं था दीदी जी की, कोई स्रोत होगी आपसे सीधा कोई बात कर ले कि आपको पत्र मिला कि नहीं मिला, मैं मुझे पैसे की कमी, कोई स्रोत नहीं था।
0: बिल्कुल, तो दिनकर जी बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत ही दिलचस्प बातें हमारे साथ साझा की और हमें बड़ा अच्छा लगा सुनकर आपका यह अनुभव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
1: जी। जी नमस्कार,
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं बताइए अपना नाम।
1: चंद्रेश बंसल बोल रहा है, मणिकुमार सानी से, जिला
0: चंद्रेश जी।
1: रायसेन तहसील बेगमगंज।
0: जी, कैसे हैं चंद्रेश जी आप?
1: मैम बढ़िया हैं आप? बढ़िया हो।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और जो है विश्व डाक सप्ताह चल रहा है, आज
1: जी
0: आखिरी दिन है विश्व डाक सप्ताह का। तो हम जानना चाहते हैं कि डाक सेवा का उपयोग आप किस तरह से करते थे और कौन सी सेवा का आपने सबसे ज़्यादा उपयोग किया?
1: जी मैम, ऐसा तो हमारे कभी समय आए ही नहीं है। जी
0: अच्छा, पत्र लिखने की कभी बारी नहीं आई आपकी?
1: मैम, कभी नहीं किया हमने ऐसा।
0: अच्छा, और कोई भी जरिया आपको नहीं मिला या माध्यम नहीं मिला डाक सेवा का, कि टेलीग्राम के द्वारा संदेश पहुंचाया हो?
1: जी मैम, कभी नहीं किया हमने।
0: कभी नहीं किया? अपने माता पिता को कभी खत नहीं लिखा? भाई बहन को, परिवारजनों को कभी आपने कोई खत नहीं लिखा?
1: नहीं लिखा मैम।
0: अच्छा, तो आपकी उसी समय आमने सामने ही बात हो जाया करती थी, या आपके सभी जो मिलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो आपके साथ आपके आसपास ही रहते हैं, शायद इस वजह से नहीं कर पाए आप?
1: जी मैम, साथ में रहते थे परिवार वाले। जी
0: अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी और ने डाक सेवा का उपयोग किया है, और जैसे कई बार होता है ना कि व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता था, एक समय था कि भाई सभी निरक्षर थे, आपने कभी किसी के लिए पत्र पढ़ा हो किसी का?
1: हाँ हाँ मैम, ऐसा तो हुआ है, पढ़ा हमने मैम।
0: अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चंद्रेश जी आपका, नमस्कार।
1: जी मैम, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, बात आपकी गीत हमारे।
0: जी हाँ, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, फोन इन कार्यक्रम है, और हमारी बात किससे हो रही है हम ये जानना चाहेंगे पहले।
1: मैं रानतलैया छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: जी
1: पूरे आकाशवाणी परिवार सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बधाई और शुभकामनाएं हैं। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व डाक सप्ताह, जो है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है, तो डाक सेवा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही?
1: डाक सेवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो थोड़ा सा पत्रों का आना जाना कम हो गया, लेकिन पहले जो थे पत्रों का आना जाना बहुत था। और मतलब डाकिया का लोग इंतजार किया करते थे हम लोग के डाकिया आए और कब पत्र मिले हम लोगों को।
0: जी, तो
1: हाँ, तो
0: आपको
1: डाकिया
0: किसके
1: के लिए
0: पत्र
1: कहा
0: की
1: गया है कि
0: उम्मीद?
1: भोला भाला डाकिया जादू करे महान,
0: हाँ,
1: एक ही थैले से बांटे आंसू और मुस्कान।
0: क्या बात है, बहुत सही, बहुत सटीक बात कही, और बहुत ही खूबसूरत लफ्ज हैं आपकी इन दो लाइनों में।
1: थैंक यू,
0: जी,
1: थैंक यू मैम।
0: डाकिया तो वाकई में हमारे लिए जो है, एक एक तरह से देखा जाए तो उस जमाने में हम ईश्वर की तरह मानते थे कि ये हमारा संदेशा लेकर आने वाले व्यक्ति है, एक मध्यस्थ ही है, मीडिएटर है हमारे दो लोगों के बीच का,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है
1: मैम,
0: ना?
1: बिल्कुल है ना। वो
0: जी
1: गांव में तो बहुत ज्यादा उनका मतलब बहुत सम्मान उनका रहता था, और एक बिल्कुल उत्सव जैसा होता था जब डाकिया आते थे गांव
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल, हर घर से व्यक्ति निकलकर बाहर आ जाता था जब डाकिया
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: साइकिल पर आता था और थैला खोलता था। तो हमने
1: जी
0: भी देखा है वो समय कि सभी लोग डाकिये के आसपास भी खड़े हो जाते थे। कई लोग तो इतनी बेसब्री से इंतजार करते थे, उन्हें इतना उतावलापन होता था किसी के पत्र को पाने का, कि
1: बिल्कुल
0: डाकिये की
1: बिल्कुल मैम,
0: साइकिल के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे, और वो बेचारा हैरान परेशान जो है, एक एक का पत्र
1: जी,
0: छांट छांट कर उनके हाथों में देता था,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: तो बहुत सम्मान था, बहुत सम्मान था, है ना। आजकल तो थोड़ा सा माहौल बदल गया है,
0: जी
1: डिजिटल उसमें सब चीजें आने लगी।

0: जी, समय के
1: लेकिन
0: साथ
1: वो बहुत ही
0: परिवर्तन,
1: सुनहरा दौर था, सुनहरा
0: हाँ
1: दौर था वो,
0: जी,
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा वो।
0: समय के साथ परिवर्तन हर क्षेत्र में है, तो डाक सेवा में भी आया है। लेकिन
1: जी
0: हमारे यहाँ आकाशवाणी से तो डाक सेवा अभी भी हम उपयोग में ला रहे हैं, क्योंकि श्रोताओं के पत्र हमें मिलते हैं उनकी फरमाइश पूरी करने के
1: जी
0: लिए।
1: जी जी बिल्कुल जी, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम। और हम ये बताएं कि हमने जो पत्र लेखन सीखा वो हमने आकाशवाणी की थ्रू ही सीखा, क्योंकि हम लोग भी आकाशवाणी पत्र लिखते रहे। अब
0: जी
1: थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन बराबर हम लोगों के जो लेखनी थोड़ा सा सुधरी वो सब आकाशवाणी की वजह से।
0: वजह से जी। और आज देखिए समय है कि आप फोन करके अपना नाम रेडियो पर सुनते हैं, लेकिन एक जमाना था, एक दौर था कि जब पत्र के माध्यम से, पत्रों द्वारा जब हम आपके नाम को पुकारते थे कि ये फरमाइश हमें यहाँ से मिली है, तो उसे
1: जी
0: सुनने के लिए आप इंतजार किया करते थे।
1: नहीं बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम,
0: जी
1: है ना। और पत्र लिखने का अच्छा वो था, मतलब बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं पत्र, है ना। वो
0: जी
1: पत्र
0: हाँ
1: नहीं होता था, पूरा एक मतलब बहुत बड़े उसमें रहता था, वो एक पूरा संदेश होता था एक, है ना,
0: जी
1: हाँ,
0: जी जी कहीं
1: पारिवारिक
0: दो
1: वो सब
0: लाइन का
1: चीजें।
0: पत्र होता था तो कहीं दो पन्नों का पेपर भी, पत्र भी पढ़ने के लिए हम समय निकाल लिया करते थे उस
1: जी
0: समय,
1: जी जी जी
0: है ना
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
0: जी।
1: कह रहे हो,
0: तो
1: है ना।
0: आकाशवाणी सेवा अभी भी इसकी जारी है, डाक सेवा जारी है। आप पत्र लिखिए, आपकी फरमाइश कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए, और
1: जी
0: अपनी लेखनी और अपनी लेखन क्षमता को भी आप बढ़ाते रहें, तो यही हम आपसे
1: नहीं
0: उम्मीद
1: सही कह
0: करते
1: रहे हैं।
0: हैं।
1: हमारा अच्छा भेदभाती पे भी वो आता है ना, जो मन चाहे कि शुरू हो गया, तो उन्होंने एक शर्त रखी है कि
0: जी
1: सिर्फ हाथ के लिखे पत्र ही हम शामिल करेंगे। ये
0: जी जी जी तो
1: अच्छा है कि कम से
0: यही
1: कम लोग लिखेंगे तो पत्र लेखन थोड़ा सा कम भी हो गया है, तो
0: तो
1: ये अच्छी
0: यही
1: चीज है।
0: हमारी
1: पत्र
0: कोशिश
1: तो लिखना
0: रहती है
1: चाहिए
0: कि
1: और मतलब अच्छा वो रहता है
0: जी
1: उसका।
0: जी हमारी इसीलिए यही कोशिश रहती है, यानी आकाशवाणी परिवार की, कि एक हम ऐसा संदेश दे कि जो चीज़ है वो हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाए उसे,
1: बिल्कुल सही,
0: है ना
1: बिल्कुल सही,
0: जी।
1: बिल्कुल सही
0: शुक्रिया,
1: मैम। अच्छा आप कह
0: धन्यवाद।
1: रहे हैं आपके पत्र वगैरह पहले आते थे भोपाल से, अगर कोई इस तरह का पत्रोत्तर का कार्यक्रम चलता हो या ना चलता हो तो दोबारा शुरू कर सकते हैं अपन लोग।
0: जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपका सुझाव सम्माननीय है और स्वागत करते हैं हम आपके सुझाव का, लेकिन
1: थैंक यू,
0: हमारा आपसे निवेदन है कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप ज़रूर पत्र लिखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए पत्रों के माध्यम से भी, जिस तरह से फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से आप जुड़े रहते हैं।
1: जी जी बिल्कुल मैम, देखो कोशिश करते हैं।
0: जी शुक्रिया, धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं नीरज उपाध्याय बात कर रहा हूँ मैम, अनूपपुर जिले से।
0: नीरज जी, स्वागत है आपका आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी मैम जी,
0: तो आज हमारा चर्चा का विषय है आपके साथ कि राष्ट्रीय यानी विश्व डाक सप्ताह चल रहा है, तो डाक सेवा का आपने किस माध्यम से उपयोग किया है?
1: जी
0: जी बताइए।
1: बहुत अच्छा विचार है मैम।
0: धन्यवाद।
1: डाक के माध्यम से मैम, पहले तो आज तो भले अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदान प्रदान होती है माध्यम से मैसेज जो, लेकिन डाक के माध्यम से मैम जो पत्र पहले भेजा करते थे हम आकाशवाणी में भेजा करते, मेरे लिए तो अच्छा लगता था।
0: और कोई ऐसी सेवा डाक सेवा की जो जैसे टेलीग्राम हुआ है, पत्र हुआ है ना, और उसमें से आप कौन सी सेवा रहे? आप पत्र किस में लिखते थे? आप अंतर्देशीय पत्र लिखते थे, पोस्टकार्ड लिखते थे, या फिर लिफाफे में लिख
1: मैम
0: कर डाल करके पत्र भेजा करते थे?
1: मैं तो ज्यादा मैम पोस्ट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल किया हूँ मैम, 1 रुपए में 4 ठो मिलता था पहले।
0: सही बताया, बहुत सस्ता जमाना था और बहुत ही यानी कि यादगार जमाना था वो भी, है ना।
1: बिल्कुल मैम,
0: जब
1: चिट्ठी
0: हमें
1: लिखते
0: कुछ
1: थे
0: ज़्यादा
1: और
0: बातें लिखनी रहती थी तो हम अंतर्देशी ले लिया करते थे, है ना जी। शुक्रिया नीरज
1: पोस्टकार्ड
0: जी,
1: भी लिखते
0: धन्यवाद
1: थे,
0: जी।
1: पोस्टकार्ड भी लिखते थे और ले जाते थे पोस्ट ऑफिस में, उसको दिया
0: हाँ
1: करते थे और बेसब्री से इंतजार किया करते थे आकाशवाणी ऊपर हमारा कब आएगा हमारा चिट्ठी का नंबर।
0: हाँ
1: एक दौर था मैम, अच्छा लगता था।
0: बिल्कुल। लेकिन हम आपको बताएं, आकाशवाणी आज भी इस सेवा का उपयोग कर रही है, तो जुड़े रहिए इस सेवा के साथ और हमें पत्रों के माध्यम से अपनी फरमाइश ज़रूर भेजिए। तो आपको एक बार फिर जो है आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होगी कि आपका नाम हम पत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: जी, शुक्रिया नीरज जी, धन्यवाद।

0: नमस्कार,
1: हेलो जी मैम, नमस्कार
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है।
1: जी मैम, नमस्कार मैम, मैं कटनी एमपी से ग्राम डिठवारा से अमर सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ मैम।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, स्वस्थ हूँ आपकी कृपा से।
0: बढ़िया है, हम भी बहुत अच्छे हैं। अमर सिंह जी, ये बताइए कि डाक सेवा का उपयोग आपने कभी किया है?
1: हाँ मैम, हमने बहुत पहले किया है। अब तो क्या है, मोबाइल के चलते उस सेवा का उपयोग आदमी नहीं करता। अपने देश में बहुत प्राचीन ये सेवा है और बहुत पहले से उपलब्ध है
0: जी। तो आपको याद है आपने सबसे पहला खत कब लिखा होगा?
1: हाँ मैम, मुझे समय तो डेट तो नहीं याद है, लेकिन मैं अपने चाचा को लिखता था जो सायनगर में रहते थे, ये पन्ना जिले में है सायनगर।
0: जी जी,
1: उनको हम लोग लिखा करते थे मैम, उसमें लिफाफे आते थे, उसमें लिखा करते थे।
0: जी अच्छा। और हाँ हाँ बताइए।
1: और बहुत अच्छा लगता था मैम जब वो पत्र उनका वहाँ जाता, फिर वो पत्र हमें भेजते।
0: हाँ
1: वो पढ़ने बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आत्मीय प्रेम उसमें झलकता था।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि एक दिल से दिल के तार जुड़े होते थे उस पत्र के
1: जी,
0: लिए, कि एक बार इधर से गया तो फिर उधर से आने की आशा हमें बंधी होती
1: आदमी
0: थी।
1: इंतजार करता था मैम
0: जी
1: कब आएगा ये जवाब, कब आएगा हमारा।
0: जी और एक समय था कि हम एक सा एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा पत्र 7 दिनों में पहुंचा है तो उधर से कम 10 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए, और जब नहीं पहुंचता था तो हम डाक सेवा घर में पहुंच जाते थे कि हमारा पत्र वहां से आया है या नहीं आया है, ये जानने के लिए।
1: जी मैम, जी मैम,
0: हाँ अच्छा, आखिरी खत कब लिखा आपको याद है?
1: मैंने मैम वही 2002 तक में लिखा हूँ मैम, है
0: अच्छा
1: ना।
0: चलिए,
1: उसके
0: बहुत
1: बाद
0: अच्छी बात है कि इतना भी आपको याद है कि 2002 तक में आपने आखिरी खत
1: जी,
0: लिखा हुआ है। और इसके अलावा कोई डाक सेवा आपने उपयोग में लाई है?
1: हाँ मैम, कभी कभी स्पीड पोस्ट वगैरह जैसे रहते रहे, हमने वो उसका उपयोग किया है, कहीं पैसे यहाँ से वहाँ भेजने करने का, वो भी बहुत अच्छा माध्यम रहता था मैम। आज भी सेवाएं हैं, हमारे खाते भी हैं मैम, आज भी हमारे जो खाते हैं इंडिया पोस्ट में हम लोग चलाते हैं मैम,
0: जी जी जी जी
1: और
0: जी
1: ये सुकन्या योजना भी का हम लोग लाभ ले रहे हैं मैम। बहुत अच्छा है डाक सेवा तो।
0: हाँ, डाक सेवा की जो आज भी जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अनुशासित सेवाएं हैं, है ना?
1: जी हाँ
0: जी। तो अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने
1: मैं
0: हमसे।
1: जान सकता हूँ किससे बात हो रही है मेरी
0: हाँ जी,
1: दिल्ली से?
0: माफ कीजिएगा, हमने नहीं दिया अपना परिचय। मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी मैम, धन्यवाद मैम। पूरी टीम को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं अमर सिंह की तरफ से, आज
0: धन्यवाद।
1: सबसे प्रार्थनाएं हैं, सब स्वस्थ रहें,
0: जी जी जी
1: अच्छे रहें।
0: हाँ, और
1: जी मैम,
0: आकाशवाणी परिवार की ओर से भी हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम यही मंगल कामना करते हैं। पत्र तो हम सब तक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस फोनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारी ये ख्वाहिश जरूर रहेगी कि हमारे श्रोता हमें पत्रों के माध्यम से ये शुभकामनाएं प्रेषित करें।
1: जी,
0: जी
1: थैंक यू मैम,
0: नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे, कौन बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपके साथ।
1: जी मैं शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश से रामगढ़ी से मोतीलाल परियार बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल जी ये बताइए कि डाक सेवा आपने कभी उपयोग में लाई है?
1: क्या मैम?
0: डाक सेवा, पत्र सेवा आपने कभी अपने जीवन में उपयोग किया है डाक सेवा का?
1: जी मैम बिल्कुल किया है। पहले क्या है, हमारे शिवपुरी का प्रोग्राम चलता था एफएमएंट,
0: हाँ
1: हम पत्र लिखा करते थे, गाना सुनते थे, बढ़िया लगता था। डाक से हम कार्ड डालते थे मैडम जी, बहुत अच्छा लगता था। प्रोग्राम आता आपकी फरमाइश
0: जी। तो रेडियो के अलावा और भी कहीं पत्र डाला है आपने कभी?
1: नहीं मैम, और कहीं पत्र नहीं डाला, मतलब जी सुनते रहते थे।
0: हाँ हाँ
1: रेडियो की बहुत शौक है हमें सुनने की
0: जी। तो आज अब नहीं लिखते हैं आप रेडियो पर, आकाशवाणी पर पत्र रेडियो के लिए?
1: जी बिल्कुल लिखते हैं। अभी शिवपुरी का प्रोग्राम शिवपुरी लिखते हैं, आपके यहाँ से नहीं जुड़ सकते, हम जुड़े नहीं हैं अभी।
0: अच्छा, तो जुड़िए आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर भी आप पत्र के माध्यम से आपकी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं, आपके नाम के साथ, जगह के नाम के साथ। जिस तरह आप फोन इन कार्यक्रम में बताते हैं ना कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो पत्रों में लिखिए, तो हम पत्र के माध्यम से भी आपका नाम और आपकी जगह का नाम बोलकर आपकी फरमाइश पूरी किया करेंगे।
1: बिल्कुल लिखेंगे
0: जी बिल्कुल। आकाशवाणी, हम कार्यक्रम के अंत में हमारा पता भी बताएंगे, तो आप उस पते को नोट कीजिएगा, आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल पर पत्र भेजने के लिए।
1: जी जी मैम, आप कौन बोल रही हैं?
0: जी मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, आपकी रेडियो संगीनी।
1: नमस्ते प्रियंका दीदी
0: जी, नमस्ते,
1: आपसे बात करके
0: जी। धन्यवाद मोतीलाल जी, फिर प्रतीक्षा रहेगी आपसे बात करने की। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। आप बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं, हमने अपना परिचय दिया, आप भी दीजिए अपना परिचय।
1: मैं खाते गांव से बोल रहा हूँ, गोविंद जलोदिया।
0: जी गोविंद जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है,
0: बढ़िया है।
1: नवरात्रि चल रही है।
0: हाँ जी बिल्कुल, नवरात्रि तो चल ही रही है ना, कुछ ही दिनों में बस दशहरा भी आ जाएगा, हम
1: हाँ,
0: वो
1: तो
0: भी
1: आपकी
0: मनाएंगे।
1: शुभकामना नवरात्रि की भी और दशहरा की भी।
0: जी आपकी तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारी ओर से आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं को भी हर उत्सव की शुभकामनाएं हैं। गोविंद जी, आज हम बात कर रहे हैं कि विश्व डाक सप्ताह है और आज उसका आखिरी दिन है, तो डाक सेवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: आए के लिए मैडम।
0: डाक सेवा, जो पत्र हम भेजा करते थे, लिखा करते
1: अच्छा,
0: थे।
1: जो हाँ,
0: जी
1: वो तो बहुत मतलब ये डाक सेवा आजकल तो कहाँ चलती है, आजकल तो मोबाइल शुरू है। वो पहले तो रास्ता देखते थे डाक वाले की, ये
0: हाँ
1: आ रहे हैं आ रहे हैं,
0: जी, तो
1: घंटों
0: वही
1: खड़े
0: हम,
1: रहते थे।
0: वही अनुभव हम अब एक बार पुनः जो है जागृत करना चाहते हैं, उसे चेतन अवस्था में लाना चाहते हैं, उस अनुभव को है ना, जीना चाहते हैं उस खुशी को। तो इसीलिए आज हमने ये विषय रखा है कि हम सभी एक बार फिर पुराने दौर में जाएं और उन दिनों को याद करें, क्या होती थी डाक सेवा।
1: वो तो अब जमाना रहा नहीं, पर ठीक है, वो इंतजार ही करते रहो बस।
0: आपने कभी
1: और क्या,
0: खत लिखा है, पत्र लिखा है किसी
1: पहले
0: को?

0: मन भावन वगैरह इसमें लिखते थे जब उनका जमाना था, जब कार्ड 10 पैसे 5 पैसे मिलते थे।
1: तो आज भी है, आज भी आकाशवाणी से तो प्रसारित होते हैं पत्र।
0: अब आजकल क्या है कि इतना वो नहीं यार, लोगों को देर कहाँ इतना है। पहले 8 दिन हो जाते थे, 4 दिन हो जाते थे, और आजकल तो हैंड टू हैंड ही नहीं। अभी इधर मतलब फरमाइश दो और उधर ही सुनो
1: जी, इसलिए फोन की सेवा
0: ऐसा ना 11 से 12 में इंदौर का ऐसा ही है वो।
1: हाँ, तो आज यही आपके कहने का मतलब है कि धैर्य जो है वो नहीं रहा है अब,
0: नहीं रहा
1: हम लोगों पे, है ना। और इसीलिए फोन इन प्रोग्राम में इतने ज्यादा हम बार बार कई बार फोन लगाते हैं कि हमारी फरमाइश जो है तुरंत पूरी हो जाए। जी, तो खैर कोई बात नहीं, डाक सेवा में अब जैसे आप पत्र लिखेंगे तो हमें जल्दी मिला करेंगे, क्योंकि अब इतने पत्र नहीं लिखे जाते इतनी तादाद में कि जिसे मिलने में समय लगे, है ना। तो आकाश
0: एक बात है, जब उस टाइम पे एक कभी एक चिट्ठी डाल देते थे ना तो वो एक ही मिल जाती थी।
1: जी जी बिल्कुल,
0: उस टाइम वो ये उस पर इतनी लापरवाही नहीं थी,
1: बिल्कुल जो है समय पर पहुंचती थी, चाहे जितनी चिट्ठियां होती थी डाकिये के पास, है ना, डाकिये के पास चाहे जितनी चिट्ठियां इकट्ठी हो जाती थी लेकिन समय पर पहुंचती थी सभी के पास। जी शुक्रिया गोविंद जी, नमस्कार।
0: ठीक है, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्ते।
1: हाँ नमस्कार मैडम। हाँ
0: कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे और मैं हूँ आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका। स्वागत करती हूँ
1: मैडम,
0: मैं। अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: राम गोपाल सुरन से बोल रहा हूँ मैडम, राजगढ़ ब्यावरा।
0: जी? क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: मैडम खेती बाड़ी काम चल रहा है, अभी तो
0: अच्छा
1: बोने की
0: अच्छा
1: तैयारी में है।
0: तो किसी के पत्र का इंतजार करते हैं आप कभी?
1: नहीं मैडम।
0: नहीं करते? कभी
1: हाँ मैडम।
0: किया है जब डाक सेवाएं बहुत उपयोग में आती थी तब?
1: हाँ
0: अच्छा, और पत्र आपने लिखा कभी किसी को?
1: नहीं मैडम।
0: नहीं लिखा? क्यों,
1: हाँ
0: आप लिखना नहीं जानते या आपकी रुचि नहीं पत्र लिखने में?
1: मैडम, आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया, पत्र क्या लिखते हैं।
0: आज की बात थोड़ी ही कर रहे हैं हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं जब पत्र लिखा जाता था, भेजा जाता था और
1: हाँ
0: पत्र का
1: मैडम।
0: इंतजार किया जाता था। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं क्योंकि
1: हाँ
0: विश्व डाक सप्ताह है ना,
1: हाँ मैडम।
0: और इसी संदर्भ में हम हमारे श्रोताओं के अनुभव जानना चाहते हैं ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उन तक भी ये बात पहुंचे कि डाक सेवा भी कभी एक ऐसी महत्वपूर्ण सेवा हुआ करती थी हमारे लिए।
1: हाँ मैडम, पहले बहुत चलती थी, अब तो बहुत कम काम हो गया उसका।
0: तो आपको कभी किसी का पत्र मिला है? आपने तो चलिए नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आपको मिला कभी किसी का कोई पत्र?
1: नहीं मैडम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राम गोपाल जी।

0: बस उत्साह, उत्सव और बदलते दौर के परिवर्तन के साथ रोमांचित कर देने वाला फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। आने वाले समय में हमें आपके पत्रों के माध्यम से फरमाइश का इंतजार रहेगा और हमारा इंतजार पूरा करने के लिए हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश या उस कार्यक्रम का नाम जिसमें आप अपनी फरमाइश सुनना चाहते हैं। फिर लिखिए आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। और हाँ, पिन कोड जरूर लिखिए 462002। अब अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में शिविर के तीसरे दिन कल विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति, नेतृत्व क्षमता और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने युवाओं से संवाद किया। आज महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद किए जाने वाले डॉ कलाम की दूरदर्शी सोच और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता युवाओं को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर कलाम को याद करते हुए कहा कि देश को परमाणु शक्ति संपन्न एवं रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा कर सहमति दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय में विभिन्न विभागों की बैठक भी लेंगे। आज देश भर में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा करीब 560 पदों के लिए पात्र प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। और उत्तरी रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए आज से नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्यौहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता और संजना और सानवी गुप्ता की। पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से ये अपनी पसंद भेजते हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की। एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड से वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी। दिलवाले फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ समीर ने बोल लिखे नदीम श्रवण की धुन है।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर की। वार्ड नंबर एक पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी की। गौतम नगर, जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की पसंद है। तुक्षी राम डेरे पेंटर मनोरा से अपनी पसंद भेजते हैं। महाराष्ट्र, हिंगोली से शाहजी बोडके, नंदा बोडके और हनुमान बोडके की पसंद है। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली। सुनना चाहा है मीरा का मोहन फिल्म का गीत, अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण का गाया। इंदिवर ने बोल लिखे हैं, धुन अरुण पोडवाल की है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं दुर्गापुर जिला अमरावती से राजेंद्र इंगले, संगीता इंगले, देवयानी इंगले, सुमिता और अमित इंगले की, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट की, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपनी पसंद भेजते हैं। सुनना पसंद किया साजन फिल्म का ये गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इसे गाया है, समीर का लिखा ये गीत है, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं नेहरू वार्ड बस स्टैंड यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार की, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मन्नन और तानिया की, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी की, छत्तीसगढ़ से दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की। सुनना चाहा है दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल ट्रैक, लता मंगेशकर और उदित नारायण का गाया हुआ, उत्तम सिंह ने धुन बनाई, आनंद बख्शी ने गीत लिखा।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए फिल्म दिल तो पागल है के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनो

0: रंजन
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक सत्यवादी हरिश्चंद की पहली कड़ी।

सुरपति को जब ये खबर लगी, सुरपति को जब ये खबर लगी, बेमन ही मन घबराए हैं।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सत्यवादी हरिश्चंद्र की पहली कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन और भंडारण सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की है। आज से लागू यह आदेश इस साल नवंबर तक जारी रहेगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद किए जाने वाले महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डॉ. कलाम को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश को परमाणु शक्ति संपन्न और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डॉ. कलाम का योगदान अविस्मरणीय है। डॉ. कलाम की दूरदर्शी सोच और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता युवाओं को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा कर सहमति दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय में विभिन्न विभागों की बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज देश भर में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा करीब 560 पदों के लिए पात्र प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और उत्तरी रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए आज से नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

महिला सभा कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, किसी भी समाज की ताकत और पहचान उन बहनों में दिखाई देती है जो बिना किसी शोरगुल के अपने परिवार, समाज और देश के निर्माण में निरंतर अपना योगदान देती रहती हैं। और जब बात ग्रामीण बहनों की हो तो यह योगदान और भी व्यापक और प्रेरणादायी हो जाता है। घर की चौखट से लेकर खेतों में लहलहाती फसल तक, पशुपालन से लेकर छोटे छोटे उद्यमों तक, परिवार की जिम्मेदारियों से लेकर गांव के विकास तक, गांव की हमारी बहनें हर भूमिका को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ निभा रही हैं। सखियों, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हमें ऐसी

ही करोड़ों बहनों के योगदान, संघर्ष, सामर्थ्य और उपलब्धियों को सम्मानपूर्वक याद करने का अवसर देता है। सखियों, ग्रामीण बहनें केवल परिवार की ही आधारशिला नहीं हैं, बल्कि वे कृषि, खाद्य संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सखियों, हमारी गांव की बहनें खेतों में बीज बोती हैं, फसलों की देखभाल करती हैं, पशुधन संभालती हैं, परिवार का पोषण करती हैं, साथ ही अपनी मेहनत से परिवार की आय बढ़ाने में सहायता करती हैं। सखियों, ये केवल मेहनत और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि बदलाव, आत्मनिर्भरता और नई संभावना का भविष्य है। सखियों, घर की चार दीवारी में सीमित रहने वाली हमारी ग्रामीण बहनें अपने हुनर को अपनी पहचान बना रही हैं। पूरे परिवार, पूरे समुदाय को आगे बढ़ाने वाली हमारी इन बहनों के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी, आर्थिक संसाधनों का अभाव, तकनीकी जानकारी में कमी, उनके श्रम की उचित पहचान और मूल्य में अभी भी पहुंच बाकी है। सखियों, आज का दिन विशेष रूप से उन हाथों को नमन करने का है जो खेतों में मेहनत करते हैं, उन कदमों को नमन करते हैं जो परिवार और समाज को आगे बढ़ाते हैं, उन सपनों को नमन करते हैं जो गांव की मिट्टी से निकलकर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। सखियों, हमारी ग्रामीण बहनें केवल गांव की शक्ति नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण भागीदार हैं, साथ ही नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। सखियों, जब बात आर्थिक सशक्तिकरण की हो तो एक सरल, पारदर्शी और समान कर व्यवस्था की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हमें ग्रामीण बहनों के योगदान और अधिकारों को समझने का अवसर देता है, तो वहीं वन नेशन वन टैक्सेशन जैसी अवधारणा पूरे देश में कर व्यवस्था को सरल और एक रूप बनाने की दिशा से जुड़ी है। यानी सशक्त ग्रामीण बहनें और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था मिलकर मजबूत राष्ट्र की नींव रखती हैं। सखियों, सशक्त नारी और सशक्त अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमें देश की आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों को भी समझना आवश्यक है। सखियों, 1 जुलाई सन 2017 को आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया गया था, GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। सखियों, 2017 से पहले भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग स्तर पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। GST का मूल विचार था एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें केंद्र और राज्य के सभी अप्रत्यक्ष करों को एक साझा व्यवस्था में लाया जा सके। सखियों, GST लागू करने का उद्देश्य केवल सभी करों को एक साथ लाना नहीं, बल्कि देश में वस्तुओं, सेवाओं और व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाना भी है। सखियों, सरल भाषा में GST का अर्थ है जब हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, होटल में भोजन करते हैं या फिर ट्रेन आदि में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदते हैं, तो बिल या टिकट के भुगतान में GST के रूप में कर दिखाई देता है। यही है वन नेशन वन टैक्स। इसकी एक खास बात यह भी है, टैक्स पर टैक्स की पुरानी समस्या को समाप्त या कम करने के लिए GST को लागू किया गया है। सखियों, अब जब भी आपके हाथ में कोई बिल आए या उस पर लिखा दिखे GST, तो याद रखिएगा वे केवल 3 अक्षर नहीं, बल्कि भारत की कर व्यवस्था में हुए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है जो सेवाओं या सामान को खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यानी जब नियम आसान हो तो जीवन का सफर भी आसान हो जाता है।

0: सखियो, अब हम आपको कार्यक्रम के अगले चरण में लिए चलते हैं, जिसमें हम सुनेंगे वार्ता। विषय है, महिलाएं अपनी प्रतिभा कैसे विकसित करें। सखियो, इस विषय पर जानकारी देंगी सुश्री संध्या अग्रवाल। तो सखियो, सुनते हैं ये वार्ता।
1: जहाँ तक महिलाओं में प्रतिभा विकसित करने की बात करें, तो प्रत्येक महिला में कुछ विशिष्ट जन्मजात नैसर्गिक गुण पाए जाते हैं। यही गुण महिलाओं में प्रतिभाएं विकसित करने का मुख्य आधार होते हैं। इन गुणों का सकारात्मक प्रयोग ही समाज हित व राष्ट्रहित में मानव कल्याण का निमित्त बनता है। आज समूचे विश्व में प्रत्येक क्षेत्र जैसे कला, साहित्य, संगीत, कॉरपोरेट, खेल, आर्मी का क्षेत्र और ऐसे अनेकानेक क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इसी संदर्भ बस मैं अपनी बात समस्त श्रोता बहनों के समक्ष रखना चाहती हूं कि महिलाएं चाहे घरेलू हों या कामकाजी, हर स्तर पर उनकी अपनी निजी प्रतिभा का ही कमाल है। जहां एक ओर वह घर का सुगमता से संचालन करती हैं, वहीं दूसरी ओर बाहरी कार्यों एवं आर्थिक स्तर को भी मजबूत बनाने में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार व समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं। आखिरकार यह प्रतिभा वस्तुतः हम महिलाओं की अपनी निजी पहचान है। हम में भी अपनी प्रतिभा विकसित करने की ललक है। इस ललक का उपयोग हम स्वयं की अंतर्निहित क्षमताओं को निखारने के लिए और भी अच्छे एवं सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें महिलाओं में प्रतिभा विकसित करने के केंद्र बिंदु महिला शिक्षा पर समुचित ध्यान देना होगा। वैसे भी हमारी संस्कृति का मूल मंत्र यही है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता।

किंतु इसके विपरीत रूढ़िवादी मानसिकता के चलते जब कोई महिला किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने को प्रेरित होती है तो घर मोहल्ले एवं जान पहचान वाले ही यह कहकर हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि क्या करोगी कुछ विशेष करके, आखिर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अतः इस तरह की रूढ़िवादी मानसिकता पर्दा प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से उबर कर प्रतिभा विकास पर ध्यान दें ताकि प्रत्येक महिला एक कुशल गृहिणी बनने के साथ ही एक क्षेत्र विशेष में मुकाम हासिल कर सके। इसके लिए हमें स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ संतान चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री दोनों को प्रतिभा विकास के उचित अवसर प्रदान करवाने चाहिए। अगर पुत्र के समान ही पुत्री खेलकूद आर्मी कॉरपोरेट सूचना प्रौद्योगिकी पायलट क्षेत्र विशेष में अपना कैरियर बनाना चाहती है तो उसे भरपूर सहयोग दें। महिलाओं में प्रतिभा विकास के लिए सर्वप्रथम समय प्रबंधन अर्थात समय के हर पल के सदुपयोग को अपने कार्य व्यवहार में ढालना चाहिए। स्वयं की दक्षता को सकारात्मक नजरिए में ढालकर समय के हर पल का सार्थकतापूर्ण सदुपयोग करना हम महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मसलन अगर आप कुकिंग की शौकीन हैं तो पाक कला को अपनी हाबी बनाकर कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। अपने ही घर के आसपास के क्षेत्र में कुकिंग क्लासेस खोलकर अपनी प्रतिभा विशेष का उचित उपयोग कर सकती हैं। इसी प्रकार से जैसे बागवानी को ही ले लें, बागवानी में रुचि है तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे अपनी नर्सरी में रख सकती हैं। इन्हीं से जुड़ा फूलों का व्यवसाय जो कि वर्तमान में वेडिंग प्लानर के व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, आप पेड़ पौधों की नर्सरी व फूलों की भरपूर पैदावार से जुड़कर इस व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। महिलाएं अक्सर सौंदर्य प्रेमी होती हैं और इसके कारण सजना संवरना महिलाओं के स्वभाव में समीप शामिल होता है। अपने इसी शौक या रुचि का प्रयोग अपनी प्रतिभा विकसित करने में जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के साथ ही स्वयं का ब्यूटी पार्लर खोलने से कर सकती हैं। ये तो हुई शहरी महिलाओं की बात। चूँकि हमारा देश ग्राम प्रधान देश है, अब हम अपनी ग्रामीण बहनों के बारे में बातें करें। हमारी ग्रामीण बहनें अपनी प्रतिभा का विकास अनेक प्रकार के लघु कुटीर उद्योग धंधों से जुड़कर कर सकती हैं। मसलन जैसे वे अचार पापड़ बरी मुरब्बा बनाने जैसे कार्यों को उद्योग के रूप दे सकती हैं। व्यस्तता के चलते हमारे यहाँ लोग बाग स्वयं का टिफिन नहीं बना पाते, ऐसे लोगों के लिए महिलाएं भोजन बनाकर उसे डिब्बा व्यवसाय के रूप में संचालित कर सकती हैं। अगर आप सिलाई कढ़ाई इत्यादि में दक्ष हैं तो इस कला का उपयोग घर में सिलाई की दुकान खोलकर कर सकती हैं। बेकार चीज़ों से बनी हुई घर की सजावट जैसे बांस से डलिया बनाना, चटाई बनाना तथा जूट एवं रस्सी से अनेक प्रकार की उपयोगी सजावटी वस्तुओं का निर्माण करना इत्यादि के द्वारा प्रतिभा विकास के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर हथकरघा व्यवसाय इत्यादि से जुड़ सकती हैं। महिलाओं में प्रतिभा विकसित करने से जुड़े सभी प्रयासों में उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप जो कुछ भी प्रयास करें वह मात्र दिखावा न होकर अपने आप में संपूर्ण हो। यह एक ऐसा प्रयास हो जो कि आपको आत्म संतुष्टि दे सके कि वास्तव में आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि समाज को सकारात्मक दिशा मिली या जिसमें स्वयं का परिवार का अथवा समाज का हित हो, तभी यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए ऐसा प्रयास सतही तौर पर ना करके दिल से करना चाहिए। वैसे भी महिलाएं अपने परिवार की सशक्त नींव अथवा धुरी बनकर पारिवारिक भूमिका का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करती हैं, किंतु इस निर्वहन के साथ ही स्वयं के लिए समय निकालकर अपनी प्रतिभा को सार्थक दिशा में विकसित करने में समय दें।

महिलाएं अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए स्वयं को जागरूक बनाएं, अपनी बौद्धिक क्षमता का भरपूर उपयोग करें। इसके लिए अपने आसपास से लेकर देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की जानकारी

0: पत्रिकाओं में प्रेषित करें, क्योंकि आपके सकारात्मक विचार आपके साथ साथ राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, जिनसे सिर्फ आपको दिशा नहीं मिलती वरन जाने अनजाने पूरे समाज को दिशा मिलती है। और मनुष्य होने के नाते सार्थक विचारों को प्रकट करना हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है। इसके अलावा आपकी रुचि जिसमें हो, जैसे पेंटिंग, लेखन, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनर, बूटीक या अन्य विविध प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से जुड़े संगठन, जैसे नारी संगठन, झूला घर, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम एवं अनेक धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन जो कि सर्वधर्म संभाव की भावना के दृष्टिगत समाज हित में मिलजुल कर कार्य करते हैं, से जुड़कर आपकी अपनी प्रतिभा तो विकसित होगी ही, साथ साथ जाने अनजाने आप मानवता के नाते समाज कल्याण से समीप जुड़ सकेंगी। हर्ष की बात है कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए शासन द्वारा समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जरूरी नहीं कि ये प्रयास बहुत बड़े स्तर पर हो, आप स्वयं की क्षमता अनुसार चाहें तो ऐसी पहल घर से ही शुरू कर सकती हैं, जैसे अपने घर के आसपास के गरीब जरूरतमंद बच्चों की यथाशक्ति मदद कर सकती हैं, उन्हें ट्यूशन इत्यादि पढ़ा सकती हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें हम महिलाएं अपनी प्रतिभा विकसित करने का एक नया आयाम।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता, जानकारी दे रही थी सुश्री संध्या अग्रवाल, विषय था महिलाएं अपनी प्रतिभा कैसे विकसित करें। सखियों, हम आशा करते हैं यह जानकारी अवश्य ही आपको कुछ नया सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगी। आप इस जानकारी से लाभ अवश्य प्राप्त करेंगी। सखियों, भारत केवल एक देश का नाम नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक ऐसी जीवंत संस्कृति का नाम है जिसकी जड़ें हमारी परंपराओं, हमारे संस्कारों, हमारी आस्था और हमारी जीवन पद्धति में गहराई तक जुड़ी हैं। और जब बात आती है भारत की सभ्यता और संस्कृति की, तो भगवान श्री राम का नाम अपने आप हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव जगा देता है। श्री राम यानी एक ऐसे आदर्श जिन्हें हमने केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने जीवन मूल्यों में भी स्थान दिया है। श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, त्याग, कर्तव्य और लोक कल्याण की भावना के प्रतीक हैं। सखियों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसी लंबे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में सामने आया है। सखियों, यह मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भवन नहीं बल्कि चेतना का अटल विश्वास है हम भारतीयों की सामूहिक स्मृति, आस्था और सांस्कृतिक सभ्यता का भी प्रतीक है। सखियों, कहा जाता है कि सभ्यता केवल इतिहास की किताबों में नहीं रहती बल्कि हमारे त्योहारों में, हमारी लोक कथाओं में, हमारे संस्कारों में और हमारी अगली पीढ़ी को दिए जाने वाले मूल्यों में रहती है। इसीलिए श्री राम मंदिर को सभ्यतागत जागरूकता के पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जा सकता है। श्री राम का संदेश केवल अतीत की ओर देखने का संदेश नहीं है बल्कि यह सिखाता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर कैसे अडिग रह सकते हैं। सखियों, हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर भगवान श्री राम को केवल एक आराध्य के रूप में ना देखकर बल्कि मर्यादा, सत्य, कर्तव्य, आज्ञा पालन, वचनबद्धता और मानवता के आदर्श के रूप में देखना चाहिए, जिससे संसार में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को बढ़ाया जा सके।

0: सखियो, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको आपकी भावनाओं के अनुसार लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
2: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
3: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
4: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
2: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
4: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे देवी गीत। कलाकार हैं अशोक कुमार झारिया, नेपाल सिंह राजपूत और साथी, और प्रीतम सिंह ठाकुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रदीप अग्रवाल के गाए भजन और गीत।

0: प्रदीप अग्रवाल के गायक गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
2: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
1: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत शोर फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की, संतोष आनंद के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा सीता और गीता फिल्म से आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी का गीत और आर टी वर्मन का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, बिजली और पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और प्राचीन विरासत के संरक्षण को गति मिलेगी। उन्होंने निम्मू पदम दारचा सड़क का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क यात्रा का समय 12 घंटे से घटाकर करीब 3 घंटे कर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में लद्दाख में लगभग 1,800 किलोमीटर सड़क नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है।
1: आज केंद्र सरकार के लिए लद्दाख का विकास बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहाँ विकास की जरूरतों पर भी और भी अधिक ध्यान दिया गया है। 2019 तक लद्दाख में करीब 1800 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क था, आज ये बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। पहले यहाँ 19 बड़े पुल थे, आज इनकी संख्या करीब 75 हो गई है। हेलीपैड की संख्या भी 7 से बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जबलपुर से भोपाल और आगे इंदौर तक आर्थिक गलियारा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इसके लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई कंपनी गठित की गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रूपये की अंश पूंजी दी गई है। इस कॉरिडोर की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से निर्णय तेजी से लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन का क्षेत्र पर्यटन, खनन, कृषि और भारी उद्योगों की व्यापक

संभावनाएं रखता है। सड़क, रेल, हवाई संपर्क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम 3:30 बजे आयोजित समारोह में 666 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 345, स्नातकोत्तर के 294 और पीएचडी के 27 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह में 4 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। इससे पहले राज्यपाल कृषि महाविद्यालय स्थित CAII में नवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल कल 16 अक्टूबर को राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमिज्जे से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार कोई भारतीय पहलवान ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचा और पहली बार पदक हासिल किया। प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 5 संभागों में मौसम बदलेगा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 1 अक्टूबर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 13 अक्टूबर तक फॉर्म 6 के 5,641 आवेदनों का निराकरण किया गया है। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर परिसर में कल शाम आयोजित हुए कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भक्ति गायन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेरा युवा भारत के तत्वावधान में धार जिले के तिरला विकासखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

या आकाशवाणीमध्ये या आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट

दा हनु खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के

0: खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी

0: दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहां जहां गांव दिया है वहां हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
4: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर

0: स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
2: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूर दराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की

0: बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, पहला गीत है पाकीज़ा फिल्म का, आवाज़ लता मंगेशकर की कैफ़े आज़मी का गीत और गुलाम मोहम्मद का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है मोर टक्का माफी ज़िला खंडवा से किस जगन्नाथ पटेल, कमल पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

कवाई जिला बारा से राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, हेमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। आदर्श नगर मलवोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सबने सुनना चाहा है मेरे जीवन साथी फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

लोफर फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिनशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। साथ ही बरेली मोहल्ला छाबड़ा से नूर बानो, सलमान बानो और बेबी रुखसार ने। सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सादिर आई, महराज जहां और नेनुरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, साथी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मीका बिरक। आप सबने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का ये नगमा। शेवन रजमी के लिखे गीत की धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, छत्तीसगढ़ से दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लीवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सबने पसंद किया है अनुराग फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ से सवारा है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी का गीत और एस डी वर्मन का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए नागिन फिल्म का ये गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की, वर्मा मलिक के गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तान्या। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित एवं वैभव मट्टू। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जबलपुर से भोपाल और आगे इंदौर तक आर्थिक गलियारा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इसके लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई कंपनी गठित की गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम 3:30 बजे आयोजित समारोह में 666 विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लॉस वेगस में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्जे से हार का सामना करना पड़ा। और प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 5 संभागों में मौसम बदलेगा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 बजे, 8:35 और रात 9:30 बजे। 6 बजे प्रसारित किया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 7:30 बजे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। रात 10 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश। और 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे ऋषभ मलिक का वायलिन वादन, राग होगा जोग। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे अशोक कुमार झारिया, नेपाल सिंह राजपूत और साथी, और प्रीतम सिंह ठाकुर के गाए देवी गीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। सुगम संगीत में सुनिए प्रदीप अग्रवाल के गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

प्रदीप अग्रवाल के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना।
4: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिर का गीत और खयाम का संगीत।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुनिए चरस फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

चलते चलते, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में, अमित खन्ना का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

बालिका वधू, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा अमित कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी का गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ आंधी फिल्म का ये नगमे को। गुलजार के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है।
1: इसके साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट,

एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण के निर्णायक बदलाव को दर्शाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर भोपाल इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य शासन के स्वामित्व वाली नई कंपनी के गठन का निर्णय लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का स्वतः दावा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा है कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए झलकी, यह भी खूब रही। लेखक योगेश शर्मा और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: अरे अनवर मियाँ, सुबह के 8 बज चुके हैं, अब तो टीवी का पीछा छोड़ो और जल्दी बाहर आओ।
1: क्या आप भी सुबह ही सुबह मेरे शौक की लानत मलामत करने में जुट गए हैं। मेरे दो ही तो शौक हैं, एक टीवी देखना और दूसरा मोबाइल पर दोस्त यारों से गुफ्तगू करना।
0: बड़े नामाकुल शौक हैं ये। अरे हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो मियाँ,
2: हाँ, दिन दिन भर कबूतरबाजी, तीतरबाजी और बटेरबाजी में मशगूल रहते थे। छुट्टी का दिन तालाब के किनारे मछली पकड़ने में जाया कर दिया करते थे। 7-8 घंटे की ताक जाग के बाद भी बमुश्किल आधा किलो मछली हाथ लगती थी आपके, हमें सब मालूम है।
0: हिम्मत वाले ही ऐसे शौक पाल सकते हैं। अरे वो तो हमारे ही दिल गुर्दे थे के।
3: अरे अनवर के अब्बा, आप भी सवेरे सवेरे ये क्या पचड़ा लेकर बैठ गए हैं। अरे अनवर को वो काम की बात बताइए ना।
0: अरे हाँ, वो तो मैं भूले ही जा रहा था। सुनो अनवर, आज दिल्ली से जमाली साहब के साहबजादे हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। वो मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें बताया था कि वो झेलम एक्सप्रेस से आएंगे।
1: अब्बा, आपने बताया तो था। वो अपनी तन्नो के साथ रिश्ते के सिलसिले में यहाँ तशरीफ ला रहे हैं।
3: यानी कि जनाब हमारे होने वाले दूल्हा मियाँ हैं।
0: झटपट तैयार होकर स्टेशन पहुँचो। और हाँ, वो तुम्हारी छकड़ा जीप की बजाय मेरी कार ले जाना।
1: लेकिन अब्बा, साहबजादे को मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने तो उनको कभी देखा नहीं।
0: अरे देखा तो मैंने भी नहीं है बेटा, वो तुम्हारे चचा जान ही दिल्ली में उनसे मिले थे। उन्होंने ही फोन पर बताया था कि साहबजादे की उम्र यही कोई 25 के आसपास होगी और माशाल्लाह गोरे चिट्टे और 6 फुटे जवान है। फोन पर कह रहे थे वो स्लीपर कोच का नंबर, हाँ, S5 बताया है। जनाब का इसमें गिरामी अब्दुल रहमान जमाली है। बस इन्हीं बातों पर तुम ध्यान रखना उनका और उनको पहचान लेना।
1: हाँ ठीक है अब्बा।
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को, देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज़्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में, कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी से आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया?
1: मैं अपने बारे में बताने के साथ ये मैं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा इंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था
0: जी,
1: एक जमींदार फैमिली से
0: जी
1: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी,
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमें
1: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है
0: जी,
1: कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अरसरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम फौज में जा रहे हैं तो पूरा परिवार बहुत नाराज था, और पिताजी ने आकर के काफ़ी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है वो उनके ताऊ जी वहाँ पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे फादर जो हैं वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने बड़े रौब से बगैर ज़्यादा कुछ बोलते हुए अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली
0: जी। तो आप डिटरमिन्ड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए, एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
0: अच्छा। सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
1: इट वॉज
0: 1961
1: रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर।
0: अच्छा।
1: और वहाँ पे इतना ज़्यादा तगड़ा हुआ।
0: अच्छा।
1: और जो मेरे ओडी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए

0: मोदी के
1: जी,
0: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा दो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
0: और जिस काम से मैं भागा था
1: जी,
0: जिससे शादी ना करने के डिले करने की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट की ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई।
1: अच्छा,
0: व्हेन शी वाज 14 इयर्स एंड आई वाज 18 इयर्स ओनली।
1: ओके,
0: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी व्हेन माय एज वाज ओनली 17 इयर्स 216 डेज।
1: अच्छा, आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे
0: जी।
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
0: जी।
1: जी, तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी, इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम जवान थे
1: जी,
0: तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में।
1: अच्छा,
0: जालंधर।
1: ठीक,
0: जालंधर अलर्न कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई। एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार हुआ
1: जी,
0: सो दैट टाइम हम जवान थे।
1: अच्छा,
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी तहलका मचा हुआ था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहाँ पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ।
1: अच्छा,
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके,
1: अच्छा,
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका इंटरव्यू कैंडिडेट करके, और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
1: जी,
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा,
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो।
1: जरूर सर, जरूर।
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते रहिए और इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल
1: जी।
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊँगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का हम इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा,
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा,
0: बोल तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर।
1: अच्छा,
0: तो वाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता इफ देयर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो, सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। Then he called for me, I entered and saluted him and he put up all those questions to me and straightway, jahi unko jaise sawal sare main phatafat jawab diya to colonel sahab ne mere ko to chair offer kar diya aur usko bola thank you,
1: acha
0: carry on
1: aur aapko
0: select
1: kar
0: liya. He insisted me or rather motivated me, you try for commission, why don't you try for commission? I said sir I am not graduate, I am matriculate only, I am not fulfilling the condition to apply for the emergency
1: criteria.
0: And he told me that okay, criteria नहीं है अभी तो आप ACC के apply करिए, you apply for army cadet college and I see that you get selected. And mind you, after that I never looked back.
1: Achha.
0: There were 63 candidates from my regiment, those who appeared for initial army cadet college. All the test and all that, I was the first one to get selected out of 3 candidates out of 63 जो के SSB तक पहुंचे।
1: तो ये motivation सर आपको
0: ये motivation that way I got motivated and after that I never looked back. I had very good career throughout my army cadet college, then IMA, and when I passed out from there You asked me that how you got into infantry, that to Rajputana Rifle. So on that I just tell you कि वहाँ पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे IMA के अंदर, वो राजपूताना राइफल से मेजर शर्मा साहब थे जो कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेट थे।
1: अच्छा,
0: सो आई वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग, माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो
1: कि
0: आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल एंड बास्केटबॉल स्टेप डाउन and I was good boxer and cross country runner of the top class in academy.
1: Volleyball, boxing or running?
0: Or running.
1: Kya baat
0: hai? And volleyball national level
1: national
0: is something
1: level
0: very
1: volleyball.
0: So he was so impressed and he wanted me to go to his regiment only.
1: Achha.
0: And that's why वेयर इज माई सीओ

0: that time who got me selected for ACC, he wanted me that I should join Signals. But I got into Rajputana Rifles and I was mighty happy to be with the Rajputana Rifles.
1: So sir, aapko zyada maza kisme aaya? Matlab aapko lagta hai ki Rajputana Rifles hi aapke liye jo hai ek dream tha?
0: Dekhiye, aisa main bataye ki army join karna as a matter of pride and to become an army officer as a double matter of pride. And if you get into infantry, nothing like that.
1: Achha.
0: And among infantry, Rajputana Rifles
1: top.
0: Is at top.
1: Achha.
0: And I was very proud of this. That, oh, I got into Rajputana Rifles.
1: Kya baat hai, sir?
0: You know, my elder son is also from Rajputana Rifles.
1: Yes, sir.
0: And that boy also, because Rajputana Rifles is one of the very good regiment. And he is the one.
1: जी क्या बात है सर. हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. आप बने रहे हमारे साथ, यह है देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ.

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फ़ौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ सर कुछ शब्द मैं चाहूँगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूतन राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: जी।
0: तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियाँ नहीं थी, लेकिन लकली वी हैड ए जनरल डिव कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूतन राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज MS लेफ्टिनेंट जनरल, ही वॉज द वन हु पुल्ड अप द कंप्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी eventuality or any war type thing at that time.
0: Ji.
1: So he was the one and I was with the Bravo company commander.
0: Achha.
1: In Punch sector where Punch is other side of the Punch river and Ji. We were the other side of the this side of the Punch river and
0: Achha. Other Aap side of the
1: हम इस साइड में थे।
0: अच्छा।
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है।
0: अच्छा।
1: एंड आई वाज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माय पोस्ट अक्रॉस द रिवर, पुंछ रिवर,
0: मतलब आमने सामने की,
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल।
1: और उनके पास में वहाँ पे RCL गन लगी हुई थी।
0: अच्छा।
1: और MMG लगी हुई थी।
0: ओके।
1: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
0: अच्छा, बिल्कुल आमने सामने,
1: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप। एंड आई हैड You know, company was deployed on 3 posts.
0: Achha.
1: And I was on the middle post. From middle post, जो पहाड़ी का था
0: जी,
1: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे और सामने से फायर वगैरह आते थे। 4 तारीख 4th of December
0: जी
1: फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलके उनको हौसला बढ़ाना है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वाज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड, फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी, अदर जो कि जमीर पिकेट थी
0: जी,
1: ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर अदर साइड ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन। एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों का, जवानों का हौसला बढ़ाते बढ़ाते देन आई वेंट टू द अदर पिकेट and then to my own picket and complete night I was active with that
0: meeting the people and movement never aapki puri raat rahi,
1: puri raat rahi
0: ji।
1: And when I
0: wait karte rahe, when I
1: you know we have the command post
0: acha

0: and command post is sort of a very very solid bunker from where you could observe and then direct the firing and other thing also, and command your company also.
1: Bilkul.
0: So from the command post, early in the morning, it was going to be daylight, I got out from my command post and was going for a pee place, to a toilet. And the toilet was, you know, all temporary.
1: जी बिल्कुल
0: तीन से तीन के जो टार्मिक के तीन होते हैं ड्रम उसको कट करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया जाता है
0: बनाया गया
1: ठीक है
0: टेम्परेरी टाइप
1: जी
0: सो आई वाज गोइंग टू दैट वन सो यू नो बंकर टू बंकर और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेस कम्युनिकेशन ट्रेंचेस आर द यू नो सॉर्ट ऑफ से अबाउट 5.5-6 feet डीप थ्रू विच यू कैन
1: वॉक उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है
0: चल के जाना होता है
1: जी
0: सो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
1: जी
0: दैट टाइम देयर वाज अ साउंड ऑफ ए आरसीएल फायर
1: अच्छा
0: व्हेन द आरसीएल फायर केम तो माय ऑपरेटर वाज विद मी
1: जी
0: एंड ही वाज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं
1: जी
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल
1: जी
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
1: अच्छा
0: और बोला और सब मरोगे एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वाज इट वाज थ्रोन अप इन पीसेस एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वाज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर रियली इन डेंजर एंड इट वाज ए गुड लक ऑफ माइन
1: कुछ सेकंड्स थैंक कहीं सिर्फ
0: यस
1: मतलब वो जो सामना होने वाला था
0: इट वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट थिंग आई वुड हैव बीन पीसेस नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे
1: बिल्कुल
0: सो दैट वाज द वन देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे अर्ली आफ्टरनून वी गॉट ए ऑर्डर दैट यू हैव टू मूव आउट टू अनदर बटालियन दैट इज बनवट सेक्टर एंड डिफेंड ए कंपनी ऑफ अदर छह सिख which was in danger which was attacked that night
1: acha to aapko unki madad
0: next night they were to be attacked
1: ji
0: so that one of the fdl behind that is number the fdls were numbered at 405 406
1: acha
0: so 406 was in danger it was in, okay. encircled by the enemy
1: acha
0: so I was told that your company will go and reinforce that
1: reinforced
0: 405 picket so that you we could fight back the enemies So I moved my company before last light to the that side towards Punch. We had to go across the Punch River. Then Punch township is there. Pass through that place and the climb up almost about 2,000 square feet I say. And the brigade headquarters was at the Punch River. Punch headquarters, the brigade one. So there was a Jhula Bridge which was to be crossed.
1: बटालियन
0: कमांडर फॉर द ब्रीफिंग सो विद माई स्कॉट टू स्कॉट एंड ऑपरेटर्स वी वेंट टू द बटालियन कमांडर And he briefed me that you have to go and do this work. Chesik was the battalion which was deployed that side at 405, 406. And you have to go and clear the saddle between Black Rock, between these two FDLs.
1: Achha.
0: And then join the company which is fighting, which is likely to fight this night or next
1: day. जैसे आपने बताया कि उधर से attack हो चुका था और
0: हाँ जी उनको जाके आपने reinforce
1: करना है.
0: So after briefing, I had to I got a RCL jeep. I with my escort and all that got into RCL jeep while moving down towards the that bridge. The traffic was too much because that time there were all convoys loaded with the ammunition, all that artillery convoys. Those were the all lined up on the road, and my jeep was not able to get through. So I got on my feet. And I went around say 3 to 5 kilometers walking. When I reached to the Jhula Bridge, I found my company was stuck over there. They were all in position and firing was going on from both the sides.
1: अच्छा, जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग?

0: बाइक मेरी जो कंपनी थी
1: जी,
0: वो पुंछ रिवर के इस तरफ, झूला ब्रिज के इस तरफ,
1: और झूले के उस तरफ,
0: अदर
1: झूला
0: साइड
1: ब्रिज
0: इज द
1: के उस तरफ
0: पुंछ,
1: जी।
0: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे। सो आई हैड टू रादर टू सबाल्टर्न, टू यंग ऑफिसर,
1: अच्छा
0: लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी,
0: एंड जे सी ओज वर देयर। तो कंपनी जे सी ओ से मैंने पूछा कि रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है,
1: जी
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है।
1: जी
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है। मैं क्या फायर क्यों किया, बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से तीन चार लोग आए थे
1: अच्छा
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो
1: जी
0: हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे। तो भागने से लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया। मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो हरकत नहीं करना, वहाँ जाके कंपनी को पोजीशन दे देना, मैं आके ज्वाइन करूँगा आपको,
1: ठीक
0: तुमने फायर क्यों खोला। बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया। मैं क्या ऑर्डर किसने दिया, बोले साहब मैंने दिया था। मैं चलो कोई बात नहीं है। देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM,
1: अच्छा
0: आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड। देर वॉज एटी कंपनी, एटी कंपनी
1: अच्छा
0: दोज आर यू नो विद द एनिमल्स म्यूल्स एंड ऑल दैट, दे थॉट के देर इज एनिमी टू अदर साइड
1: अच्छा
0: एंड दे आर फायरिंग टूअर्ड्स अस एंड वी आर फायरिंग दैट साइड।
1: जी सर,
0: सो
1: मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने, तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में, जब जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है, तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते
0: वेल
1: हैं,
0: जो
1: महसूस
0: फीलिंग
1: करते
0: होती
1: हैं?
0: है, जो फीलिंग होती है
1: जी
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है। हम तो को पता है हम
1: जी
0: जीतेंगे, हम मारेंगे, हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है, जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे। अभी
1: जी
0: बताता हूँ आगे क्या क्या
1: जी
0: हुआ।
1: जी
0: तो BM साहब ने बोला और AT वाले, मैं उनको बोलता हूँ
1: जी
0: कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए
1: जी
0: और आप पहुँचिए जल्दी से। सो यू नो क्लाइम वॉज क्वाइट बिग। वेन द फायरिंग स्टॉप्ड
1: अच्छा
0: आई मूव माई कंपनी क्रॉस द झूला ब्रिज देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप। सो क्लाइंबिंग अप ऑल दैट तो दैट मल्होत्रा प्लाटून वॉज लीडिंग एंड वेज वी कम इन सिंगल लाइन।
1: अच्छा
0: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं
1: जी
0: तो सिंगल लाइन पर जा रहे थे। एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग बट
1: अच्छा,
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू
1: तो
0: रीच
1: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज
1: जी।
0: टू डू द ऑपरेशन ऑल्सो। दैट वॉज माई टास्क
1: यानी कि
0: बिकॉज
1: आप
0: इफ इट वॉज द
1: जी
0: डे लाइट देन आई वुड बी एबल टू डू द नीडफुल।
1: बिल्कुल, तो इतनी टफ
0: सो
1: क्लाइंबिंग के बाद आपको ऑपरेशन भी अपना शुरू करना
0: कंप्लीट
1: है।
0: करना था।
1: बिल्कुल
0: सो वेन वी आर नियरिंग दैट ऑब्जेक्टिव
1: जी
0: बिफोर आई मीन द 405,
1: जी
0: द 405 वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ चेसिक एंड द CO वॉज देयर
1: अच्छा
0: एंड ऑल दीज पीपल दोज टेल में जो कंट्रोल करते हैं। तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था, उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था।
1: जी
0: सो टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट। तो वैन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे।
1: जी
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ, बोले साहब वो मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए। आई कॉट होल्ड ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स द रॉन्ग विद यू, व्हाई यू स्टॉप्ड। बोले सर टायर्ड। मैं कह यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405 FDL
1: जी
0: एंड आई मेट द CO। CO ब्रीफ्ड मी। आई रिक्वेस्टेड CO के सर गिव मी टू स्कॉट दोज हु कैन टेल मी के वेयर फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग
1: जी
0: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज।
1: जी
0: सो वैन ई टोल्ड मे दैट ओके मेजर स्वाइन इज द कंपनी कमांडर एंड
1: जी
0: यू टेक टू जॉन्स फ्रॉम हिम दे विल टेल यू के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग। सो वैन आई वेंट टू हिम मेजर स्वाइन सेट नो आई एम ऑलरेडी अंडर द अटैक आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी थिंग। सो आई वॉक बैक टू कमांडिंग ऑफिसर
1: जी
0: ऑफ चेसिक एंड आई सेट सर योर कंपनी कमांडर इज नॉट गिविंग मी स्कॉट। देन ही सेट के द टास्क इज गिवन टू यू। मैं कहा वेल कर्नल सो एंड सो यू आर टॉकिंग टू द कंपनी कमांडर ऑफ 9th Battalion ब्रावो कंपनी एंड आई सी दैट माई टास्क इज कम्प्लीटेड बिफोर द फर्स्ट लाइट एंड आई एम गोइंग। सो
1: ठीक
0: इज
1: है
0: एडजुटेंट केम रनिंग विद मी
1: अच्छा
0: एंड ही आस्क्ड मेजर स्वाइन टू गिव मी स्कॉर्ट एंड आई put up an attack.

0: sort of thing, I should say,
1: that
0: we had to go down. We had to go down in the, what do you call, valley.
1: Achha.
0: And climb up again. And then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistanis, they were firing. There were a number of mules. Those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up. And that the enemy left his that location.
1: Achha,
0: leaving some ammunition in one of the... They ran away from there.
1: Ji.
0: And I joined Major Punjab and Major Padda over there. And there were 36 Pakistanis, those who were killed by that company that night itself. So next morning, we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, I bought breakfast with the Major Punjab and all.
1: Achha.
0: And then next task was given to me to go to help out other company, because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division.
1: Ji.
0: With my young Jos and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the Div level, at the Div headquarters at Rajouri. And the Div commander himself has given this praise to of mine that Bravo company commander Major K.S. Kamar Bhardwaj is one of the outstanding officer in this, what do that competition training we had in the Div Battle School.
1: Ji.
0: So that was the reputation sort of that thing.
1: Bilkul,
0: so,
1: sir, aapki wo josh aur jazbe se bhara hua wo jo moment raha usme aapne itna bada usme jo hai contribution diya, role play kiya, to wo waqai yaadgar hai aur jaisa ki aapne bataya ki wo aapki yaadon mein juda hua hai hamesha ke liye aur wo aapke kahin na kahin मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ है।
0: जो अभी आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है, अभी भी मैं उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और उसी ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया था,
1: कैप्चर किया,
0: और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से जवान हो जाऊं।
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूँ आपकी बातों में और आपकी यादों में, जहाँ आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे।
0: Say it's very nice to talk on that line.
1: जी, और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीज़ें आपसे जानें, जैसे आपने 1971 वॉर के आपने जो इंसिडेंट बताए, यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किए हमारे साथ। सर, आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं, तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है? वो हर तरह से, जैसे कि आपने भी कहा, आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीज़ों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहाँ भी कीर्तिमान स्थापित करती है।
0: राइट फ्रॉम द डे वन,
1: जी,
0: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट, आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन,
1: माय
0: एम एंड डिटरमिनेशन, ऑल दोस थिंग्स. Today I can say again that I am self-made man is in front
1: bilkul.
0: Of you.
1: Okay,
0: from that background of a farmer family, at my own, without any sipares or without any recommendation or bribe or anything,
1: bilkul,
0: I was the one to do all these things.
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल grassroot level से शुरुआत की और आपने जो achievement हासिल करी वो आपकी अपनी earn की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया।
0: You will be proud to tell you that मैंने जब बटालियन में कदम रखा तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा। मेरे फिजिकल में इतना दम था कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़ दी।
1: क्या बात है सर।
0: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की, और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए, और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया।
1: क्या बात।
0: एंड माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन, आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल, और
1: आरसीएल सर बहुत भारी
0: उसको कैरी करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: एमएमजी कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं।
1: अच्छा, उसको
0: तो उसको लेकर के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स आल्सो विद ऑल दैट, एंड
1: माय
0: सीओ एंड माय 2IC एंड माय बटालियन यूज टू कॉल मी रनिंग हॉर्स।
1: रनिंग हॉर्स,
0: रनिंग हॉर्स,
1: क्या बात है सर।
0: सो दैट वाज द एंड माइंड यू दैट

0: time I was also married and father of one daughter then.
1: Ji.
0: Then son was also born there only, Jamnagar.
1: Kya baat hai sir, Colonel?
0: And after that I had gone to the war.
1: Ji. कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं. और यहाँ पर मैं ज़रूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ जो आपकी पसंद से मैंने गाया था. बॉडी ब्यूटीफुल ट्रैक, घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ. आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भारद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर. और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद.

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान हैं आज के शो में कर्नल कंवर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहाँ पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। 3 सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने

0: के जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था, वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए, जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा। और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया, शहीद हुए वो, और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था, एक प्राउड मोमेंट भी था, लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे याद करते हैं आप?
1: ओ माय गॉड, कैसे याद करते हैं, जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी,
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू, ये मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट गाइड, ही वाज माय बेस्ट फादर, एडवाइजर, व्हाट सो यू कॉल, बिकॉज इट हैपेंड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा।
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे, मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी,
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा।
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी, बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी। दैट टाइम आल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफ़ी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजें, बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं, मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ एसएसबी में, अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहाँ एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा, जब जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे, एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर
0: जी
1: टू ज्वाइन सी एस डी आई एम ए ज्वाइन करके।
0: अच्छा।
1: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके
0: जी,
1: और एस एस बी वगैरह क्लियर करके आई एम ए से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द ए एस सी आर ए ओ सी।
0: अच्छा।
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेड क्वार्टर, वन ऑफ द ऑफिसर ओवर देयर विद माई फ्रेंड आई हैड गॉन टू हिम एंड आई सेड कि भाई बेटा पास हो रहा है, तो मेजर हुड्डा वाज देयर
0: जी,
1: ही सेड कि सर उसको हम आर्मर्ड कोर तो और मैकेनाइज्ड इंफेंट्री नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उसको मैं क्या हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका बाप है, उसका भाई है, तो वो तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा, बट वी वांट हिम टू गो टू नेवी व्हाट यू कॉल ए सी और ए ओ सी बिकॉज दैट टाइम देर वॉज सम हिच इन माई माइंड एंड माई वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले ही लग रहा था।
0: लेकिन सर उस उनमें उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ ही उनको टाइगर कहकर पुकारते थे।
1: आई एम कमिंग टू दैट वन, तो उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को एसी मिली है
0: जी,
1: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, व्हाई यू गॉट मी इन एसी। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजरीफ मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजरीफ ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरीफ अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ
0: जी।
1: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहाँ मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
0: अच्छा।
1: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
0: जी,
1: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंडर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन। ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम, ही कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे। इसमें एक इंसिडेंट और बताऊँगा, एक डी के शाह उसी कोर्समेट, he was also with the 7 jat and there is a ghatak platoon
0: ji ji,
1: so this boy umang was doing ghatak platoon commander for

0: one year, and during that operation he has killed 15 terrorists.
1: Ji.
0: And these four officers, those who joined together, seven jat, they had taken a sort of pledge that जब तक हमारी पलटन यहाँ है और हम यहाँ पर हैं, कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा,
0: जिंदा नहीं जा सकेगा, अंदर घुस नहीं सकेगा,
1: घुस नहीं सकेगा.
0: एंड दैट ही डिड. कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 months अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया. एंड उमंग वॉज डूइंग एडिडेंट. उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट, ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर. आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते हुए तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है. बट उसके ब्रदर हैं दिल्ली के अंदर, एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट, एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पटना. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय. एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज He told me कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे. सो दैट वॉज डन. देन उमंग का जो बताया ऑपरेशन, ही वॉज डूइंग एडिडेंट फॉर 2 years. ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था. ही केम ऑन 10 days लीव, एंड 10 days लीव के वापस जब वापस गया, सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग.
1: जी.
0: Rather 18th evening.
1: जी, 18th or 19th.
0: 18th evening he reached there.
1: जी.
0: And he was there to have his farewell parties and all that, and pick up a trophy and get out from the battalion, doing good job. That time there was some information on news and all that, that there are some terrorists, those who are crossing the border. So he went to the CO. And requested him that I want to go for the operation. So CEO told him, no, you send somebody, you will not go. You are already posted out and you have to go. That is enough for you. So this boy insisted on him, and the third time he got ready, took some people with him and went for the operation himself. Then CEO warned him that go up to so-and-so location and conduct the operation. टेक केयर, अपना ध्यान रखो.
1: जी.
0: बट दिस बॉय फुल ऑफ जोश, एंड व्हेन ही वेंट विद द एम्बुस पार्टी एज एम्बुस कमांडर, ही पुट द एम्बुस ओवर देयर एंड अलाउड द 6 टेररिस्ट टू गेट इनटू द एम्बुस, एंड देन ही ओपन द फायर. फर्स्ट टेररिस्ट वॉज किल्ड बाई हिज फायर, देन अदर पर्सन एंगेज द एम्बुस टेररिस्ट. One terrorist was running back towards the dhara, one of the dhara is the kanda type of makan
1: in
0: the pahadon mein jinme dangar wangar bandhte hain, to usme wo shelter lene ke liye bhag raha tha. Umang ran parallel to him and shot at him also. Umang also got a shot from side from this fellow or any terrorist, those who are still alive.
1: Yabhi aamne saamne ki ladai thi us terrorist ke saath,
0: from 6 meter itself.
1: Achha.
0: Each other shouted at each other, and he said, "Kafir and all that." He said, "Bloody fool, I'll kill you," and he shot him down over there. And he told his operator, "Ke Ramkishan apne CEO saab ko bolo, maine apna kaam pura kar diya hai. Jawan ko fire jari rakhe, koi bachke nahi jana chahiye, aur mere shayad kahin lag gayi hai." But by that time, the operator approached him. Umang was no more.
1: Acha.
0: So.
1: तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान.
0: जी.
1: 6 टेररिस्ट जो मारे गए,
0: जिसमें 15 पहले मार चुके थे, 6 मारे, 21 टेररिस्ट.
1: जी. तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए. सर, हम यहाँ पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूँगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊँ.
0: जी.
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है

0: Afternoon to Colonel Respected Sir and RJ Sir. I'm writing few words to our Indian Army. I bow my head with immense respect and pride for our beloved Indian Army. You protected our borders with unwavering courage. You served the nation with selfless dedication and you inspired every Indian with your sacrifices. Because of you, we live in freedom and peace. So entire nation is forever indebted to you, Indian Army. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. Yeh hai Sir Shankar Lodh from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi se.
1: Thank you very much.
0: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. यशवंत आडमुटे धारा शिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से. आपको भी बहुत बहुत नमस्कार. भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी. वेलकम टू द शो. श्रीकांत हैं सर, ये टोल गेट त्रिची तमिलनाडु से. चरण कुमार हैं सर, ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से. और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर.
1: हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
0: जी. और सर हैं ये शांतचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम. यू प्रेजेंट ब्यूटिफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, सर्विसेज, करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स. सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन. देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर, ये कह रहे हैं. हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस. थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया. और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद. 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है. कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ये कह रहे हैं.
1: थैंक यू सो मच
0: जी. और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये. और ये है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना. जय भारत माता की जय, वंदे मातरम. और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है.
1: ये अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
0: जी सर. अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास. मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. अब आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद.
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी,
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल, माना हुआ पब्लिक स्कूल है, CBSE 10+2
0: जी.
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19 अंडर 17
0: जी,
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन
0: जी.
1: एंड आई हैड ए हॉस्टल आल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द बॉयज.
0: आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें.
1: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के वन रैंक वन पेंशन, ये
0: अच्छा।
1: हमारा पूरा फाइट था. और आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार वीडियोज एंड वीडियोज को जो फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है.
0: और सर उसमें आपने पूरी मेहनत की,
1: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था बहुत, आई वाज लीडिंग वन एंड ऑल द प्रोटेस्ट वाज
0: कैरीड
1: मी माय वाइफ एंड मिस जाखड़ इज वाइफ. एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव, MBS मॉल के पास में, जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक जैम होता था और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट एबल टू गेट थ्रू. एंड इन दैट वी आई वाज एबल टू गेट इट रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम दैट.
0: आपने ये सब काम किए और
1: बिकॉज ऑफ,
0: अभी आप आगे रहते हैं कुछ ना कुछ,
1: बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई सेल्फ is fully I mean involved in all these things and devoted to whatsoever maximum I can do, I must do till I am able to do something.
0: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए. सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए. कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल सम्मानित, 1971 वॉर वेटरन. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे
1: शो में शामिल होने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय,
0: भारत माता की जय. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे और 102.6 देश के नंबर वन रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे, आगे है सैटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, 5 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए करीब 27,050 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया और प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 5 संभागों में मौसम बदलेगा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयुषी।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ दिलचस्प सवालों के साथ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
0: और दोस्तों, वहीं आज का दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए आप भी इनके उत्तर खोजिए और बने रहिए आज की चर्चा में।
1: और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं आज का पहला गीत, फिल्म गदर 2 से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

0: दोस्तों, आज का दिन उन महिलाओं को समर्पित है जो शायद बड़े शहरों की चमक दमक से दूर रहती हैं, लेकिन अपने परिवार, समाज और देश की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान किसी से कम नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की। ग्रामीण महिलाएं हमारे समाज की वो मजबूत कड़ी है जो घर से लेकर खेत तक, पशुपालन से लेकर छोटे व्यवसायों तक हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं।
1: सुबह की पहली किरण के साथ उनका दिन शुरू होता है और परिवार के हर सदस्य की जरूरत पूरा करते करते कब दिन ढल जाता है शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन ग्रामीण महिलाओं की पहचान सिर्फ एक गृहिणी और किसान के रूप में नहीं है।
0: आज महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपना व्यवसाय चला रही हैं, खेती में नई तकनीकों को अपना रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास और संघर्ष करने का जज्बा।
1: इसलिए दोस्तों, आज के दिन हमें सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और अपने फैसले लेने के समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल अंकिता, क्योंकि जब गांव की महिला मजबूत होगी तभी गांव मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म चक दे इंडिया से हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, ये बात हमें सिखाई है भारत के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने।
1: और आयशी, तुम्हें पता है आज का दिन भी खास है, क्योंकि हर साल आज के दिन 15 अक्टूबर को हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
0: और इसीलिए साथियों, आज हम बात करेंगे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में, उनकी सफलताओं और प्रयासों के बारे में, जो हम सभी की लाइफ में एक मार्गदर्शक का काम करेगी।
1: दोस्तों, अब्दुल कलाम का जन्म आज के दिन 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की।
0: उन्होंने DRDO और इसरो में वैज्ञानिक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस तरह मिसाइल कार्यक्रमों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया।
1: वर्ष 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 2007 तक इस पद पर रहे। यूथ के बीच में डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा से ही लोकप्रिय थे। उनके विकास के लिए कलाम जी ने कई प्रयास किए। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के सपनों, शिक्षा और मेहनत पर निर्भर करता है।
0: उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सहित कई सम्मान से सम्मानित भी किया गया है।
1: 27 जुलाई 2015 का दिन भले ही अब्दुल कलाम के जीवन का अंतिम दिन रहा हो,
0: लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपना समय युवाओं को प्रेरित करने में दिया। दोस्तों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, मेहनत, ज्ञान और बड़े सपनों के बल पर कोई भी व्यक्ति देश की दिशा बदल सकता है।

0: कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत भी हमारी इसी सोच से होती है।
1: आयुषी, ये बात बिल्कुल सही है। आज का जीवन पहले की तुलना में काफी बदल चुका है, ना केवल हमारे जीवन जीने के तरीकों में बल्कि हमारे सोचने और काम करने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं।
0: बिल्कुल अंकिता, आज हम अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है। इसकी मदद से हम देश दुनिया से जुड़ रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं।
1: सही कहा साथियों, आज के समय में खुद पर निर्भर होना, खुद पर भरोसा रखना और लगातार ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। आज का युवा केवल नौकरी करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपना बिजनेस शुरू करने, नए आइडियाज पर काम करने और खुद के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए भी उत्साहित है।
0: यही बदलाव आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब युवा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार और अवसर पैदा करने के बारे में सोचता है।
1: बिल्कुल सही कहा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे युवाओं, छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने में सहायता मिल रही है।
0: यानी आत्मनिर्भर भारत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को अपनी स्किल्स को मजबूत करना होगा, नए अवसरों को पहचानना होगा और अपने देश के बने प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस को भी बढ़ावा देना होगा।
1: दोस्तों, उम्मीद है आप सभी इस क्षेत्र में एक प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेगा, तभी देश आत्मनिर्भरता की ओर बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा।

0: दोस्तों कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 15 अक्टूबर।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर है SLV-3 प्रोग्राम। दोस्तों आपसे जल्द मुलाकात होगी नई चर्चाओं के साथ, तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त आयुषी
0: और अंकिता को अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद होगा।

0: डाउनलोड से भी सारती ऐप।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।

नमस्कार, गुड इवनिंग। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, ढलती हुई सी ये शाम और सुरों का साथ, एक खूबसूरत सफर होने वाला है शुरू। श्रोताओं, कहते हैं जीवन एक सफर है और हम सब उसके मुसाफिर। न कोई स्थायी ठिकाना, न कोई अंतिम पड़ाव, बस कदमों की निरंतर आहट ही जीवन का संगीत है। जीवन ठहरने का नाम नहीं, जीवन बहने का नाम है। जो रुक गया वो ठहर गया, और जो चल पड़ा वही सच में जी गया। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम कौन सी बात करेंगे? श्रोताओं, फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम इसी मुसाफिरी के नाम है, जिसमें है चलते रहने का पैगाम।

जीवन के सफर में कभी धूप तपाती है, कभी छांव सहला कर चली जाती है, कभी रास्ते कांटों से भर जाते हैं तो कभी उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं, थकते पांव कहते हैं अब बस, पर सपने पुकारते हैं कि नहीं, सफर अभी बाकी है।

चलते चलते रास्तों पर कितने चेहरे मिलते हैं, कुछ अनजाने, कुछ अपनापन दे जाते हैं, कुछ पल भर साथ चलते हैं और कुछ पूरी उम्र की याद बन जाते हैं। जी हाँ, अनजाने मोड़ों पर कभी कभी अचानक जिंदगी से मुलाकात हो जाती है। जब कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, जब कोई एक पल समय से बड़ा हो जाता है, तब समझ में आता है कि सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं रिश्तों का भी होता है।

श्रोताओं, जीवन अपने आप में एक यात्रा है, पर ये यात्रा सचमुच खूबसूरत तब बनती है जब कोई साथ हमारे कदमों के संग चल रहा हो। साथ हो तो राह आसान लगती है, थकान आधी रह जाती है और मुस्कान बिना वजह भी खिल उठती है। किसी का होना ही जीवन को अर्थ दे देता है, क्योंकि साथ से ही जीवन बनता है। उसके बिना रास्ते तो वही रहते हैं, पर सफ़र सूना सा हो जाता है, क्योंकि रिश्ते ही वो रोशनी हैं जो जीवन के अंधेरों को उजालों से भर देते हैं।

किसी साथ से सफ़र कभी इतना खूबसूरत हो जाता है कि चलने का एहसास ही नहीं होता। रास्ते लंबे नहीं लगते, समय बस ठहर सा जाता है और हम चलते रहते हैं साथ साथ मुस्कुराते हुए। ऐसे पलों में यूं लगता है कि सीमाएं कहीं पीछे छूट गई हैं और फिर मंजिल का अर्थ भी बदल जाता है। जब साथ सुंदर हो तो सफ़र ही मंजिल सा लगने लगता है। ये ठहराव एक याद बन जाता है, हर कदम एक नई खुशी रचता है और हर पल दिल में बस एक ही एहसास जगाता है कि ये साथ हमेशा बना रहे, कभी न छूटे।

तो श्रोताओं, चलना ही जीवन की नियति है, लेकिन चलने का असली मजा तो तब है जब हम सफर मनचाहा हो। फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो ये सफर था बेहद खूबसूरत रहा, क्योंकि हमारे हम सफर रहे आप, और ये जो सफर है वो यादगार बन गया। तो बहुत जल्द फिर भेंट होगी, तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो।

0: फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
1: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो, और जो तो बई गीत है, जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोकगीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती। थी
3: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो बई लोकगीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी,
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो, 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से,
2: 9425702768।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
2: तो सुनना न भूले हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
4: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए,
5: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं,
4: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें,
5: ब्रश करते समय दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें,
4: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं,
5: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें,
4: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं,
5: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें,
4: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें,
5: अपने वाहन को पाइप से न धोएं,
4: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें,
5: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं,
4: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं,
5: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
6: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
5: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
4: समय है पानी बचाने का,
5: पानी का मोल समझने और समझाने का,
4: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए करीब 27,050 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जबलपुर इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। और प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 5 संभागों में मौसम बदलेगा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB, यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था।

तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई, और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर
या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.com।

0: nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी है कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब

0: आपसे भी चर्चा कर सकते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
1: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
2: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
3: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
4: वीर जोरावर की
5: जय!
4: वीर जोरावर की
5: जय!
4: जय जेरापुर, जय भारत!
5: जय जेरापुर, जय भारत!
2: राजा जोरावर सिंह।
6: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
6: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
7: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
8: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
8: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
8: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
8: जी महाराज।
6: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
9: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,

0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब,

0: साजिश में कामयाब न हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: John Albert!
1: Connie!
0: What, how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे,
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, चलो, हाथ उठाओ, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।

0: अप्पा ये नहीं हो सकता।
1: देखो देखो टॉमे, हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
1: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
1: Yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: Actually, you are a fool.
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: ये था NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं, सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पश्चिम के आसमान से जब दिन अपनी सुनहरी इबारत समेटने लगता है, तब मन के भीतर आस्था का कोई दीप धीरे धीरे उजाला भरने लगता है। और इन दिनों तो वातावरण में जैसे शक्ति की एक अदृश्य तरंग प्रवाहित है। जी हाँ, माँ दुर्गा के आगमन की, आस्था के जागरण की और अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को पहचानने की। श्रोताओं, नवरात्रि केवल देवी के 9 रूपों की आराधना नहीं, अपने भीतर विद्यमान 9 संभावनाओं को जगाने का पर्व भी है। माँ शैल पुत्री की दृढ़ता, माँ ब्रह्मचारिणी की साधना, माँ चंद्रघंटा का शौर्य, माँ सिद्धिदात्री की पूर्णता, देवी के ये अलग अलग रूप हमें बताते हैं कि कोमलता और सामर्थ्य एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही चेतना के 2 सुंदर विस्तार हैं। तो आइए नवरात्रि की इस पवित्र शाम में सुरों

कि उस दुनिया में प्रवेश करें जहां भावनाएं अपनी आस्था का रूप ले लेती हैं, धुनें मन की देहरी पर दीप जलाती हैं और हर गीत जीवन के किसी नए अर्थ से हमारा परिचय करवाता है।

श्रोताओं, शक्ति आराधना का पर्व है नवरात्रि। शक्ति का अर्थ केवल शस्त्र उठाना ही नहीं, कभी टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेना भी शक्ति है। कभी अन्याय के सामने अडिग खड़े रहना, तो कभी किसी निराश आंख में उम्मीद का दीप जला देना भी शक्ति है। नवरात्रि हमें उसी चेतना का स्मरण कराती है जो सृष्टि में सृजन बनकर और मनुष्य के भीतर साहस बनकर प्रकट होती है। शायद इसीलिए देवी की आराधना में उठने वाला हर स्वर अंतर जागृति का कारण बन जाता है।

श्रोताओं, संध्या वेला में प्रज्वलित दीप केवल अंधेरे को चुनौती नहीं देता, वो घर में लौटती हुई शांति का स्वागत भी करता है। नवरात्रि में जब दीपक की ज्योति घर आंगन में झिलमिलाती है, तो लगता है जैसे हर दीप शिखा पर कोई प्राचीन प्रार्थना ठहर गई हो। प्रार्थना सर्व शुभ की, सर्व मंगल की, सर्व कल्याण की।

श्रोताओं, माँ का एक रूप वो है जिसकी हम मंदिर में आराधना करते हैं, और एक रूप वो जो हमारे जीवन में बिना किसी मंत्रोच्चार के आशीष बनकर उपस्थित रहता है। कभी थके माथे पर ठंडा हाथ, कभी हमारी चुप्पी को समझ लेने वाली दृष्टि, और कभी विपत्ति में हिम्मत बनकर खड़ी एक छाया, हमारी अपनी माँ, हमें जन्म देने वाली माँ। नवरात्रि में देवी की वंदना करते हुए मन उस माँ की ममता के प्रति भी कृतज्ञ हो उठता है जिसने जीवन को प्रेम का अर्थ सिखाया, और उस माँ की आराधना भी माँ दुर्गा की ही आराधना है।

श्रोताओं, नारी को केवल कोमलता की उपमा देना उसके व्यक्तित्व के एक छोटे से हिस्से को देखना है। उसके भीतर धरती का धैर्य भी है, नदी की गति भी है और पर्वत का संकल्प भी है। नवरात्रि के ये 9 दिन स्त्री की इसी बहुआयामी चेतना के उत्सव के दिन हैं, जहां स्त्री शक्ति पूजित भी होती है और हमें अपने आचरण पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करती है। देवी की सच्ची आराधना शायद वहीं पूरी होती है जहां नारी के प्रति सम्मान का ये भाव पूजा के आसन से उतरकर जीवन के व्यवहार में जगह पाता है।

श्रोताओं, नवरात्रि के ये दिन अंततः हमें अपने भीतर भी झांकने का निमंत्रण देते हैं। ये कहते हैं कि क्या हमारे विचारों में करुणा का उजास है, क्या हमारे व्यवहार में सम्मान की उष्मा है और क्या हमारे निर्णयों में सत्य का साहस है। देवी के चरणों में सिर झुकाने का सुंदर अर्थ यही है कि सिर उठाने के बाद हमारा मन थोड़ा और निर्मल हो, दृष्टि थोड़ी और उदार हो और जीवन थोड़ा और प्रकाशवान हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
3: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768।

0: स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड 28 साल

0: बार वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं और मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत में सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। वहीं शहरी महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहली जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत आज शाम 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार और शाम 7:30 किसान वाणी कार्यक्रम होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। इसमें प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ और शासकीय योजनाओं पर विशेषज्ञों और हितग्राहियों से बातचीत होगी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत आज रात 8:00 आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। रात 8:35 और 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10:00। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे ऋषभ मलिक का वायलिन वादन राग जोग। ये थी जान

जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक संक्षिप्त सा परिचय कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:40 का समय होगा चिंतन का और कृषि चर्चा सुनी जा सकती है 6:45 पर। सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जन सेवा से देश सेवा। हमारा ये विशेष कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। सुबह 9:05 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। गांधी चर्चा सुनी जा सकती है 9:15 पर। सुबह 9:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। जिले की चिट्ठी सुनिए सुबह 10:00। 10:05 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार। इसमें कल का निर्धारित क्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। रागमाला शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 हम आपको सुनवाएंगे M.R. गौतम का ख्याल गायन राग लाचारी तोड़ी। शाम 7:21 पर किसान भाइयों के लिए होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें कल सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आपकी फरमाइश। प्रसारण समय दिन में 12:00।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक सत्यवादी हरिश्चंद्र की दूसरी कड़ी। महिला सभा का प्रसारण होगा दिन में 1 बजे। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र का योगदान होंगे। दिन में 2 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 2:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:35 पर और 9:45 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जन सेवा से देश सेवा। हमारा ये विशेष कार्यक्रम होगा रात 8:00। रात 9:30 कार्यक्रम खेल जगत होगा। इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे देवेंद्र खुराना की वार्ता एशियन पैरा गेम्स 2026। रात 10:00 फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन सकते हैं। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा रात 10:30। इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे MR गौतम का ख्याल गायन राग चंद्रकौंस। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट। समझ से इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्य कैबिनेट ने 27,050 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए 8,76,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। और प्रदेश में 18 अक्टूबर तक आंधी बारिश का अलर्ट, ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा असर की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लेह हवाई अड्डे का नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना, दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन, सिंधु घाट में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और 40 गांवों में विकसित जलाशय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से आवागमन, बिजली और जल उपलब्धता बेहतर होने के साथ प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में युवाओं की शिक्षा, खेल प्रतिभाओं और ग्रीन हाउस खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में क्षेत्र में 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिनसे किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर बन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 12 वर्षों में इन समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि लखपति दीदियों को अब करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरस मेले अब देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाएंगे ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मंच मिल सके। उन्होंने प्रत्येक जिले में शी मार्ट स्थापित करने की भी बात कही।
1: पूरे देश में, दिल्ली में नहीं, अलग अलग राज्यों में भी सरस मेला करेंगे ताकि दीदियों को प्लेटफॉर्म मिले। एक राज्य में एक सरस मेला और उसके आगे बढ़ के अब सी मार्ट हम बनाएंगे। सी मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा भी देगी हर जिले को, 10 लाख रुपया ईच डिस्ट्रिक्ट हमने फैसला किया है सी मार्ट के लिए। और सी मार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि उस जिले की दीदियों को अपने सामान को बेचने का प्लेटफॉर्म मिले, मार्केट मिले, उसकी कोशिश होगी। और आंध्र को उसका मॉडल बनाया जाएगा, विजयवाड़ा को, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ऑफर दिया है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए 27,050 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जबलपुर इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए विशेष कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सांदीपनी स्कूलों की स्थापना के साथ शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय संस्थानों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
2: एक बड़ा निर्णय हुआ है स्कूल शिक्षा में। सांदीपनी विद्यालय तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हमारे बाकी भी स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, आवासीय खेलकूद भवन, ऐसे कई प्रकार की गतिविधियों के लिए लगभग 3,000 करोड़ की राशि हमने मंजूर की, जिसके कारण से आने वाले 2-3 साल में, वैसे तो हमने कहा कि तुरंत गति से सभी क्षेत्रों और समान रूप से जो विधायक, सांसद या जनभागीदारी की भी राशि मिला करके वो इसमें जो चली योजना में भी कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनको भी जोड़ करके, लेकिन 2 साल के अंदर ये सारा क्षेत्र हमारा

0: हमारा कोई विद्यालय भवन भी न रहे न जर्जर रहे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूरे होने पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर देने की जरूरत है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए 8,76,007 किसानों ने पंजीयन कराया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज बताया कि इनमें धान के लिए 8,68,214, बाजरा के लिए 7,694 और ज्वार के लिए 2,039 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए प्रदेश में 1,100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए थे। इस बार किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से किया गया है, जिसमें किसानों के सभी खसरे दर्ज हैं। भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भारतीय सेना दिवस का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और चंबल संभाग में इसका अधिक असर रहने की संभावना है, जबकि उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में भी बारिश हो सकती है। गुरुवार को ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में वायु प्रदूषण से होने वाले हृदय और श्वास संबंधी दुष्प्रभावों के समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला अस्पताल नीमच में विशेष चेस्ट क्लिनिक शुरू किया गया है। झाबुआ में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खरीफ फसलों की कटाई के दौरान नरवाई जलाने की घटनाओं की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। खंडवा में प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने ओंकारेश्वर स्थित एक आत्मधाम पहुंचकर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एक आत्मता की प्रतिमा के दर्शन किए और पुष्पांजलि अर्पित की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य और जन सुविधा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आगर मालवा में सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक हुई। जबलपुर में पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व को नई दिशा देने के उद्देश्य से ग्रामीण पंचायती राज महिला नेतृत्व कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बैतूल में सहायक परियोजना समन्वयक और विकासखंड स्रोत समन्वयक के पद के लिए चयन परीक्षा 21 अक्टूबर को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाएगी। रायसेन जिले के नए कलेक्टर के रूप में 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रोहित सिसोनिया ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई?

0: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी। भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर

0: प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी भैयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच बे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूबई नौने हुओ। देखो का है भैया बहना हरो, हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाओ जात है, जो दिन उन करोड़न ग्रामीण महिलाओं के साहस मेहनत और योगदान को नमन करवे को दिन है, जो खेतन से लेके घर तक देश की रीढ़ बनी भई है। ग्रामीण महिलाएं सिर्फ खेती नहीं करती, वे परिवार समाज और अर्थव्यवस्था को भी संभालती हैं। भुनसारे खेतन में काम, बच्चन की देखभाल, पशुपालन, बीजन को बचाबो और फसल को बाजार तक पहुंचाबे तक हर जगह पे उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के कुल खाद्य उत्पादन को लगभग आधो हिस्सा ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से आत है। फिर भी आज भी उन्हें जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सही मजदूरी में बराबरी नहीं मिल पाई है। ईद दिवस को मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाबो, उनके अधिकारन के प्रति जागरूकता फैलाबो और उनके योगदान को दुनिया के सामने लाबो। जैसे कि कही जात है कि सशक्त ग्रामीण महिला मजबूत भारत की नींव होते है। जब गांव की महिलाएं सशक्त हुए तभी पूरा देश तरक्की कर है। और इसके अलावा भी आज बड़ी ही अच्छी एक जानकारी हम आप औरन के लाने लेके आए हैं। देखो का है कि प्राकृतिक और जैविक खेती आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, जो तो अपन सभी जने जानत है। और ई में रासायनिक खाद कीटनाशकन को इस्तेमाल नहीं होते है, बल्कि ई की जगह अपन गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट और देसी बीजन को उपयोग करत है। खेती की लागत इसे कम हो जात है, खाना में जहर नहीं पहुँचत और कैंसर और दूसरी बीमारियों को खतरा सोई कम हो जात है। सो जमीन, पानी और हवा प्रदूषण से बचत है। मित्र कीट मने केंचुआ वापस आते हैं और जमीन फिर से जिंदा हो जाते हैं। और ई के संबंध में हम आपके लाने एक बड़ी ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। सो चलो सुनत है प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ एवं शासकीय योजनाओं पर अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग अंशु तिलेठे बैन को है।
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज की पहली प्राथमिकता जैविक खेती या प्राकृतिक खेती बनती जा रही है, क्योंकि मिट्टी को बचाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बचाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वापस अपनी परंपरागत खेती, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना जरूरी हो गया है। तो इसी विषय को ध्यान में रखकर आज हम आए हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला कार्यालय भोपाल में, और हमारे साथ है उप संचालक कृषि श्रीमती सुमन प्रसाद जी, जिनसे हमने जानना चाहा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में सरकार की योजनाएं के बारे में। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। जो हमारे किसान भाइयों की तरफ से पहला सवाल आएगा वो यही आएगा कि सरकार प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कारगर उपाय कर रही है या क्या योजनाएं लेकर आई है।
4: सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसे अभी आपने कहा कि जैविक खेती आज की आवश्यकता बन गई है, तो उत्पादन तो हमने बहुत कर लिया है, लेकिन अब हम जा रहे हैं स्वच्छ उत्पादन की ओर, और इसलिए किसान भाइयों को इसकी ओर प्रोत्साहित करने हेतु बहुत सारी योजनाएं हमारे कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं। एक जो हमारा परियोजना संचालक आत्मा, एक हमारी एक परियोजना है जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, किसानों का प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त एक पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पे केंद्रित एक योजना राष्ट्रीय मिशन फॉर प्राकृतिक खेती चलाई जा रही है, और हमारे भोपाल जिले में भी इस योजना को चलाया जा रहा है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना। जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में जो सबसे प्रमुख समस्या किसानों को आती, अभी तक आती रही है, वो ये है प्रमाणीकरण जी। क्योंकि किसान जब जैविक या प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करता है, हम सभी जानते हैं कि अब जो खेती है पूरी तरह से रासायनों पे निर्भर हो चुकी है, तो जब उन रासायनों को वो उत्पादन करना खत्म करते हैं तो निश्चित ही उनका जो उत्पादन है वो गिरता है, जो कि आगे जाके जब उसको प्राकृतिक तरीके से वो सही तरीके से यदि सही पद्धति अपना के करेगा तो वो उतना ही उत्पादन जो कि दूसरी खेती में होता है वो ले सकते हैं। धैर्य रखने की आवश्यकता है और किस तरह से कौन सी तकनीकें उपयोग करने की आवश्यकता है ये सिखाने के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये योजना जो है वो प्रशिक्षण आधारित योजनाएं है।

0: जैसा कि नाम हम जानते हैं प्राकृतिक खेती, तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि एक शब्द होता है जैविक खेती और एक होता है प्राकृतिक खेती
1: जी।
0: तो दोनों में अंतर क्या है? जैविक खेती सिंपली वो खेती है जिसमें रसायनों का उपयोग ना किया जाए, परंतु प्राकृतिक खेती वो खेती है जो कि गौ आधारित खेती। हमारी सरकार मुख्य रूप से गौ आधारित खेती प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती योजना चला
1: जी। तो इसमें अनुदान का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से दिया जाता है?
0: इसमें अनुदान का, जैसे मैंने कहा कि सबसे प्रमुख समस्या किसान भाइयों की है सर्टिफिकेशन की, क्योंकि हम उनको पूरी पद्धति सिखा भी दें और वो उत्पाद बना भी लें, तब भी जो ग्राहक है जो अतिरिक्त मूल्य है वो देने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब किसान को अपनी उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता तो वो फिर हतोत्साहित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोग इस योजना के अंतर्गत किसानों को क्लस्टर के रूप में, किसानों का क्लस्टर बनाते हैं, सामूहिक रूप प्राकृतिक खेती से किसानों को जोड़ते हैं, उनको सर्टिफिकेशन के लिए उनकी उत्पाद को किस तरह से प्राकृतिक उत्पाद बनाना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। 125 किसानों का एक क्लस्टर बनता है, ऐसे करीब 10 क्लस्टर भोपाल में है, और वो 125 कृषकों के ऊपर 2 किसान दीदियां हैं जो कि पहले से ही मैनेज से प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित हैं। शासन द्वारा प्रशिक्षित करके मास्टर ट्रेनर बनाई गई है, वो मास्टर ट्रेनर कृषि सखियों को इन 125 किसानों को गाइड करने के लिए रखा। वित्तीय सहायता, मैं अनुदान नहीं कहूंगी, जो प्रोत्साहन राशि और वित्तीय सहायता योजना में दी जा रही है
1: जी, जी।
0: वो 2 तरीके से, एक तो इन कृषि सखियों को मानदेय मिलता है इन कृषकों को गाइड करने के, प्रतिदिन के हिसाब से एवरेज रहता है, तो मासिक लगभग 5,000 रूपए एक किसान दीदी को मिलता है, क्योंकि ये किसान दीदी उसी स्थान पे रहती है जहाँ ये किसान है, उनके लोकल एरिया में रहती हैं, तो वो पूरे टाइम उनको गाइड कर सकती हैं। तो ऐसे हमारी 10-10 किसान दीदियां दोनों ब्लॉक में हैं, टोटल 20 किसान दीदी हमारे भोपाल में हैं, और उनसे जुड़े हुए लगभग 1250 किसान हैं जिनको की ये किसान दीदियां नेचुरल फार्मिंग करने में मदद कर रही हैं। अब बात आती है कि किसान को क्या प्रोत्साहन है इसमें, तो किसान को ये जानकारियां देने के अलावा प्रत्येक किसान को उसका जो सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है उसको गाइड करने के लिए प्रति किसान 2,000 रुपए उनको डायरेक्ट डीबीटी के खाते में दिया जाता है,
1: किसान के खाते में।
0: किसान के खाते में एक बार किसान का चयन हो जाए, उसकी लोकेशन वगैरह बाकायदा लैंग्वेजिड लैटिट्यूड ऑनलाइन अपडेट होती है, जब किसान अपना चयन कर ले, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए नहीं होता, किसान के एक एकड़ क्षेत्र, तो जैसे मान लीजिए 125 किसान हैं, तो 125 के प्रत्येक किसान के एक एकड़ क्षेत्र के लिए शासन प्रावधान रखता है। इसके अतिरिक्त किसान भाई करना चाहे तो हम उनको पूरी मदद करते हैं टेक्निकली, फाइनेंशियली वो अपनी तरफ से उन्हें जो भी सर्टिफिकेशन का राशि है उन्हें बेयर करनी होती है। हमारी शासन की तरफ से 2,000 रुपए प्रति किसान ये प्रावधान है हर किसान को देने,
1: जो समूह में शामिल है,
0: जो समूह
1: और जिसके पास एक एकड़ भूमि है,
0: जिसके पास एक से अधिक भी भूमि है, तो एक एकड़ में वो जैविक खेती कर रहा है।
1: कम से कम एक एकड़ होना आवश्यक है,
0: एक एकड़ होना आवश्यक है, साथ में गोवंश भी हो उसके पास, क्योंकि ये गौ आधारित की, तो एक भी यदि गाय है तो वो जरूरी है कि वो रखे,
1: मतलब ये पात्रता हुई किसान की
0: जी,
1: कि उसके पास गोवंश भी हो और एक एकड़ जमीन का भी वो मालिक हो, तो सरकार उसे प्रोत्साहन राशि भी देती है, प्रशिक्षण भी देती है,
0: प्रशिक्षण भी देती है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम विभिन्न माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको मार्केटिंग करने में भी मदद। एक बार उसका योजना में चयन हो जाए तो हम उसको 3 साल तक हैंड होल्डिंग करते हैं और उसका सर्टिफिकेशन भी हम यहाँ से जनरेट करवा, उनको प्रथम वर्ष C1, द्वितीय वर्ष C2 और तृतीय वर्ष C3, इस प्रकार 3 अलग अलग सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं, जिससे ये सत्यापित होता है कि ये ऑर्गेनिक खेती हमारे किसान भाई कर।
1: तो ये C1 और C2 जो C3 सर्टिफिकेट आपने बोले हैं, इसको किस तरह समझे, अगर थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना चाहिए?
0: जो जैविक सर्टिफिकेशन की एक एजेंसी है, नेशनल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन NCOF
1: जी,
0: NCOF का सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि किसान ने जैविक उत्पाद ही बनाया है
1: जी जी।
0: ये सर्टिफिकेट जो जारी होता है वो हमारे फील्ड के अधिकारी समय समय पे उनको जो गाइड करते हैं और वो उस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। और क्योंकि इसके पहले किसान रासायनिक खेती कर रहे थे, तो 1, 2 और 3 इसलिए देने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो भी रासायनिक अवशेष थे मिट्टी में या पौधों में, जो मिट्टी में है, उनको पूरी तरह से खत्म होने में 3 वर्ष का समय लगता है। इसलिए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष का सर्टिफिकेशन।
1: तीसरा सर्टिफिकेट हम तब देते हैं जब पूरी तरह से रासायनिक जो अंश उसमें पड़ेंगे वो समाप्त हो चुके होते हैं।

0: बहुत अच्छी जानकारी मैम जी। कुछ और बताना चाहेंगी हमारे किसान भाइयों को, संदेश देना चाहेंगी प्राकृतिक खेती की तरफ या जैविक खेती की तरफ वो मुड़े और उसके प्रति जागरूक हों और उससे मुंह ना मुड़े
1: जी। अभी जैसे आपने कहा कि सबसे प्रमुख शब्द है, मैं कहूंगी वो है धैर्य। यदि प्राकृतिक खेती करना है ये हम जानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धैर्य की कमी। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगी कि एकदम से पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक में ना बदलें, पर छोटे क्षेत्र में करके देखें।
0: बहुत अच्छी जानकारी मैम। किसान भाइयों आपने जाना कि किस तरह से हम प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़कर या जैविक खेती को अपनाकर मिट्टी में सुधार तो करेंगे ही, साथ में ही हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी सुधारेंगे। तो निश्चित ही जुड़िए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारियों से, संपर्क करिए और स्वयं को और देश को स्वस्थ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आए हैं डॉक्टर एबी सिंह जी के पास। आप पूर्व विभागाध्यक्ष एवं निदेशक रहे हैं ICAR IISS में एवं वर्तमान में आप डीन ऑफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सीज यूनिवर्सिटी भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर नमस्कार, प्राकृतिक खेती के विषय में हम आपसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए। तो उसी परिदृश्य में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है।
2: किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब ही है प्रकृति के अनुकूल
0: जी।
2: आप जो प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके और खेती करते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। किसान भाइयों इसमें कोई भी ऐसा रसायन उर्वरक कोई भी ऐसी बाहरी की चीज नहीं प्रयोग किया जाता, केवल प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करके हम खेती करते हैं
0: जी। सर प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को।
2: किसान भाइयों प्राकृतिक खेती में हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, ऐसे पेड़ पौधे जिनको जानवर नहीं खाते, उन पेड़ पौधों की पत्तियों को अर्क को लेकर के ही हम खेती में लगाते हैं और इसी को हम प्राकृतिक खेती करते हैं
0: जी। सर प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए।
2: किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि चार ऐसे कंपोनेंट जिसको कहते हैं आयो होते हैं
0: जी।
2: जो हमारे किसानों को ध्यान देने के लिए है, जिसमें हम कहते हैं एक पदार्थ बनाया जाता है जो गोबर गोमूत्र से, जिसको हम बीजामृत कहते हैं। आप उस बीजामृत के माध्यम से ही हम बीजोपचार करके कोई बायो फर्टिलाइजर अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों का हम प्रयोग करके हम बीजोपचार करते हैं। दूसरा होता है जीवामृत। जीवामृत का मतलब यह है किसान भाइयों कि जो हम खेत में ढेर सारी खादों को डाल करके या इन चीजों को गोबर डाल करके करते हैं, उसको ये लिक्विड में होता है, हर केवीके में हर संस्थान में ये उपलब्ध है कि अगर किसान भाई हमारा प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो कैसे हम इन चीजों को बनाएं, कैसे प्रयोग करें, इसकी जानकारी विस्तृत हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट है। दूसरा होता है कि हमारे किसान भाई ज्यादातर सोयाबीन गेहूं इस टाइप की फसलें उगाते हैं। प्राकृतिक खेती में किसान भाई हमेशा ध्यान रखें एक से ज्यादा फसलों को उगाने की जरूरत होती है। जैसे अगर आपकी मान लो सोयाबीन की फसल किसी कारणवश ज्यादा बारिश से सूखा से किसी कारणवश अगर नष्ट हो जाती है, अगर दूसरी फसल आप लगाएं जैसे मक्का है, तुअर है या और क्रॉप है, तो कम से कम हमारे किसान भाई एक फसल के नष्ट होने के बजाय दूसरी फसल ले सकता है, इसमें नुकसान भी हमारे किसानों को कम होता। दूसरा हमारा किसान भाई जो आज ज्यादातर गेहूं धान की पराली को जला करके फेंक दे रहा है, इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा है, किसान भाई उन्हीं पराली और इन फसल अवशेष को ही खेत में डालकर आपको एक मल्च जिसको आच्छादन बोलते हैं, और आपका वो आच्छादन आपके खरपतवार को भी रोकता है, दूसरा उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी आपकी मिट्टी में मिलते जाते हैं।
0: सर किसानों की लागत कम लगे और ज्यादा फायदा प्राकृतिक खेती से कैसे लिया जाए।
2: किसान भाइयों देखिए जो मैंने पहले अभी बताया कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, पत्तियों की अर्क को और नीम की पत्तियों को, इन सब चीजों का भी प्रयोग करके किसान जो बाहर से अपनी यूरिया DAP पेस्टिसाइड हर्बिसाइड खर्च करके ला रहा है, आपको ये सब कोई भी चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। किसान अपनी लागत को इसमें काफी हद तक कम कर सकता है, बशर्ते इन तकनीक को समझने की जरूरत है।
0: सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में पोषण प्रबंधन के क्या तरीके हैं।
2: देखिए मैंने किसान भाइयों पहले ही बताया कि पोषण प्रबंधन के लिए हमारे किसानों को गाय के गोबर गोमूत्र का ही प्रयोग करके जिसको हमने आपको बताया

0: बीजामृत जीवामृत घन जीवामृत करना है। दूसरा, जो आप फसल अवशेष जलाते हैं उन फसल अवशेष को फेंकना नहीं है। वो आप जैसे मान लो अभी गेहूं की फसल आ रही है, आप इसमें इस समय जो सोयाबीन का अवशेष निकलता है वो पूरे अवशेष को उस खेती में बिछाना है। और वो दो तरीका आप किसान भाइयों काम करता है, एक तो मल्च जिसको कहते हैं नमी बनाए रखता है, और वो मल्च धीरे धीरे तड़ करके पौधों को मिट्टी को पोषक देता है जो हमारी फसलों के लिए उपलब्ध होता है।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में कीड़े और बीमारियों को उपचार हेतु क्या क्या करना चाहिए।
0: किसान भाइयों, आपको आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिनको जानवर नहीं खाते, पहले तो आप सीख लें कौन कौन से पौधे, जैसे सीताफल है, करंज है, कनेर है, धतूरा है, सदाबहार, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको जानवर कभी खाते नहीं, ना वो आपके किसी उपयोग में आते। अगर इन पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ करके दो दो किलो पत्ती पांच पौधों की तोड़ करके 20 लीटर पानी में आप डाल देते हैं, और डालने के बाद 20 दिन के लिए उसमें छोड़ दीजिए। उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ 100 ग्राम बेसन डाल करके 2 लीटर गोमूत्र डाल दीजिए। 20 दिन के बाद उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद 4 से 5 लीटर इसका लेकर के और 150 लीटर पानी में डाल करके कोई भी बीड़ा लगा हो, कोई भी बीमारी लगी है, अगर इसका छिड़काव करके आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि सर हमको अलग से कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने आपको पहले बताया कि प्राकृतिक खेती में हमको मृदा स्वास्थ्य के साथ मानव स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही कहूँगा, आप इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपकी लागत तो कम लगेगी ही, साथ आय का फायदा होगा, साथ साथ आप जो है प्रकृति को भी बचाएंगे।
1: सर, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती के विषय में। हमें आशा और उम्मीद है हमारे किसान भाई इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है हमारे किसान भाइयों और बहनों को। उसी सिलसिले में कृषि सखी चुनी जाती हैं जो कि प्रशिक्षण देती हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक कृषि सखी को।
2: नमस्ते, मेरा नाम माया मालवी है, मैं ग्राम टीला खेड़ी जिला भोपाल से आत्मा परियोजना में कृषि सखी के पद पर कार्य करती हूँ। हमने 125 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें हम किसानों को प्राकृतिक खेती पर जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में मैं किसान बहनों को अपने खेत पर या घर पे थोड़ी सी जगह में किचन गार्डन लगाने की भी सलाह देती हूँ। उसमें किसान बहनों को ताजा सब्जियां केमिकल रहित प्राप्त होती हैं और उससे उनके पैसों की भी बचत होती है। जब हम किसानों के साथ मीटिंग करते हैं तो हम किसानों को जीव अमृत बनाना सिखाते हैं। तो जीव अमृत में 200 लीटर पानी में 10 किलो गाय का ताजा गोबर मिलाते हैं, 10 लीटर गाय का गोमूत्र मिलाते हैं, 2 किलो बेसन मिलाते हैं, 2 किलो गुड़ मिलाते हैं और 2 किलो ही खेत की मिट्टी लेते हैं। पर खेत की मिट्टी ऐसी होना चाहिए, या तो मिट्टी मेड़ की हो या फिर बरगद के पेड़ के नीचे की, ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पे केमिकल का उपयोग नहीं किया हो। इस सब घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छाया में सूती कपड़े से बांधकर रख दिया जाता है। इस घोल को आप घड़ी की दिशा में दिन में 2 बार इसको घुमाना होता है। इसके बाद 5-6 दिन में यह घोल बनके तैयार हो जाता है। इसका आप स्प्रे खेत पर भी कर सकते हैं या सिंचाई के समय भी आप उपयोग कर सकते हैं। हम फिर इसके बाद किसानों को जैसे नीम अस्त्र भी बनाना सिखाते हैं, तो नीम अस्त्र में 5 किलो नीम की 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो देसी गाय का गोबर 100 लीटर पानी में मिलाकर इसको भी अच्छी तरह इस मिश्रण को मिलाकर कपड़े से या टाट से बांधकर छाया में रख देते हैं। यह मिश्रण भी 3 से 4 दिन में बनके तैयार होता है और 1 एकड़ खेती के लिए 100 लीटर पर्याप्त होता है। मैं किसानों को कंडा टॉनिक भी बनाना सिखाती हूँ। कंडा टॉनिक में 2 से 3 साल पुराने कंडे 100 लीटर पानी में 10 से 15 कंडे एक कपड़े में बांधकर आप इसको 24 घंटे के लिए रख दें छाया में। इसके बाद वह कंडे निकाल लें और उस मिश्रण का स्प्रे भी आप किसान करते हैं तो उससे भी किसानों की फसल में बहुत फायदा होता है। यह सब इस्तेमाल करने से किसान को बचत, पैसे की बचत तो हो रही है, साथ में केमिकल रहित खेती भी हो रही है। धन्यवाद।
1: प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मा परियोजना किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कई किसान लाभान्वित हुए हैं और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। ऐसे ही एक कृषक भाई से हमने बात करी।
3: सभी को नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह नागर है, मैं ग्राम हिनोदी सड़क में रहता हूँ। हमने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जुड़े हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन

0: जी एक किसान एवं कृषि कल्याण विभाग की योजना जो आत्मा परियोजना के अंतर्गत आती है, इस योजना से हमें काफी लाभ हुआ है। हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। गाय के गोबर, गोमूत्र और उनके द्वारा जो हम केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हमारा गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। अभी हमने उसमें कुछ मात्रा में उड़द की फसल ली थी, कुछ मूंग लगाया था हमने हमारे खेतों में। उसको देख के हमारे जो पड़ोसी किसान है उनको काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे कि हमने जीवामृत बनाया था वो डाला, घन जीवामृत बनाया था वो डाला, वर्मी कंपोस्ट जो हमने हमारा केचुआ खाद बनाया था उसका उपयोग किया था, कीटों के नियंत्रण के लिए हमने नीमास्त्र का तैयार किया था जो 10 पत्तियों का मिश्रण होता है, उससे हमारी फसल काफी सुरक्षित रही। हमारा खेत सुरक्षित रहेगा ताकि हमने उसमें जीवामृत, बीजामृत और जो मिट्टी के अंदर काफी लाखों की मात्रा में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमें हमारी मिट्टी को जीवंत स्वरूप में रहे हैं उसको काफी अच्छी मात्रा में बरकरार रखने के लिए हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हैं। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी खेती की लागत को कम करके प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। मिट्टी के अंदर अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे तो आपका खेत अधिक मात्रा में आपको उत्पादन देगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जमीन और स्वस्थ किसान परिवार और एक स्वस्थ समाज की ओर आगे लेके जा सकते हैं।
1: किसान भाइयों और बहनों, किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि विकास विभाग परियोजना संचालक आत्मा भोपाल में जाकर हमने यह स्थल रिकॉर्डिंग करी। प्राकृतिक खेती या जैविक खेती पर शासन की क्या योजनाएं हैं, इस विषय में विस्तृत जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और मैं आपके साथ थी अंशु तलेठी।
2: अब अपन ने सुनी प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ एवं शासकीय योजनाओं पर अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग हतो अंशु तिलेठे को और भैया बहन हर चलो अब कछु मनोरंजन हो जाए। सो आप और उनको सुनवात है जो देवी गीत राम सिंह लोधी और संगी साथियन को गाओ भव।

अब अपन सुनो जो देवी गीत राम सिंह लोधी और संगी साथियों को गाओ भाव। और चलो अब कछु और बातचीत कर ली जाए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। जी खो 1 जुलाई 2001 को शुरू करो गो हो तो इको मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र को सबसे कमजोर वर्ग और कृषि मजदूरन को सुरक्षा देवो। योजना को लक्ष्य जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करवो हो तो इमें 3 तरह के लाभ मिलत है। जीवन बीमा कवरेज, आवधिक एक मुश्त उत्तर जीविता लाभ, मैंने कचु साल के बाद पैसा वापस मिलवो। ई के लाने 18 से लेकर 50 साल की आयु के बीच के कृषि श्रमिक जी के पास बहुत ही कम या कोनो जमीन नहीं होत है वे ई के लाने पात्र होते हैं। शुरुआत में मजदूरन को 1 रुपया प्रतिदिन को अंशदान ई के लाने देने पड़त तो और केंद्र सरकार इमें 2 रुपया जोड़ती। गाँव में ग्राम पंचायत मजदूरन की पहचान करवे बारी मुख्य नोडल

0: एजेंसी हती और योजना के लाने फंड के तौर पर LIC के सामाजिक सुरक्षा कोष से 500 करोड़ रुपया में से 150 करोड़ रुपया दे गए हते। एक समूह में न्यूनतम सदस्यन की संख्या कम से कम 20 मजदूर होने चाहिए। मैंने सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो कृषि मजदूरन को पूरा फायदा देते हैं। और अब आप और उनको बता देते हैं मंडी के भाव। सोयाबीन को भाव है 4,210 रुपया से 5,100, गेहूं को भाव है 2,350 से 3,130 रुपया, सरसों को भाव है 5,195 से लेकर 5,400 रुपया प्रति क्विंटल, डॉलर चना को भाव है 6,400 से लेकर 9,765 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना को भाव है 4,975 से 7,010 रुपया, मसूर है 5,380 रुपया प्रति क्विंटल, मटर को भाव है 4,240 रुपया, मूंग को भाव है 6,665 रुपया, धनिया चल रहा है 6,210 रुपया प्रति क्विंटल, लाल मिर्ची को भाव है 6,300 से लेके 13,610 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन को भाव है 3,114 से लेके 25,509 रुपया प्रति क्विंटल तक, प्याज को भाव है 959 से लेके 3,782 रुपया प्रति क्विंटल तक। सो जे हते मंडी के भाव। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारी है हमने आप और उनको दी वे आप और उनके काम में आए हैं और खेती किसानी के लाने इन सभी बातों को आप ध्यान रखो, संगे संगे सरकार की इन सभी योजनाओं को आप फायदा भी उठाओ। और ई के संगे आज को किसान वाणी कार्यक्रम हम इतना समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। आकाशवाणी भोपाल से अभी किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवनलाल।
3: नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है जन सेवा से देश सेवा। हमारी आज की थीम है उद्यमिता और नए भारत की अर्थव्यवस्था। फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर अशोक चांडक, जो प्रेसिडेंट IESA में हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO PFT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद।
3: आपसे शुरुआत करते हैं अशोक, एंड आई नो कि सेमीकंडक्टर्स इज आपके एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, आपके एरिया ऑफ पैशन भी है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको सेटअप किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था?
4: सबसे पहले मैं तो एक लाइन आम भारतीयों के लिए कहूंगा कि सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, कार चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अस्पताल में हमारे इलाज की मशीनों से स्कैनिंग किया जाता है, इस सब के पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आज खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत है। और ये सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, लेकिन ये भारत की अग्रसर होने की बात है। अब सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य जो है, ये शुरू हुआ था 6 साल पहले, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से बोला गया। उसका पॉलिसी नंबर 1 भी अनाउंस हुआ था, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना। वैसे तो भारत काफी लंबे समय से चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो काम है ये दूसरे देशों पर निर्भर होता है और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए किया जाता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन उसके वजह से हमारा जो चिप निर्माण का खुद का जो काम है वो आगे कभी बढ़ा नहीं था। और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसमें पहले चरण में 76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और अभी दूसरा मिशन भी चालू हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसे सेमीकॉन इंडिया 2.0 कहते हैं। इसमें अभी एक्सपांशन किया गया फुल इकोसिस्टम के लिए सपोर्ट करने के लिए, जिसमें चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती हैं और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे। और तीसरा, हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, इसको भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम भी दुनिया की तरह चिप बनाते रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन क्षेत्रों को मजबूत करें और जहां पर भारत की क्षमता विकसित हो सकती है और भारत दुनिया की जरूरतें भी पूरा कर सकता है।
3: डॉक्टर मेहता, हम ये तो जानते हैं कि सरकार का फोकस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है और अलग अलग स्कीम्स भी इनको इनकरेज करती हैं, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे टिंकरिंग लैब्स हो, मगर इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा रहा है? और आई थिंक अब तक तो थोड़ी जर्नी तो हम तय कर चुके हैं, और कुछ चैलेंजेस इसके रिस्पांस में जहां पर और मदद चाहिए इंडस्ट्री को इसके लिए?
5: देखिए, अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा पूरा इसको विस्तार से बताया, और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेमीकंडक्टर मिशन या हमारे जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशंस को अपने डेली एंटरप्राइजेज में और कैसे उसमें एंटर कर सकें, इसके बारे में इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इसमें जागरूक है। और जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में जो पिछले 2-3 साल में एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक इकोसिस्टम देश में क्रिएट किया है, सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है, उसमें सारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
4: बात ऐड करूंगा यहाँ पर
3: जी जरूर।
4: जो टोटल अभी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, इसमें जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें करीबन 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रहे बल्कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। इसमें इसके साथ साथ 24 चिप डिजाइन की प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।
3: आइए सुनते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर ये रिपोर्ट।
6: सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की लगभग हर तकनीकी चीज का अहम हिस्सा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के तहत ध्यान सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, इसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन यानी फैब, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण पूरी श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक उद्देश्य चिप डिजाइन है। भारत में पहले से ही कई इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी आईपी विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश, सहायता, तकनीकी

0: साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रयास है।
1: सो जैसे अभी डॉक्टर मेहता ने कहा कि हम जब बात करते हैं ये लॉन्ग टर्म है, आई थिंक इंसेप्शन से प्रोडक्शन, और अभी आपने अशोक प्रोडक्शन की बात भी करी, मार्केट में आ गए हैं, आर दे बीइंग यूज्ड, फीडबैक, बिकॉज ये पूरा सर्किट होता है टू ऑल्सो कैप्चर द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं ना हिट द ग्राउंड रनिंग, कब हम लोग इस स्तर पे पहुंचेंगे कि हमारे जो इंटरनली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली हमारी काफी सारी नीड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं?
2: इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जैसे कि मैंने बताया 5 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनके पास भी अभी मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है अभी, और बाकी 7 प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, 1-2 साल में वो ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो देश की कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर की, उसकी पार्शियल क्षमता से हम पूरी कर पाएंगे। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि 2030 में भारत में करीबन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर का डिमांड उभर कर आ रहा है। आज हम 2026 की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की डिमांड करीबन $55 बिलियन का है और सप्लाई less than $1 बिलियन और इवन उतना भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, हम देख सकते हैं कि करीबन $10 से $20 बिलियन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल होगा और बाकी हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो परियोजनाएं शुरू होगी प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर कंट्रीज में, जिसे मैं कहता हूँ डिपेंडेंसी बदल के बन जाएगी इंटरडिपेंडेंसी। मतलब हमें कई बार ये देखने में मिलता है, सुनने में पड़ता है कि कुछ कंट्रीज आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने अपने लिमिटेशन लगाते हैं कुछ देशों के लिए। हमें उस बात से था इसका छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर भी कई देश डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें करीबन 1000 टाइप की चिप लगती है कंट्री में और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पूरे तो 100% हमारा इसमें सेल्फ रेजिलियंस नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20% का हमारा 2-3 साल में लक्ष्य पूरा जरूर हो जाएगा इसमें। और साथ में अभी जो नया स्कीम अनाउंस हुआ है, जैसे मैंने बताया 2 महीना पहले, इससे नए प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, तो 2030 तक वो प्रोजेक्ट भी अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होते हैं, जिसे ओसैट और असेंबली कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट को 4-5 साल लगते हैं, जिसे फैब्स और फाउंड्री कहा जाता है। तो हमें दोनों का कंबाइनेशन देखना है, इसलिए कहता हूँ कि 2030 में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हमारी जो अभी प्रोडक्शन हो रही है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है कंपनीज से कि उनका डिमांड पूरा फुलफिल्ड है, मतलब जो कैपेसिटी है फुल्ली बुक्ड है, उनके पास पूरा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, कुछ इंडियन कंपनीज का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी बन गया है, ये जो हम ट्रस्टवर्दीनेस कहते हैं कि भारत में चिप बन गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है बड़ी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते हैं। तो जब हम किसी चीज में जिसका स्पेशली जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्टार्टअप्स, हमारा इकोसिस्टम गियर्ड अप है कि वो मोबिलिटी, वो एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अंदर लाने के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सेमीकंडक्टर्स में?
3: जी बिल्कुल, ये तो सेमीकंडक्टर की एक टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे एमएसएमईज हैं, क्या वो इसके लिए गियर्ड अप हैं या नहीं है, देश में क्या वो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है या नहीं है, ये आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली मैं इसमें कहूंगा कि जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, हमारे देश में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 2,25,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी देश में हो चुके हैं। कहने का मतलब है आज हर जो युवा यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंट्री में 65% लोग यंग हैं जो कि 35 इयर्स के कम की एज के हैं, तो मेन इसमें मकसद ये है कि युवाओं को हम सिर्फ जॉब सीकर ना बनाएं बल्कि जॉब क्रिएटर की इसमें भूमिका हमारे युवा निभाएं। तो हमारी एम्बिशन अभी ये है कि सबसे पहले डिजाइन इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि डिजाइन भी यहाँ पे हो और इनोवेशन भी इंडिया में हो और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो, बट इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करे टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की जहां तक एडॉप्शन की बात है, आज हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एस्पायरिंग हमारी सोसाइटी है, आज देख लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हमारे देश में यूज हो रहे हैं और हमारे देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है, और हमने जो यूपीआई का है पूरा एग्जाम्पल यहाँ देश में है और

0: इस तरीके से कोविड के टाइम में हमने नई टेक्नोलॉजी अपना के और देश में जिस तरीके से हमने कोविड को एक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इतना आबादी वाला देश था, वहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना है, एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है, जो कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल जो पिलर होगा हमारे ग्रोथ का वो है टेक्नोलॉजी। और इंडिया सारी टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमारे युवा जो है आज, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे स्पेस में है, जस्ट दो तीन कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी है कि जिन्होंने स्पेस में जो है प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली युवा जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल एक देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें सारे हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और जो जितने आज अगर स्टार्टअप भी हमारे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी। बट हमें ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम देश में एक ला रहे हैं नई नई, उससे जो है किस तरीके से हम एक आम आदमी की जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक उसका जो कि हर आम आदमी चाहे गांव में हो शहर में हो वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो और उसको यूज कर सके, और यही एक हमारे देश में इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर पे आपके एग्जाम्पल है यूपीआई, और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का जो हमारे देश में जितना सस्ता इंटरनेट है दुनिया में, मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतना जो सस्ता इंटरनेट नहीं है। तो जो इस टाइम ओवरऑल हमने जो नया एक कदम लिया है सेमीकंडक्टर का, डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरा जो हमारे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं, उसका डेफिनेटली मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं या दूसरे आईटीआईज हैं, कैसे हम अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू अपने युवाओं में, अपने यंगस्टर्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कैसे उनको और इसमें पार्टिसिपेट करवाएं, और ये पूरे देश में चल रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हर स्कीम में ये है कि उसमें कैसे हम युवाओं को जोड़ सकें, और युवा इसमें मैक्सिमम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और फाइनली यही हमारे देश की विकसित भारत बाई 2047 की उसकी जो, अगर मैं कहूँगा, फाउंडेशन स्टोन है, जो आधारशिला है, वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रहेगी।
1: अशोक, डॉक्टर मेहता ने कहा नए कदम, आपने भी कहा कि न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे अशोक हमारे लिसनर्स के साथ?
2: भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि चिप डिज़ाइन का काम तो कई सालों से हो रहा है, 2-3 दशक से हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड पूल ऑफ द इंजीनियरिंग अवेलेबल है। करीबन वर्ल्ड का 20% चिप डिज़ाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं, वो मुद्दा तो क्लियर हो गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास कभी ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल था, जो कि मोहाली चंडीगढ़ के पास में SCL नाम से बोला जाता है, सेमीकंडक्टर लैब लिमिटेड, उतना ही था, एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन में। तो भारत का जब ये एक जर्नी तय हो गया, हमारा जो रोड मैप बन गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना जरूरी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए, और ऑल्सो ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे पास उसके ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इन चीज़ों को भारत में कैसे लाए। और इसीलिए ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना हुई थी, उसके तहत कुछ इंसेंटिव दिया गया है ग्लोबल कंपनीज को कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें। और उसके साथ में मतलब ये हो गया कि हमें जो मेन चैलेंज है, ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या ग्लोबल कंपनीज खुद अपना यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग सेट करें, ये एक बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी दृष्टिकोण के तहत काम चल रहा है, हमें उसमें पार्शियल सक्सेस है। मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ 12 प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे, उसमें एक कैटेगरी होती है असेंबली यानी टेस्ट, ओसैट बोला जाता है, उसमें हमें सक्सेस हो गया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी कम होता है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थोड़ा इजी है मैनेज करना। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है, जिसे फैब कहा जाता है, फाउंड्री, वेफर बनाने की स्थिति, उसके लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट मिले हैं। एक टाटा का है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, $8 से $9 बिलियन का, जिन्होंने एक कोलैबोरेटर लिया है ताइवान से, और दूसरा है सिक्स सेम नाम की कंपनी जो उड़ीसा में आ रही है,

0: भी एक कोलैबोरेटर लिया, तो सिर्फ दो प्लांट है। तो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहेगी, हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, या उनसे हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर बनाएं। ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही है। दूसरी बात, अब इंडिया के पास में, जब मैंने कहा कि हमारे पास चिप डिज़ाइन के क्षमता है, लेकिन हमारी जो क्षमता है डिज़ाइन की, वो थोड़ी कैप्टिव डिज़ाइन सेंटर के तहत बनी हुई है। तो चिप डिज़ाइन से जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की है, उसके हिसाब से चिप बना के उसका प्रोडक्ट बनाए और फिर मार्केट में लाए, उसके लिए भी हमें चैलेंज है अभी। जैसे अभी रिसेंटली दो तीन प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए हेल्प की थी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर है, उसकी चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और जो सीसीटीवी है, जो कैमरा लग रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे इस टाइप के कई उदाहरण हैं जहां पर सरकार की मदद से, इंसेंटिव से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दो, क्लियर कट टू समराइज, मैं कहूंगा दो मुद्दे हैं जहां पर हमें मेन चुनौतियां हैं। एक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाए या ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए प्रेरित करें। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है उसमें, लेकिन काफी काम करना बाकी है। और दूसरा, जो हमारी चिप डिजाइन की क्षमता है, उसको हम चेंज करें टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्रिएशन, उसका भी अभी काम चल रहा है। ये दोनों चुनौतियों का हमें आगे सामना करना पड़ेगा और इसके रास्ते निकाल कर आगे बढ़ना होगा।
1: आइए सुनते हैं स्टार्टअप इंडिया पर ये रिपोर्ट।
2: स्टार्टअप इंडिया पहल को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत युवाओं, उद्यमियों और नए विचारों वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, आसान नियमों और बेहतर नेटवर्किंग के अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्टार्टअप का मतलब केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी नए विचार पर काम कर रहा है, चाहे वह खेती के लिए तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, ई कॉमर्स हो या क्लीन एनर्जी, तो वह भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ऐसे विचारों को बिजनेस में बदलने में मदद करना है। इस पहल का एक अहम हिस्सा है DPIIT रिकॉग्निशन, यानी विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता। यह मान्यता पाने के बाद स्टार्टअप कई फायदे पा सकते हैं, जैसे कर संबंधी छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की तेज प्रक्रिया और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच। पात्र स्टार्टअप्स को अपनी शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। स्टार्टअप इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देता है। हालांकि स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआती फंडिंग, सही मार्केट, टीम बनाना, नियमों को समझना और लगातार बदलती तकनीक, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को एक सहारा देने की कोशिश करती है। स्टार्टअप इंडिया केवल नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की युवा प्रतिभा को रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: तो आप सही बोल रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मेहता, कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया है, ईज ऑफ वर्किंग, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, काफी बहुत सारा एफर्ट किया गया है, पर आपको भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे, आपके फोरम्स होते हैं। कुछ मेन चीजें जो डिमांड है, जो आस्क है इंडस्ट्री की, जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, हमारा टाइम टू टाइम इसमें डिस्कशन मिनिस्ट्रीज के साथ होता रहता है और सरकार इस बारे में बहुत तत्पर है कि कैसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली ये रहता है कि कैसे अच्छी पॉलिसीज बनाएं, बट एट द सेम टाइम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट्स पे होता है। जो सबसे बड़ी बात आती है, जब कोई फैक्ट्री आती है, जब कोई नया कारोबार स्थापित करना चाहता है, कोई भी नया उद्यमी है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी है। और हालांकि कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल गुजरात ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि लैंड जो है डिजिटली जो उसके मैप्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, और कैसे कितनी इजी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई इन्वेस्टर आता है उसके लिए पूरा, ये मैं कह रहा हूँ कि आज देश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लेबर लॉज की बात है, अभी जो नए लेबर फोर कोड्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है कितनी जल्दी हम उन्हें पावर कनेक्शन दे सकते हैं, कितनी जल्दी लैंड अलॉट कर सकते हैं और किस दाम में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका है लैंड की। और इसमें हमारा ये सजेशन रहा है कि हम जो है एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएं, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी तो अपना कर लेती हैं, बड़ी कंपनी

इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको आज हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमने जो गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा बनाया जाए जिसमें कि कोई भी उद्यमी जाए और अपना वो उनको क्या

0: कि प्लग एंड प्ले सिस्टम के हों, उससे जो है स्पेशली छोटे व्यापारियों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे वो इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मैक्सिमम हिस्सा ले सकें। और अगर आप आज हम देखें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स और इस पे आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग में लाने की। और मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही टीडियस काम है, जिसमें कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो पे, एक अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से बन जाए, उसमें कई ऐसे उद्यमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत देश में तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि आज भी हम कई टेक्नोलॉजीज पे कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के देशों में ही कई देशों में डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि आज हमने करीब 40 देशों के साथ FTA कर ले हैं, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें करीब $1 ट्रिलियन मार्केट करीब खड़ा कर दिया है। और EU है, UK है, न्यूजीलैंड है, अपना GCC कंट्रीज में है, ये सारे जो है हमारे FTA साइन हो गए हैं। बट उस FTA का रियल फायदा तब मिलेगा जब जो हमारे प्रोडक्ट्स हों, जो यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे जो उद्यमी, वो जो है ग्लोबली बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हों। उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल अगर आप देखें गति शक्ति मिशन की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी काफी अच्छा, उसमें भी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ चुकी है। और जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, बट वहां पे भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्लियर तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आया है। बट अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तरफ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम अगर देश में तैयार हो जाए तो और भी जल्दी इसमें गति आ सकती है।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बात की डॉक्टर मेहता ने कि MSMEs को कैसे हम प्लग एंड प्ले मॉडल में लाएं, बिकॉज उनकी आई थिंक एक वल्नरेबल ग्रुप है MSMEs, और यही एक ग्रुप है जो लेबर इंटेंसिव भी होता है और जॉब्स की भी हमें ज़रूरत है इस देश में. सो आई थिंक कहीं इनको स्पेशल बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, बट ये भी कहा डॉक्टर मेहता ने कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक टीडियस काम है, एक टीडियस चीज़ है, और इसमें किसी को अंदर आने के लिए जब और लो हैंगिंग फ्रूट है, जब और आसान वाली चीज़ें हैं जैसे टेक प्लेटफॉर्म करें तो इट्स ईजियर, उसमें ज़्यादा आसान है. तो युवा इधर से आके मैन्युफैक्चरिंग में आए, इस वल्नरेबल ग्रुप में आए, आपका क्या फीडबैक, आपको क्या मिली है इसके बारे में, और कैसे सरकार इस वल्नरेबल ग्रुप को और इनकरेज कर सकती है, स्ट्रांग कर सकती है, क्योंकि ये तो बैकबोन है. अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, उनके जो डाउनलाइन वेंडर्स होते हैं वो भी MSMEs ही होते हैं.
2: मैं कहूंगा कि इसमें भारतीय कंपनीज के लिए एक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके मटेरियलाइज भी हो रहे हैं। विजुअली ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं ये तो हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगती है इसमें, सही बात है, 5 बिलियन $8 बिलियन वगैरह। लेकिन ये उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसमें फैक्ट्री बनने के बाद चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती है, जिसमें कुछ मशीन्स है, मटेरियल्स है, केमिकल्स है, गैसेस है, कुछ चिप डिज़ाइन का मामला है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। तो हमें ये एक मन में और माइंड में पिक्चर क्रिएट करना होगा कि ये सिर्फ हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, है लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को भी इसमें अवसर है। अब रही सवाल बात युवाओं की, तो मैं कहूँगा कि इसमें युवाओं के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू हुआ था उसे कहते हैं C2S, दैट इज चिप टू सिलिकन। इसके तहत करीबन 400 इंस्टीट्यूट को हाई कॉस्ट डिज़ाइन टूल्स सरकार ने उपलब्ध करा दिए, जो जिसके लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज, तो वो करा दिए। उसके तहत करीबन 65,000 65,000 स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ है। वो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव टूल लेके अपने अपने चिप डिजाइन करके, जिनका चिप अच्छा रहा उन्होंने कुछ सैंपल भी मैन्युफैक्चरिंग किए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट सेमिकॉन इंडिया हुआ था 17, 18, 19 सितंबर दिल्ली में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 20 स्टूडेंट्स के हाथों से 20 चिप का उन्होंने उद्घाटन किया। बताया कि ये 20 चिप जो है उन्होंने बनाए हैं, उनको 20 चिप समर्पित किए गए प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए। तो ये देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट के लिए उसमें काफी काम चल रहा है। दूसरी बात कि इसमें इतना बड़ा ब्रॉड इकोसिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर का, जिससे कि अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोगों

0: के लिए अवसर है। अगर किसी की रुचि मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर में है, तो वो चिप डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं। किसको व्यावहारिक काम करना पसंद है, तो वो मशीन निर्माण के लिए रख रखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता जांच मतलब टेस्टिंग के लिए अवसर तलाश कर सकते हैं। अगर किसी की रुचि विज्ञान में है, तो वो इसमें मटेरियल्स और R&D इनोवेशन उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी उद्यमी बनना चाहता है, तो अपना उत्पाद या किसी उद्योग की समस्या का समाधान भी विकसित करते थे। तो इसमें मैं कहूँगा विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए। पढ़ाई के और एक क्षेत्र के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने करिकुलम मॉडिफाई कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं, जिससे कि सेमीकंडक्टर का काम उन्हें सीखने मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की पायलट लाइंस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस एक ज़रूरी होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मैं आपके आकाशवाणी द्वारा यही कहूँगा कि जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें। सो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन जो टॉपिक है, ये हमेशा चलते रहता है। मैं कहूँगा वो हमारे साथ काम करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उद्योग में वास्तव की किस कौशल की ज़रूरत है। और कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जाएगी। अब वैसे तो भारत की पास बड़ी युवा आबादी है, और इस ताकत को हम अच्छी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नए विचारों के तौर अगर विकसित जोड़ दे, तो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी।
1: डॉक्टर मेहता, आते हैं ग्लोबल लेवल पे ये समझने के लिए कि हम बना रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड है, बट कहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात हुई, वी आर ऑल्सो अ रीजनल पावर। तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया रीजन में भारत की जो हमने हमने प्रोग्रेस बनाया है इस एरिया में, उसका पेस इज फास्ट इनफ कि हमें उसमें थोड़ी और गति दिखानी पड़ेगी?
2: देखिए, जो आज ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, भारत ऑलरेडी अपनी लीडरशिप उसमें बनाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हमारे साथ और भी देश हैं, जो कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, जो कि इसमें स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत आगे चाइना हमसे है। बट द सेम टाइम जो हमने स्टेप लिए हैं पिछले कई दिनों में, क्योंकि लीडरशिप में सिर्फ आपके पास कितना आपकी बड़ी इकोनॉमी है या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही एक चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसमें ये भी एक ज़रूरी होता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है, क्या आपका जुडिशियल प्रोसेस है, क्या आपका जुडिशियल सिस्टम है, और IPR के किस तरीके से आपके प्रोटेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपने देखा, तो आज अगर कोई भी ऐसा देश है जब China+1 की बात कर रही है, तो उसमें इंडिया जो है No.1 उनके दिमाग में रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट जो है करी है। यही नहीं, अगर आप G20 की बात करें, हमने इतने सारे जो नए स्टेप्स लिए हैं, जिसमें G20 में हमने लीड ली है, और किस तरीके से हमने कोविड के टाइम में इंडिया में सिर्फ एक वैक्सीन बनाई नहीं, बल्कि अपने कई देशों को हमने वैक्सीन दी है कोविड के टाइम में। और जब भी कहीं देश में या दुनिया में कहीं पे कोई आपदा आती है, एशिया में आपने देखा होगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया करता है। चाहे आपदा कहीं पे भी आई हो, अभी नेपाल में हमने देखा आपदा आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया। और जहां जहां आज कोई भी ऐसी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरे लोग जो है भारत से अपेक्षा रखते हैं कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए संभव हुआ है कि पिछले जो भी 10-12 साल में भारत ने एक जो जिस तरीके से काम किए हैं, और हमारा एक एक स्टेप है, क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन में हम आना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक पूरा जो करना चाहिए एज अ लीडर जो देश देखना चाहता है, वो स्टेप हमेशा हमने लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है, वो भारत देश है। और ये करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है, और ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस टाइम जबकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चैलेंजेस चल रहे हैं, और कोविड के बाद जिस तरीके से हमने जो कोविड के मार से जो देश उभर रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले भारत उभरा। और इस टाइम भी जब पूरी दुनिया में कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, दो दो जंग बिल्कुल चली हुई हैं, तो उसमें भी भारत एक तेज गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस ड्यूरेशन में भी। तो ये सब चीजें और जो हमें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप

0: लीडरशिप पोजीशन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत पे लोग विश्वास करते हैं, भारत से लोग, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत को छोड़ना चाहता है या भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले देश
1: जी
0: जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आना चाहते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर मेहता, बहुत सुंदरता आपने कहा कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, यू नो, और हम ये ट्रस्ट बिल्ड
0: जी,
1: कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स अशोक आपसे चाहेंगे ब्रीफली।
2: मेरा संदेश यह है कि सेमीकंडक्टर केवल चिप्स की बात नहीं है, यह भारत के भविष्य की बात है। यह उद्योग, हमारे कारखाने, हमारे अर्थव्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सरकार ने नीतियां बनाई है, उद्योग निवेश कर रहा है और भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में चिप डिजाइन क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उसके साथ साथ देश में नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी
2: हमें इस
1: बिल्कुल
2: नींव को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं
1: एब्सोल्युट
2: कहूंगा कि हम अभी 4C पर लगे हैं। 4C कौन से? इसमें एक है क्रेडिबिलिटी। हमारी अब क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है पिछले 5 साल में जो काम हुआ है। कैपेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो पार्ट 2 अभी अनाउंस हुआ उसके
1: जी
2: तहत।
1: जी जी
2: पॉलिसी कंटिन्यूटी जो सरकार का चल रहा है, सेंट्रल
1: जी
2: गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स,
1: जी
2: और कमिटमेंट ये सारे इंडस्ट्री का, तो ये
1: वंडरफुल
2: 4C के तहत हमारे न्यू मजबूत हो रही है। हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और सेमी इंडिया, हम
1: एब्सोल्युटली
2: सरकार के साथ में, उद्योग के साथ में हाथ
1: जी
2: मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये देश का जो जर्नी है ये बहुत
1: जी
2: जल्दी आगे एक्सेलरेट होके सफल होगा।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चंडाक जी और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे कार्यक्रम आने के लिए।
0: बहुत बहुत
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद। थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवनलाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: जन सेवा से देश सेवा, अभी आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। ये है कार्यक्रम का पहला गीत, चोरी चोरी फिल्म का नाम है, आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

मन्ना डे और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है अनाड़ी। आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, शब्द रचना शैलेंद्र की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर बाद।
1: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
2: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
1: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: भाई, हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
3: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
2: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में

0: 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
2: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
3: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
6: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास

0: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communications satellite and Varunastra heavyweight torpedoes. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नज़र-ए-सानी SIR में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फहरिस्त से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ़ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए GSAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टॉर्पीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हुकूमत ने अगले महीने की पहली तारीख से टेली मुवासलात सारिफीन के लिए फोन करने वाले शख्स का नाम जाहिर करना लाजिमी करार दिया है। सेंसेक्स में 2% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया और ये 74,316 पर बंद हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर खेलों की एक बड़ी ताकत बनकर उभरने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 बड़े तरक्कियाती प्रोजेक्टों का आगाज किया और मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख की तरक्की मरकज के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होगा, पानी की दस्तियाबी में इजाफा होगा और खित्ते के मालामाल सकाफती विरसे के तहफ्फुज में मदद मिलेगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: जनाब मोदी ने इन प्रोजेक्टों के आगाज को लद्दाख के तरक्कियाती सफर में संगे मील से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनने के बाद से इसकी तरक्कियाती ज़रूरियात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने लद्दाख के सियाहत के शोबे में बढ़ते हुए इम्कान को भी उजागर किया और कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने और मकामी मईशत को बढ़ावा देने के लिए मौसम सरमा और मुहिमजोई से मुतालिक सियाहत को फरोग दिया जा रहा है।
2: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। IIT जम्मू और IIM जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के दीगर रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च निकालने से मुतालिक अर्जी पर नोटिस जारी किया है। ये अर्जी उनके एहतजाजी मार्च पर तशवीश जाहिर करते हुए दायर की गई है। ये अर्जी अदालत की रजिस्ट्री में 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी।

भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोई माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दीगर फरीकों को नोटिस जारी किए। ये अर्जी चार वकीलों की जानिब से 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एहतजाजी मार्च के खिलाफ दायर की गई थी। अर्जी गुजारों ने अदालत के इहाते में सियासी मुजाहिरों पर पाबंदियां आयद करने की दरख्वास्त की थी। इंतखाबी कमीशन ने 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को वोटर फहरिस्त की खसूसी मुख्तसर नजरसानी करने की हिदायत दी है। इसके लिए अगले साल 1 जनवरी अहलियत की तारीख मुकर्रर की गई है। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अंडमानों निकोबार जजायर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी मुख्तसर नजरसानी के अमल की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जहां वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी का अमल अभी जारी है या हाल ही में मुकम्मल हुआ है। इंतखाबी कमीशन ने अपने खत में कहा है कि उसने 29 सितंबर को हिदायत जारी की थी जिनके तहत वोटर फहरिस्त में उन अफराद के नाम दर्ज करने के लिए खसूसी मुहिम चलाई जानी थी जिनके नाम अब तक शामिल नहीं किए गए हैं। इस मुहिम का मकसद नौजवानों और पहली मर्तबा वोट देने के अहल अफराद को भी वोटर फहरिस्त में शामिल करना है। वजारत दिफा ने आज 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहिदों का मकसद भारतीय फजाइया के लिए मखसूस मुवासलाती सैटेलाइट G-SAT-7C और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारतीय टोरपीडो हासिल करना है। G-SAT-7C की खरीदारी के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआहिदा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु के साथ किया गया है। इसके अलावा वरुणास्त्र की खरीदारी के लिए हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का मुआहिदा किया गया है। वरुणास्त्र एक मकामी तौर पर तैयार करदा और जहाज से दागे जाने वाला आबदोश शिकन टोरपीडो है जिसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। जदीद समत बदलने की सलाहियत से लैस ये टोरपीडो दूरी से दुश्मन की आबदोजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस तरह ये भारतीय बहरिया की जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत बनाता है। हुकूमत ने आइंदा माह की पहली तारीख से टेलीफोन सारिफिन के लिए कॉल करने वाले के नाम को जाहिर करने की सर्विस लाजिमी करार दी है। टेलीमुवासलात के महकमे ने तमाम टेलीमुवासलात सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि वो 1 नवंबर से सर्विस के तमाम इलाकों में कॉल करने वाले शख्स के नाम को जाहिर करने की खिदमत CNAP मुतारिफ कराएं। इस सर्विस के तहत कॉल करने वाले शख्स का नाम जो टेली मुवासलात खिदमत फराहम करने वाली कंपनी के सारिफिन से मुतालिक डेटाबेस में दर्ज होगा, कॉल मौसूल करने वाले शख्स के फोन पर कॉल करने वाले के नंबर के साथ दिखाई देगा। गैर महफूज शुदा नंबरों से आने वाली बैन अक्वामी कॉलों की सूरत में स्क्रीन पर इंटरनेशनल कॉल जाहिर होगा।

0: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मजहब से इस्लाम या किसी दूसरे गैर हिंदू मजाहिब में तब्दील होने वाले अफराद खुदकार तौर पर पसमानदा तबकात के जुमरे में रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि किसी शख्स को उसकी साबिका जात की बुनियाद पर हासिल समाजी पसमानदगी का फायदा मजहब तब्दील करने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फेरिस की खसूसी जामे नजरेसानी में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फेरिस से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ़ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए G-SAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सात सुरों के इस हसीन सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, गीतों के रंग, स्वरों की भाषा पर अगर हम सोचें तो कभी लगता है कि स्वर एक आराम है, एक सुकून है, और कभी लगता है कि स्वर प्यार है, इकरार है और इजहार भी। लेकिन होता है ना कई बार कि कोई गीत बेहद खूबसूरत सा, लेकिन आपके भीतर वो एक बेचैनी सी पैदा करता है। सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस वक्त आपके जो मन की रफ्तार है, आपके ख्यालों की जो रंगत है, वो उससे नहीं मिलती, इसलिए वो गीत आपके भीतर एक बेचैनी पैदा करता है। और गीत आप वही गुनगुनाते हैं जो आपके ख्यालों से बातें करता हो, आपके मन के साथ चलता हो। तो आज की रात कुछ गीत हम चुन लाए हैं खास आपके लिए, इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई गीत जरूर आपके एहसासों के करीब से गुजरेगा, आपसे आपकी अपनी बात कहेगा और आप उसे गुनगुना उठेंगे।

सोते जागते एक ही ख्वाब की दस्तक पर जिंदगी पलटती है बार बार। चांद एक कविता हो जाता है, हवाएं स्वरमालिका, और बज उठता है भीतर कहीं जिंदगी का राग।

एक नजर की रोशनी जो उतरी भीतर, एहसास है सोना सोना कि भीतर ही सुबहों का जागना है, भीतर ही शामों का गुनगुनाना है, भीतर ही फूलों का खिलना है, भीतर ही तितलियों का मंडराना है, एक मौसम का ठहर जाना है भीतर तेरा होना। हाँ, तेरा होना है भीतर कहीं एक मौसम का ठहर जाना।

दो नजरों के बीच एक चुप सा राग बहता है, दो नजरों के बीच एक चुप सा राग बहता है, तुम कहो ना कहो वो दिल का हाल कहता है।

तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहां तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का भी, धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का भी और चांद के मुस्कुराने का भी। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब

साथ एक सुकून है, साथ एक सपना है, साथ से संगीत है, जीने की रीत है, साथ है तो समाधान है, साथ है तो मुस्कान है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

फिल्मी गीतों के सुहाने से सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनीता सिंह है। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गीतों में मन का संसार सजता है, हमारी खुशियों ख्वाहिशों का इजहार सजता है। गीतों में कभी साझा सपनों का इंतजार सजता है, आंसू और मुस्कान लिए जीवन का प्यार सजता है। इसीलिए तो गीतों की दुनिया में हमारा आना जाना है। यहाँ एहसास के मोती हैं, चाहतों की खुशबू है, सुरों के दरिया से मन की गुफ्तगू है। तो चलिए, आज आपके पसंदीदा गीतों के इसी हसीन संसार में आपको लिए चलती हूँ। कुछ गीत जीवन के आपको सौंपती हूँ। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में है। राजा मेहदेली खान ने इसे लिखा है, संगीत मदन मोहन का है, फिल्म का नाम है वो कौन थी, और अनुरोध आप सबका है। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। पटेल नगर मलोड पंजाब से इसी गीत को पसंद करते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। और ये खत आया हुआ है जिला 12 राजस्थान से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव।

आपकी फरमाइश का अगला गीत धर्मपुत्र फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज़ है, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन एन दत्ता की। पसंद आप सबकी है। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वेटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र, रविंद्र, सनी, मुन्ना और बड़ू दादा जलगांव से। सात रंगों के शामियाने हैं, दिल के मौसम बड़े सुहाने हैं, कोई तदबीर भूलने की नहीं, याद आने के सौ बहाने हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। ये खत आया हुआ है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और ये चिट्ठी आई है।

राष्ट्रपति संभाजीनगर से। श्रोताओं के नाम हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है असली नकली। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है ये, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हलाकू फिल्म से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने। पसंद आप सबकी है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा। और पालदाना का इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी। आहटें सुन रहा हूँ यादों की, आज भी अपने इंतज़ार में गुम।

कार्यक्रम का अगला गीत आशिक फिल्म से हमने लिया है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। अनुरोध आप सबका है, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। छत्तीसगढ़ से दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिमरिया से दुर्गाराम साहू और सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान योगेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगता है, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगता है।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पारस मणि फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार इंदिवर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अनुरोध आप सबका है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, और हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। रोशनी फूट निकली मिसरों से, चांद को जब से गजल में सोचा है।

श्रोताओं, ये थे वो गीत जिनसे आपके दिल की दोस्ती है, जिनका साथ आपकी उदासी कम कर देता है और खुशियां दुगुनी कर देता है। तो इन नगमों से दोस्ती बनाए रखिए ताकि ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे। वैसे हमारा वक्त भी आपकी फरमाइश के साथ गाते गुनगुनाते बहुत ही खूबसूरत सा बीता। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी फरमाइशें हम तक भेजते रहिए, इसी वादे के साथ कि हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। अब इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ऋषभ मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत की है रामेंद्र सिंह सोलंकी ने।

0: राग रजनी। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋषभ मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग। तबले पर संगत की थी रामेंद्र सिंह सोलंकी ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो।

0: जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 3,300 करोड़ रुपीस इन लद्दाख थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, द प्राइम मिनिस्टर सेड द डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख रिमेन्स अ की प्रायोरिटी फॉर द सेंटर।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions cannot automatically claim reservation benefits under the backward class category. Dismissing the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court verdict, the top court held that social backwardness suffered in an antecedent caste cannot be carried forward after conversion. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. The government has mandated caller name display service for telecom users from the 1st of the next month. The Department of Telecommunications DOT has directed all telecom service providers to introduce the calling name presentation CNAP service across all service areas from 1st of November. Under the service, the name of the caller as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider will be displayed on